मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। सुबह के 5:56 और 41 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस

0: और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सामयिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह की ये जानकारी।

0: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। दलहनी फसलों में इस समय उड़द और मूंग की खेती आप किए हुए हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करें। अगर पहली सिंचाई बहुत जल्दी कर देते हैं तो इसमें जड़ों तथा ग्रंथियों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः पहली सिंचाई जो है 25 से 30 दिन बाद करें और बाद की सिंचाइयाँ आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पर करते रहें। इस फसल में कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं जिनको निकाई करके नष्ट कर देना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में पीला चित्तवर्ण रोग, जिसे कि मोज़ेक रोग कहते हैं, इसका प्रकोप काफ़ी होता है, जिसमें पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह रोग प्रायः सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, अतः इसके नियंत्रण के लिए उस सफ़ेद कीट का ही नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए मिथाइल ओ डेमेटान दवा प्रयोग करते हैं, जो कि 25 EC के रूप में आती है। अगर 5 से 10 प्रौढ़ मक्खी प्रति पौध की दर से दिखाई पड़े तो इस दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। अगर यह दवा उपलब्ध ना हो तो डाइमेथुएट दवा प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 30 EC के रूप में आती है। इसकी भी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो 1 लीटर दवा की आवश्यकता होगी और लगभग 600 से 700 लीटर पानी की। इस तरह से आवश्यक दवा की मात्रा लेकर के और आवश्यक पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में थ्रिप्स कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं तथा पत्तियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं और पैदावार प्रभावित होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए भी मिथाइल ओ डेमेटान दवा का प्रयोग करते हैं। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कुछ किसान भाई सूरजमुखी की भी खेती किए रहते हैं, तो ध्यान रहे कि सूरजमुखी की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अब हम थोड़ी सी चर्चा गन्ना की खेती की करेंगे। इसमें कुल 180 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होती है। 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के समय ही खेत में प्रयोग कर लिया जाता है। बाकी जो मात्रा बचती है उसको 2 भार में प्रयोग करते हैं, 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। तो इसे जो है जून माह के पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आखिरी मात्रा आपके पास बची है तो 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव खेत में करें। ध्यान रहे कि जब आप यूरिया का प्रयोग करें तो खेत में नमी अवश्य हो। इसके अलावा गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। चूँकि इस समय खेत खाली रहते हैं, अतः ये मिट्टी की जाँच का सर्वोत्तम समय है। पहले मिट्टी का नमूना लेते हैं और फिर उसको जांच के लिए जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहां पर भेजा जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक मिट्टी का नमूना लेकर के उसमें अपना नाम, पिता का नाम, खेत का नंबर और बोई जाने वाली फसल आदि का विवरण दर्ज करके और फिर उसे जांच हेतु भेजा जाता है। अभी अगर मिट्टी की जाँच कराते हैं तो आपको समय से उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर उस हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करके आप खरीफ की खेती आसानी से कर सकते हैं। हरी खाद के लिए समय ढांचा की भी खेती अवश्य करें। इससे जो है जो खेती में लागत आती है उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सामयिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह की जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हे सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल, बुद्धि और ज्ञान।
2: भगवान आदित्य के उपास

वासना से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का अंत हो जाता है, शारीरिक रोगों का शमन होता है और अनेक प्रकार के दुख और शोक से प्राणी को मुक्ति मिलती है। भगवान आदित्य को तीनों लोकों और 14 भवन का स्वामी कहा जाता है।

गंगा तो बहती जाएगी, खुद में सबको समाएगी, करते हैं पाप जो दिन रात, उनके लिए भी मुक्ति लाएगी, गंगा तो बहती जाएगी।

हे प्रभु, आनंद मिला बस आपकी चरणों में। अपनों की बातों में भी वो आनंद नहीं जो आनंद मिला आपके चरण कमलों में।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आज शामिल कलाकार थे हरिहरन, चंदू आत्मा, नरेंद्र चंचर और डॉक्टर

0: शांति जैन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय है नजरिए का फर्क।
1: एक कहावत तो हम सबने सुनी है कि पानी का ग्लास आधा भरा है या फिर आधा खाली। इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज हमारी सोच पर निर्भर करती है। सकारात्मक रहने का सीधा सा मतलब है कि अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करना। जीवन में सकारात्मकता एक ऐसी चाबी है जिससे हर व्यक्ति समस्या के हर ताले को खोल सकता है। यदि आप सकारात्मक हों तो दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियां भी

0: आप सकारात्मक हों तो दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियां भी आसानी से हल हो जाती हैं। पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी स्वयं में समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है, इसलिए यह हमें ही तय करना होता है कि हमें सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक। हर विचार एक बीज की तरह होता है। सकारात्मक बीज आपके दृष्टिकोण को उजागर करता है और आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। हम जैसा विचार करते हैं, हम उसी तरह बन भी जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा आचरण होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मस्तिष्क में कौन सा बीज बोते हैं। सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति गुलाब के पेड़ में कांटों को नहीं, बल्कि उसमें निकले गुलाब को देखता है। यदि आप सकारात्मक नजरिया रखते हैं और लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तो अंत में आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर लेंगे और पाएंगे कि आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार हैं। यदि आप सकारात्मक नजरिया रखते हैं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तो यकीनन आप अपनी समस्याओं को दूर कर लेंगे। सकारात्मक विचार आपको न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए भी तैयार करते हैं। सकारात्मक नजरिया आपको खुशियों और सफलता की ओर ले जाता है। यदि आप जीवन के प्रकाशित पहलू को देखते हैं, तो आपका पूरा जीवन ऊर्जावान नजर आता है। आपका नजरिया न सिर्फ आपको, बल्कि आपके पर्यावरण और आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण उसके विचारों से होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं कि सकारात्मक लोगों के पास नकारात्मक विचार नहीं होते हैं, वे बस उन विचारों को बढ़ने नहीं देते और नष्ट कर देते हैं। जीवन में जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलते हैं, तो आपको स्वयं ही सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगते हैं। आपके विचार आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को पास नहीं आने देते। सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा व्यक्ति हमेशा अपनी परिस्थितियों पर भारी रहता है। वो कभी भी उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं। कुछ तो आकर चले जाते हैं, तो कुछ के बारे में हम सोचते ही रह जाते हैं। हर विचार के कारण हमारे दिमाग में खास प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसके कारण मस्तिष्क में अलग अलग तरह के संदेश संवाहक बनते हैं। गलत विचार के कारण बेचैनी, डर और गुस्से की भावनाएं पैदा होती हैं। ऐसे में गलत विचार हमारे दिमाग में नकारात्मकता भर देते हैं। वहीं जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, तो हमारे दिमाग से जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं। इससे हमारा मन भी अच्छा हो जाता है। हर सोच से एक दिमागी प्रक्रिया जुड़ी हुई है। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ कोई भी काम करना शुरू करेंगे, तो बहुत ही आसानी से उस काम को पूरा कर लेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या और आहार विहार विषय पर डॉक्टर मधु राणा की जानकारी।
2: मैं डॉक्टर मधु राणा आज आपसे बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु के बारे में बातचीत करूंगी। प्रकृति इस मौसम में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, आम, इन सब चीज़ों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। नमक और मीठे का संतुलन

0: गर्मी में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में पसीने के रास्ते हमारे शरीर से सोडियम पोटेशियम बाहर निकल जाते हैं, जिससे अचानक कमजोरी आने लगती है या पैरों में ऐंठन आने होने लगती है। जब भी घर में नींबू पानी या कोई भी पेय बनाए, उसमें सफ़ेद चीनी की जगह मिश्री या खांड का इस्तेमाल करें और साधारण नमक की जगह सेंधा नमक या काला नमक डालें। यह आपके शरीर में मिनरल्स को तुरंत रिचार्ज कर देता है। मटके के पानी का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग धूप में से आते ही फ्रिज का एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा पानी गटगट पी जाते हैं। यह कमज़ोर जठराग्नि को पूरी तरह बुझा देता है, जिससे अपच और गले का इन्फेक्शन हो जाता है। मिट्टी की तासीर स्वाभाविक रूप से क्षारीय या अल्कलाइन होती है। जब हमारे पेट में एसिड बनता है और मटके का यह पानी उस एसिड को ख़त्म कर देता है, पानी हमेशा हमें घूट घूट कर और बैठ कर ही पीना चाहिए। कुछ रसोई के भी मसाले हैं जो कि इस मौसम में हमें अपने आप को तरोताज़ा रखने में बहुत ही मदद करते हैं, जैसे सौंफ। सौंफ जो है वह पेट को ठंडक देता है। भोजन के बाद हम मिश्री और सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। धनिया, सूखी धनिया जिसका पानी शरीर की अंदरूनी जलन को भी ख़त्म करता है, इसे भी हम ले सकते हैं। पुदीना जो है यह बहुत ही अच्छी हर्ब्स है। यह हमारे पेट के मरोड़, गैस, लू से तुरंत राहत देता है। इसलिए इन सभी चीज़ों का हम नित्य प्रयोग कर सकते हैं गर्मी, विशेषकर गर्मी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। किन चीज़ों से बचे, यह भी बहुत ही ज़रूरी है। चाय, कॉफ़ी, समोसे, पकोड़े, अत्यंत मिर्च मसाले, खट्टी चीज़ें, बासी चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जब जठराग्नि मंद हो जाती है, तब इस समय हमारी पाचन शक्ति इतनी नहीं रहती है कि हर चीज़ को हम पचा सकें। इसके अलावा हम दोपहर के बारे में अगर हम कहें, तो दोपहर का जो 12 बजे से 4 बजे का सूर्य का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है, इस दौरान खुद को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहनावा हमारा ऐसा होना चाहिए कि धूप से बचाव रहे। हमेशा हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनना चाहिए। सूती कपड़े पसीनों को सोखते हैं। बाहर निकलते समय सिर को सूती गमछे, दुपट्टे से जरूर ढके, ताकि हमें डायरेक्ट सनलाइट से हमारी त्वचा का बचाव हो सके।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या और आहार विहार विषय पर डॉक्टर मधु राणा की जानकारी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। जीवन का हर क्षण और रक्त की हर बूंद अमूल्य है। आपका रक्त कई लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आइए रक्तदान दिवस पर हम संकल्प लें कि स्वयं रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित व जागरूक करेंगे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्रे, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में

कभी इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समाधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के इस मानस पाठ की इस कड़ी के कलाकार थे रविंद्र साठे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें आज केंद्र से प्रसारित दिन भर के कार्यक्रमों के बारे में। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एजवेस्टन बर्मिंगम में खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण सुनेगा शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक। उर्दू कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर, जिसे रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से। युवा साथी सुनेंगे युवाणी शाम 5:15 से। कार्यक्रम में आज की बात होगी विश्व रक्तदान दिवस पर, और साथी होगा युवाणी गांव से यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत।

नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल सुनिएगा शाम 5 बजे से। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी आओ जाने रक्त के बारे में। इस विषय पर सुनिएगा डॉक्टर स्वर्णिम घोष की वार्ता और साथ ही होगा बाल गीत। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग सुनेगा दिन में 1:30 पर। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनेगा दिन में 1:15 पर। आपके पत्रों के उत्तर देंगे अरुण पांडे के साथ सना सलीम। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन का कार्यक्रम आरोग्यम सुनेगा दिन में 11:30 पर। कार्यक्रम में सिर के चोट और बचाव विषय पर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से सुनेगा शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। हमारे बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ सुनिएगा दिन में 11 बजे से। कार्यक्रम में होगा आउटडोर गेम्स, अच्छी सेहत का राज। अलावा इसके कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विविध प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। संवेद स्वर में कन्नड़ सामुदायिक गान शिक्षा पाठ होगी सुबह 10:10 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में नीलम मौर्या के लोकगीतों को आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित राजन मिश्रा का शास्त्रीय गायन सुनेगा सुबह 7:31 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:10 पर सुनेगा फिल्म संगीत। दिन 2:30 पर एक ही फिल्म से दिन में 12 बजे सुनेगा फिल्म संगीत। और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मधुरिमा सुबह 8:45 पर। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे से सुनिएगा आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। आपको एक बार फिर से बता दें आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एजवेस्टन बर्मिंगम में खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण सुनेगा शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमा रथ के कार्य ने साधुन धरा शरीर। कबीर के इस दोहे के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुडवाला मॉर्निंग बनारस। कैसे हैं आप? आई होप मस्त और आबाद हैं। और आपने ट्यून किया है आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र, हमारे यानी अपने रेडियो दोस्त प्रियदर्शी के साथ। दोस्तों, आज का दिन मानवता, सेवा और जीवन दान की भावना को समर्पित है। हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मान देने के लिए

ये मनाया जाता है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान व्यक्ति को जीवन का उपहार देते हैं। और कहा भी गया है, दानों में श्रेष्ठ वही दान कहलाता है जो किसी के जीवन में नई उम्मीद जगाता है। और रक्तदान ऐसा ही एक दान है जो किसी की धड़कनों को फिर से गति दे सकता है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि एक यूनिट रक्त से 3 लोगों तक की जान बचाई जा सकती है? दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन और प्रसव के दौरान अनेक मरीजों को रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में रक्तदाता किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। दोस्तों, रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प आज तक नहीं बन पाया है। इसका अर्थ है कि जब भी किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, तब किसी दूसरे व्यक्ति के रक्तदान पर ही उसकी आशा टिकी होती है। विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य लोगों को नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना है, ताकि जरूरत पड़ने पर रक्त की कमी ना हो। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियाँ होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ सकती है, जबकि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। मानव शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी की भरपाई कर देता है। सामान्यतः 18 से 65 वर्ष की आयु का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान के लाभों की बात करें तो यह न केवल किसी का जीवन बचाता है, बल्कि रक्तदाता के स्वास्थ्य परीक्षण का अवसर भी प्रदान करता है। सबसे बड़ा लाभ है आत्मसंतोष, यह एहसास कि आपकी वजह से किसी के घर की खुशियां बनी रह सकी। श्रोताओं, काशी की धरती सेवा, त्याग और परोपकार की परंपरा के लिए जानी जाती है। यहां समय समय पर अनेक संस्थाएं और युवा संगठन रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं। युवाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक सशक्त बना रही है। आज के दिन हम उन सभी रक्तदाताओं को नमन करते हैं जिन्होंने किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलाया। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा निर्णय किसी परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाए। श्रोताओं, विश्व रक्तदाता दिवस हमें यह संदेश देता है कि मानवता की सेवा के लिए किसी बड़े संसाधन की नहीं, बल्कि बड़े दिल की आवश्यकता होती है। यदि आप स्वस्थ हैं और रक्तदान के योग्य हैं, तो किसी अधिकृत रक्त बैंक या रक्तदान शिविर में जाकर रक्तदान अवश्य करें। आपका यह कदम किसी की जिंदगी बचा सकती है। इसी संदेश के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, लेकिन इस गीत के बाद।

वेलकम बैक श्रोताओं, आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने को और जानते हैं क्या है आज के इतिहास में खास। तो दोस्तों, आज ही के दिन 1958 में महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को मॉस्को के क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन 2015 में ऐतिहासिक रूप से भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमाओं को सरल बनाने के लिए 162 परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया था। अब आइए रुख करते हैं विश्व इतिहास की। तो दोस्तों, आज ही के दिन यानी 14 जून 1777 में अमेरिकी क्रांति के दौरान अमेरिकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्टार्स एंड स्ट्राइप्स को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाया था। और आज ही के दिन 1949 में अल्बर्ट सेकंड नामक रीसस मकाक बंदर को V2 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था। दोस्तों, यह अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला बंदर बना। और आज ही के दिन 1951 में पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पेश किया गया था। और आज ही के दिन गुरु हरगोविंद सिंह 1995 में जन्म लिए थे, सिखों के छठे गुरु जिन्होंने सिखों के सैन्य रूप में संगठित करने की शुरुआत की थी। और आज ही का दिन अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म दिवस भी है। और आज ही के दिन के आसिफ 1922 में जन्म लिए थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक जिन्होंने कालजयी फिल्म मुगले आजम बनाई थी। दोस्तों, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट। और अब आइए जानते हैं क्या है बनारस, देश और दुनिया का हाल

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। दोस्तों, जीवन भी एक यात्रा ही है। इस यात्रा में कभी खुशियां मिलती हैं, कभी चुनौतियां सामने आ जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस रखता है

0: वही मंजिल तक पहुंचता है। श्रोताओं, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में बड़ी खुशियां मिलने पर ही खुश हुआ जाए, लेकिन सच तो यह है कि जीवन की असली मिठास छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ बिताया गया समय, किसी अजनबी की मुस्कान या किसी अपने का हाल चाल पूछ लेना, ये छोटी बातें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग सफलता के पीछे दौड़ते दौड़ते जीना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता का अर्थ केवल ऊंचा पद या अधिक धन नहीं है। सफलता का अर्थ है मन की शांति, संतोष और अपने प्रियजनों के साथ खुश रहने की क्षमता। एक और बात जो जीवन हमें सिखाता है वो है रिश्तों की अहमियत। हम अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं दोस्तों कि अपने लोगों के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। लेकिन जीवन के किसी भी पड़ाव पर यदि कुछ सबसे अधिक मूल्यवान होता है वो है हमारे रिश्ते। इसलिए अपने अपनों को समय दीजिए, उनकी बातों को सुनिए और अपने प्रेम को व्यक्त करने में कभी देर मत कीजिए। और इसी के साथ वक्त से आपसे इजाजत लेने का इशारा मिल रहा है, तो दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे किसी सुबह ढेर सारी बातों और इतिहास की खबरों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकू नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात, वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश, कहा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम, प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां।

0: अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा।
1: हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कल सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतों, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जल कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
2: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है। और पक्षपात के पहले निष्पक्षता के साथ ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश

0: ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
1: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था, और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: गाजीपुर में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आज आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक एवं विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कल असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान नियमित उड़ान पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक

0: गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजन साजन मिश्र का गायन। राग है ललित, आपके साथ तबला संगत की है रमजान खान ने और हारमोनियम पर संगत की है महमूद धौलपुरी।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन साजन मिश्र का गायन, राग था ललित। आपके साथ संगत कलाकार थे तबले पर रमजान खान और हारमोनियम पर महमूद धौलपुरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7

0: सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे। पिछले 12

0: वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन ए आई आर

0: मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome.

0: viewers on the YouTube Live Yoga stream. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Shagun. Trump-Modi meeting on cards, PM lands in France, reads a headline in Hindustan Times, while the Economic Times reports Modi-Macron to inaugurate Bharat Innovates today, the event to help deep tech startups attract knowledge partnerships and funds. India flays lethal action on mariners. Jaishankar raises issue with Rubio, who warns against violations in Hormuz. Headlines The Pioneer. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed next Army Chief. Will assume office on 30th of June, informs The Statesman. Rajnath praises rise in women's strength in IAF. Indian Air Force sees the commissioning of its first batch of women officers. Defence Minister says Operation Sindoor showed the forces capability to destroy enemy infrastructure with precision, cites The Hindu. Hindustan Times informs Anthropic has disabled its two most powerful AI models, Fable 5 and Mythos 5, on a US government order. Under the headline, in a first, AI model pulled offline after US government intervenes. FSSAI bans use of pins, metallic wires in food packaging, reads a front page story in the Times of India. The FIFA World Cup 2026 may be attracting over 5 million strong live audience, but match attendees from India to be only about 30,000, far less than previous edition in 2022. High average costs, travel hurdles, results in tepid interest from Indian travellers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled Fashion to Furness, some luxe gold watches fail the test of time. The Economic Times writes, as yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. U.S. President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। وزیر اعظم نریندر مودی دو ملکوں فرانس اور سلوواکیا کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت فرانس کے شہر نیس پہنچ گئے ہیں. فرانس میں اپنے قیام کے دوران وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے اور آئندہ جی سیون سمٹ سے قبل وہ صدر میکرون کے ساتھ باہمی تعاون کے اہم

शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जहां वो स्लोवाक कयादत के साथ दोतरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनक़िदा एक कम्युनिटी इस्तकबालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें, जिनमें कथक, ओडिसी और

0: वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें, जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं, पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ नीस में पैलेस देस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा, जहाँ तकरीबन 120 स्टार्टअप आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैक्रों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खुसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक और तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक्किद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की, सप्लाई चेन्स, मस्नूई जहानत, सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दो तरफा मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा, शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मस्नूई हीटिंग निजाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है, जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा, जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 वर्षों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
1: इस्लाहात के 12 साल, एतमाद के 12 साल बन चुके हैं, चाहे वो GST हो, फेसलेस टैक्स का निजाम हो या डिजिटल।

0: इंडिया हर पहर ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक है। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जामे तब्दीलियां की गई हैं ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फायदा पहुंच सके। नए टैक्स निजाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% टैक्स दहिंदगान को आमदनी 12 लाख रुपए तक है और वो बराह रास्त फवायद हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6 करोड़ 90 लाख से बढ़कर माली साल 2025 में 9 करोड़ 20 लाख हो गई है। अगले सिलसिले के GST निजाम ने टैक्स के अमल को मजीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में GST की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शो में मुअसर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमात सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माही, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज हिस्सों में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमाई डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मजकूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई है। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूर दराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुज को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहिदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमीर तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा मुआहिदे का मुवाजना साल 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक्किद की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रजाकाराना तौर पर खून अतिया करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि अतिया किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी जरूरतमंद को सेहतयाब करने और एक खानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आए, जिम्मेदाराना तौर पर खून अतिया करें और कीमती जानों को बचाने में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासिरा पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने

0: 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजबेस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई कुव्वत। तजारत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादले ख्याल का इम्कान। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने की खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है, मुस्तकबिल के दिफाई चैलेंजेस से निमटने के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी। G7 इजलास के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत का इम्कान। माहदा होने की सूरत में दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमाए मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। और धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मेरी वेब के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुनेंगे मधुरिमा प्रोग्राम इन संदेशों के बाद।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542227658,
11: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCE

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. मधुरिमा प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज बात करेंगे इस कार्यक्रम में सुशांत सिंह राजपूत की। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत की 34 वर्ष की आयु में 14 जून आज के ही दिन 2020 को निधन हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर सफलता की ऊंचाई को छुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान यंग टैलेंट के रूप में है। सुशांत के अंदर अभिनय के अलावा डांस का टैलेंट भी कूट कूट कर भरा था। वो फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ थिएटर और टीवी अभिनेता भी रह चुके थे। इन्हें अपनी पहचान मिली कई सीरियल्स में। सुशांत की पहली फिल्म का नाम काई पोचे था। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म के गीत को।

सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 में बिहार के राजधानी पटना में हुआ था। इनके पिता बिहार पुलिस में अधिकारी रह चुके हैं। साल 2002 में सुशांत की मां का देहांत हो चुका था। सुशांत की चार बहनें हैं, जिनमें से एक बहन मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेटर रह चुकी हैं। इनकी शिक्षा पटना के सेंट करेन हाई स्कूल व नई दिल्ली के गुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में हुई है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सुशांत को 7वां रैंक मिला था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर में दाखिला लिया था। ये पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता था। सुशांत भौतिकी में एक राष्ट्रीय ओलंपियाड भी रह चुके हैं। इस अभिनेता ने कुल 11 इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं की थी, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की।

सुशांत सिंह के करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के रूप में हुई थी। उन्होंने कई बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी काम किया था। इनकी फेमस फिल्में थी काई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, एमएस धोनी, पीके, छिछोरे और केदारनाथ।

सुशांत को 2014 में फिल्म काईपोचे के लिए बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड दिया गया। 2017 में एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किरदार करने के लिए इन्हें प्रस्तुत किया गया।

सुशांत सिंह के बारे में कुछ अनकहे फैक्ट ये हैं कि ये पढ़ाई में ब्रिलियंट थे और यही वजह है कि वे कई परीक्षाओं में बैठे और हमेशा सफल भी रहे। चूंकि उन्हें अपना करियर फिल्मों में बनाना था, इसलिए वे दिल्ली से सीधे मुंबई आ गए। सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर शामक डावर के विद्यार्थी रहे। इन्होंने साल 2006 में कॉमनवेल्थ गेमों में भी परफॉर्म किया था। मुंबई आकर उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ परफॉर्म किया और फिर इसके बाद थिएटर ज्वाइन किए। सुशांत ने मशहूर एक्शन डायरेक्टर अलन अमीन से मार्शल आर्ट के गुर सीखे। सुशांत के माता पिता की मर्जी के खिलाफ इन्होंने अपना करियर चुना था। इनकी पहली फिल्म काई पोचे का किरदार के लिए उन्होंने अपनी बहन मीतू सिंह से प्रेरणा ली थी।

अपने छोटे से जीवन और करियर में इन्होंने बेहद उम्दा काम किया। सुशांत की पुण्यतिथि पे इनको शत शत नमन। और आज की मधुरिमा बस इतनी ही, दीजिए इजाजत।

0: मधुरिमा द साउंड।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं, सुनेंगे सामयिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद
2: आरपी सिंह जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
3: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहां पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहां पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ

0: कमीशन हुआ था उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपीआई, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थिएटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अम्युनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दी जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से हुआ है।
1: बिल्कुल सर, अनुपम सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए ये कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं।
2: शैलेंद्र जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 49% आयातित सामान के ऊपर निर्भर है और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है और उस पे थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
1: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया है?
0: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है इसलिए और सक्सेसफुल है। दूसरा अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया हेलीकॉप्टर बनाया गया वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर्स है जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर एचएल के साथ

0: मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा है, और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो, और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हो, इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया है, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो एसपी गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के, इसी में अम्युनिशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उससे, जिससे अम्युनिशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, एआई की टेक्नोलॉजी है, और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही,
1: हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है जिस तरह से हमने देखा।
0: जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है, तो हमें आरटी गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए आरटी गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम उसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है। जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भी हमें भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के जो कि ऑलरेडी एयर में है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनिमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इजराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है।
1: जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात,
0: अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे होने, जबकि अभी रफेल का भी यही हुआ है कि रफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है, और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के, बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी, जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में यही फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही है।
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
4: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, आइए आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना देते हैं। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार भावना कुमारी पुत्री मोतीलाल निवासी सिंदूरिया कलना जिला मिर्जापुर, भावना दिनांक 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार को दोपहर 12:30 पर सूर्यपाल सिंह स्कूल पेपर देने के लिए निकली थी और वहीं से लापता हो गई हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है, उम्र 19 वर्ष, रंगे हुआ, लंबाई इनकी 4'6" है। लापता होने के समय इन्होंने आसमानी शर्ट, नीली स्कर्ट और पिंक कलर का जूता पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को 9454400299 पर सूचित करें। थाना बबुरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ललिता पत्नी संतोष निवासी ग्राम उड़ी पोस्ट जमालपुर जिला मिर्जापुर, ललिता धनेजा गांव दिनांक 8 मई 2026 को अपनी ननद के घर विवाह के लिए आई थी और उसी दिन से गायब है। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है, उम्र है 28 वर्ष, कद 5 फीट, रंगोरा, लापता होने के समय इन्होंने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, इनकी दाहिनी आँख थोड़ी छोटी है। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना बबरी को 9454400319 पर सूचित करें।

पुलिस अधीक्षक बलिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशनी साहनी पुत्री सुगानी साहनी निवासी रेवती वार्ड नंबर 4 थाना रेवती बलिया उत्तर प्रदेश। रोशनी दिनांक 2 फरवरी 2024 को शाम को लगभग 6 बजे अपने घर से लापता हो गई हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 15 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा है। लापता होने के समय इन्होंने सूट और सलवार और पैरों में चप्पल पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक बलिया को 9454400255 पे सूचित करें। थाना बबुरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड़िया पत्नी सूरज निवासी ग्रामोड़ी पोस्ट जमालपुर जिला मिर्जापुर। गुड़िया दिनांक 8 मई 2026 को धनेजा गांव अपनी ननद के घर विवाह में गई थी और उसी दिन से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला। लापता होने के समय इन्होंने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो थाना बबुरी को 9454403179 पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आज उर्दू कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर चर्चा मोहम्मद उमेर से। इसके अलावा सुनेंगे चर्चा गर्मी में रखें हिफाजत मौजू पर, और आज के कलामे शायर में सुनेंगे मोहम्मद कलीम फतेहपुरी और फारुख आदिल से उनका ताजा कलाम।
1: उर्दू प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपका मेजबान मोहम्मद उमेर। आदाब कबूल फरमाएं सामाइन। आज 14 जून है और आज खून के अतिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सामाइन, खून का अतिया इंसानियत की खिदमत का अजीम जरिया है। ये ऐसा नेक अमल है जिससे किसी ज़रूरतमंद इंसान की जान बचाई जा सकती है। हादसों में ज़ख्मी होने वाले मरीज, ऑपरेशन से गुजर रहे लोग, थैलीसीमिया के मरीज और कई दीगर बीमारियों से जूझ रहे अफराद को अक्सर खून की ज़रूरत पड़ती है। खून के अतिया से न सिर्फ किसी की ज़िंदगी बचती है बल्कि समाज में हमदर्दी, मोहब्बत और इंसानी भाईचारे का पैगाम भी फैलता है। सेहतमंद अफराद के लिए खून का अतिया महफूज माना जाता है और इससे जिस्म में नया खून बनने का अमल भी जारी रहता है। याद रखिए, खून का कोई कारखाना नहीं होता है और न ही इसे मसनूवी तौर पर तैयार किया जा सकता है। इसलिए हर सेहतमंद शख्स का फ़र्ज़ है कि वो वक्त ज़रूरत खून का अतिया करके किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की नई किरण पैदा करे। लेकिन इतनी अहमियत के हामिल होने के बावजूद आज भी लोग इस अहम मसले पर बेदार नहीं हैं। सामईन, आज 14 जून को दुनिया भर में खून का अतिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने का मौका है जो अपनी खुशी से खून का अतिया देकर दूसरों की ज़िंदगी बचा

0: मोहब्बत की कहानी लिख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।
1: सामाईन, अभी आप कलाम शायर के तहत महजूज हो रहे थे शायर जनाब फारूक आदिल साहब के खूबसूरत कलाम से। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामईन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दे इजाज़त। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम के लखनऊ मरकज की थी। आज इस आपने सुना वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और गर्मी में रखें हिफाजत, इस मौजू पर चर्चा कर रहे थे मोहम्मद उमैर। कलामी शायर में आपने सुना मोहम्मद कलीम फतेहपुरी और फारूक आदिल से उनका ताजा कलाम उमैर ने, और पेशकश आसिफ इकबाल की थी। इसी कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
3: मीटर वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं नीलम बौरिया। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं देवी गीत।

0: गंगा गीत के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार थी नीलम मौर्या। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में कन्नड़ सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।
1: आज इस कार्यक्रम में हम सीख रहे हैं कन्नड़ भाषा में एक गीत। गीतकार श्री दोड्डरंगी गौड़ा, संगीत निर्देशिका श्रीमती इंदु विश्वनाथ। इसे गा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु के विद्यार्थी। गीत का भाव इस प्रकार है। भावात्मक एकता को सीखने के लिए महाविद्यालय है प्रकृति। सूर्य और चंद्र उदयास्त में कभी अपना क्रम नहीं तोड़ते, ऋतु परिवर्तन क्रमानुसार चलते हैं। पेड़ पौधे मानव से न कुछ मांगते और न आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पशु पक्षी आश्रितों को धोखा नहीं देते। इस महान प्रकृति को देखकर मानव ने कुछ नहीं सीखा। धरती आसमान को देखकर हम सब सीखें और सुखी जीवन बिताएं। इस गीत को गाने के लिए बच्चों आपको तो साहित्य चाहिए ना। चलिए पहले मैं आप सबको इसका साहित्य बताऊंगी, बाद में गाना शुरू करेंगे। तो सब लिखने के लिए तैयार है ना?
2: हाँ तैयार है।
1: इस गीत में एक पल्लवी, एक अनुपल्लवी और तीन चरण हैं।
3: बान सूर्य तड़वागेंदु हुट्टुवुदिल्ला, बेसरवेंदु मध्यान्हक्के मुळुगुवुदिल्ला।
1: अनुपल्लवी इस प्रकार है।
3: चौति चंद्र हुण्णिमेयन्नु तोरुवुदिल्ल, हुण्णिमेयेंदु अमावास्ये आगुवुदिल्ल। चौति चंद्र हुण्णिमेयन्नु तोरुवुदिल्ल, हुण्णिमेयेंदु अमावास्ये आगुवुदिल्ल। सोमारी मनुज होत्तिगे मुंचे एळुवुदिल्ल, शिस्तनु मरेये बाळल्लेंदु एळिगे इल्ल। ಸೋಮಾರಿ ಮನುಜ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತನು ಮರೆಯೇ ಬಾಳಲ್ಲೆಂದು ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ. ತರುಲತೆಗಳು ಮಾನವರಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತದ್ದಿಲ್ಲ. ತರುಲತೆಗಳು ಮಾನವರಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮರಗಿಡಗಳು ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮರಗಿಡಗಳು ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ.
1: ಆರ್ ಯೇ ತೀಸ್ರಾ ಔರ್ ಅಂತಿಮ್ ಚರಣ್.
3: ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮನುಜ ಕಲಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಸರ್ಗ ಪಾಠ

0: चलिए अब हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। वाद्यों के साथ गाने में बड़ा मजा आएगा, है ना?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सितार बजाने के लिए यहाँ आए हैं जयंत कुमार दास, कीबोर्ड पी मोहनराज, गिटार बी ए जय सिंह, श्रुति सहकार दे रहे हैं सी वी रामकृष्णा, तबला बजाकर भाई रविंद्र यावगल आपके दोस्त बन गए हैं ना? चलो अब तबले पर संगीति दे रहे हैं रविंद्र यावगल।

0: आएंगे। वाद्यों के साथ गाने में बड़ा मजा आएगा, है ना?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सितार बजाने के लिए यहाँ आए हैं जयंत कुमार दास, कीबोर्ड पी मोहनराज, गिटार बी ए जय सिंह, श्रुति सहकार दे रहे हैं सी वी रामकृष्णा, तबला बजाकर भाई रविंद्र यावगल आपके दोस्त बन गए हैं ना? चलो अब तबले पर संगीति दे रहे हैं रविंद्र यावगल।

0: अब आपने एक गीत सीख लिया ना, क्या इस गीत आपको कैसे लगा?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बाकी बच्चों को भी सिखाएंगे ना?
2: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में कन्नड़ सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
3: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वही हमारा साथ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुन लेते हैं पहले ये संदेश।
2: चेक
3: जाना पड़ेगा।
2: अरे गेम छोड़ के?
3: एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है?
2: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए। आरबीआई के ऑम्बड्समैन को।
3: कैसे?
2: आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं फिल्म जिद्दी से ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म से सुना आपने इस गीत को आशा भोसले की आवाज में। SH बिहारी के बोल थे, संगीत था OP नैयर का। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म यकीन से, मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

तेरे मेरे सपने फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। नीरज के बोल थे और संगीत था एसडी बर्मन का। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेरे घर के सामने फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत है एसडी बर्मन का।

अभी आपने सुना तपस्या फिल्म से ये गीत आरती मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाज़ में। एमजी हसमत के बोल थे और संगीत था रविंद्र जैन का। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तलाश से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है एसडी बर्मन का।

0: फिर से तो फरमाना।
1: तमाशा फिल्म के इस गीत के साथ ही समाप्त होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
2: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
3: हम गवन मनाही जई बे बिनारे झूलनी, हम गवन मनाही जई बे बिनारे झूलनी।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बच्चों के लीजिए सुनिए बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल संग।

0: बच्चों जय हिंद। जय हिंद पूजा दीदी।
1: जय हिंद सुखदा दीदी, कैसी हैं आप?
0: मैं तो अच्छी हूँ, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी अच्छे होंगे।
1: हाँ, वो तो हमारे नन्हे मुन्ने साथी अच्छे भी होंगे और छुट्टियों का खूब मजा ले रहे होंगे।
0: भैया, आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर दिन के 7 से 8 घंटे फोन या लैपटॉप, टैबलेट या टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को देखते हुए समय बिताते हैं, है ना, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी बहुत ही हानिकारक है।
1: वो तो है दीदी। और आजकल के बच्चे जब गेम में बिजी रहते हैं तो उन्हें आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो खेलना ही नहीं चाहते हैं, क्यों दीदी?
0: बिल्कुल। अब छुट्टियां हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो कुछ बच्चे हमारे बाहर ही खेलते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि अब तो एग्जाम नहीं है, स्कूल नहीं है, तो सब बैग और सारी कॉपियों को अलमारी में रख कर बस केवल टैबलेट या लैपटॉप या फिर मम्मी पापा का मोबाइल लेके दिन भर वो गेम खेलते रहते
1: खेलते
0: हैं,
1: रहते हैं।
0: है ना। तो इससे क्या होता है, एक तो उनका जो मानसिक उनकी वृद्धि होती है
1: वो नहीं हो पाती
0: वो
1: है।
0: नहीं हो पाती है ना।
1: और पता है दीदी, जब हम बचपन में छोटे थे तो हम लोग कितने सारे खेल खेलते थे ना, जैसे खो खो है, कबड्डी है, रस्सा कस्सी है, और फुटबॉल है, बैडमिंटन है। ये खेलने में बड़ा मजा आता था, और साथ में साथ हमें पता भी चलता था कि किस गेम में कितने खिलाड़ी होते थे, क्यों दीदी?
0: बिल्कुल, बहुत आनंद आता था। तो बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सर्वांगीण विकास हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, तो आप भी बाहर प्रकृति के बीच आपको जाना चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, है ना दीदी।
1: हाँ दीदी, और आउटडोर गेम्स खेलने से दीदी हमारी जो हड्डियाँ हैं ना, यानी हमारा शरीर जो है ना, वो मजबूत बनता है। हमें जो तनाव होता है कि अरे मैंने ये काम नहीं किया, ये कैसे होगा, तो इससे हमें राहत

0: मिलती, और साथ ही साथ बच्चों हमारा दिमाग यानी कि आपका दिमाग भी तेज होगा अगर आप आउटडोर गेम खेलेंगे तो।
1: वैसे दीदी, मैंने सुना है बहुत सारे फायदे होते हैं बाहर खेलने से। और बच्चों, पता है, जब आप बाहर खेलेंगे ना तो आपकी शारीरिक क्षमताएं विकसित होंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपकी मांसपेशियों में ताकत बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपकी मनोदशा में भी सुधार आएगा। और बाहरी वातावरण बच्चों को चलने, खेलने और झूला झूलने के लिए भी पर्याप्त जगह होती है ना? और बच्चों बाहर जैसे कैच कैच खेल सकते हैं, पकड़ा पकड़ी खेल सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ना, साइकिलिंग करना, बहुत से आउटडोर गेम खेल सकते हैं। दीदी, जब बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलता है ना, तो वे अपने शरीर और आत्मविश्वास दोनों को मजबूत कर सकते हैं।
0: और दीदी पता है आउटडोर गेम्स खेलने से हमारा शरीर तो मजबूत बनता ही है, साथ ही साथ जो हम रोज डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं गेम की उसमें हम और अच्छे हो जाते हैं, मतलब हम और अच्छे से खेलना सीख जाते हैं, जिससे हमारा स्टेट लेवल पे भी खेल सकते हैं और बाहर जाके भी खेल सकते हैं, क्यों दीदी?
1: बिल्कुल। और बाहर अधिक समय बिताने से खेल खेलने वाले बच्चों को किक मारने, कैच पकड़ने और बैटिंग करने जैसे कौशलों का अभ्यास करने का भी अवसर मिलता है, जो भी उनके खेल के लिए आवश्यक होता है ना? और बाहर खेलने से बच्चों को पर्याप्त मात्रा में, सबसे बड़ी बात दीदी, कि विटामिन डी मिल सकता है,
0: देवा
1: जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर धूप में रहने के दौरान इसका उत्पादन करता है और ये कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। लेकिन बच्चों को आमतौर पर अपने आहार से जो वो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उनको विटामिन डी तो मिलता है, लेकिन धूप में खेलने से, बहुत ज्यादा धूप में नहीं बच्चों नहीं तो
0: नहीं
1: ये
0: तो
1: हुआ
0: आप
1: कि
0: बीमार पड़ सकते हैं।
1: हाँ, तो बाहर खेलने से आपको विटामिन डी मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे।
0: और आपकी हड्डियां तो वैसे भी मजबूत होंगी। तो बच्चों आउटडोर गेम्स खेलिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे टाइम बस आउटडोर गेम ही खेलें, उसके साथ साथ घर के भी जो काम है यानी कि मम्मी का हाथ बटाना है, पापा के साथ कहीं बाजार किसी काम से जरूरी काम से जाना है, जो आपके स्कूल के जो होमवर्क बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आउटडोर गेम खेलने से ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी और हेल्थ तो अच्छा हो गई, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी और मम्मी पापा के बातों का भी ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही दीदी आपने कि सबकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो करते ही होंगे।
0: हाँ करते ही होंगे हमारे नन्हे मुन्ने साथी।
1: और बच्चों, जैसे एक बात मैंने बताई है ना कि धूप में खेलना, तो धूप में ज्यादा नहीं खेलना, क्योंकि गर्मी के दिन है ना
0: हाँ
1: बीमार भी पड़ जाएंगे आप लोग।
0: धूप में खेलना यानी कि जैसे सुबह है, सुबह बहुत तेज धूप नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए आप बाहर खेल सकते हैं और शाम को भी आप आराम से आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। और दीदी देखिए ना, आजकल तो बच्चे गली गली में क्रिकेट खेलते हैं, घाट पे क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? तो
1: बिल्कुल।
0: बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, आप भी उनकी तरह आपके आसपास गली में बच्चे हैं उनके साथ मिलकर खेलें, बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल है, और सबसे बड़ी बात दीदी रस्सा कस्सी। इसमें क्या होता है पता है, जब मतलब जो बच्चे हैं दोनों साइड से रस्सी को खींचते हैं तो उससे पता चलता है कि कौन कितना मजबूत है।
1: बिल्कुल, लग रहा है दीदी आपने बहुत खेला
0: हाँ
1: है
0: मैंने तो बहुत खेला है और बहुत अच्छा लगता है, ये आउटडोर गेम्स भी है और हमें पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही दीदी आपने। दीदी, जब हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं, खास तौर से बाहर,
0: हाँ
1: तो अच्छा तो लगता है, बहुत हम लोग एंजॉय भी करते हैं, मतलब बच्चों के साथ साथ बड़े भी एंजॉय करने
0: हाँ
1: लगते
0: और
1: हैं।
0: साथ में अगर गाने बजे तो और जोश आ
1: हाँ
0: जाता है, क्यों?
1: बिल्कुल, बहुत जोश आ जाता है, तो क्यों ना आज हम अपने बच्चों को एक प्यारा सा गीत भी सुनवा देते हैं।

0: दीदी, जैसे हम लोगों ने जब छोटे थे तो कहानियां वगैरह सुनते थे, और उस वक्त तो बहुत आनंद भी आता था, है ना। और कहानियां जब गांव में सुनी जाती थी तो कैसे सब एक पेड़ के नीचे बैठ के हमारे दादा दादी नाना नानी से कहानियां सुनाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था।
1: हाँ, वो तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि कहानियां इतनी रोचक होती थी ना कि सुनते सुनते पता ही नहीं चलता था कि कब समय निकल गया।
0: ऐसी ही एक कहानी हम आज अपने बच्चों को सुनवाएंगे, जिसका शीर्षक है बरगद का पेड़, और कहानीकार है सविता सिंह।
2: वीर, आप क्या कर रहे हैं? सूर्या ने अपने 9 साल के बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। माँ, मैं जहाज उड़ा रहा हूँ। वीर कागज से बने जहाज को आसमान की ओर उड़ाते हुए बोला। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर जहाज बनाया है आपने। नहीं माँ, मैंने नहीं, पिताजी ने मुझे जहाज बनाकर दिया है। तभी जहाज जाकर पानी में गिर गया। वीर उदास हो गया, फिर तुरंत वह दौड़ पड़ा। माँ ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हैं? पिताजी के पास।

पास वीर रुककर बोला, क्यों? मैं उनसे नया जहाज बनवाऊंगा, चहकते हुए बोला वीर। ठीक है, बनवा लीजिएगा, पर पहले मेरी बात तो सुनिए, आइए मेरे साथ। सूर्या वीर को लेकर पानी में गिरे जहाज के पास लाई और पानी से जहाज निकालकर बोली, देखिए क्या अब ये आपके काम आ सकती है? नहीं माँ, यह तो खराब हो गया, रुआसे स्वर में वीर बोला। खराब हो गया ना, चलिए मैं आपके लिए नया बना देती हूँ। सच माँ, आप बना देंगी? आपको आता है जहाज बनाना? हाँ, मुझे कागज से बहुत कुछ बनाने आता है, मैं रोज आपको कुछ न कुछ बनाकर दूंगी। वाह, तब तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आप जाइए और कागज ले आइए, आप जो कहेंगे वो मैं बना दूंगी। वीर तेजी से भागा और अपने स्कूल बैग से अपनी कॉपी निकाल कर ले आया और झट से एक पन्ना फाड़ने ही वाला था कि माँ ने उसका हाथ थाम लिया। क्या कर रहे हैं? आपको कागज दे रहा हूँ जिससे कि आप जहाज बना सकें। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन पहले आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए, अगर इससे मैं जहाज नहीं बनाऊंगी तो फिर इस कागज का आप क्या करेंगे? मैं इस पर लिखूंगा। तो ठीक है, इस पर आप लिखना, मैं आपके लिए बेकार के कागज से जहाज बना दे रही हूँ। जाइए पुराना अखबार लेकर आइए। वीर दौड़कर अखबार ले आया। माँ ने जब बड़ा सा जहाज बनाकर उसके हाथों में दिया तो वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। सूर्या मुस्कुराते हुए बोली, कुछ कमाल आप भी कर सकते हैं। वह कैसे? वह ऐसे कि अगर आप अच्छे कागज बचाएंगे तो आपकी कॉपियां ज्यादा दिन चलेंगी, आपके पिताजी का पैसा भी बचेगा और सबसे बड़ी बात कि पेड़ कटने से बच जाएंगे। कागज बचाने से पेड़ कटने से कैसे बच जाएंगे माँ? वह ऐसे कि पेड़ों से ही कागज बनता है और जब कागज चाहिए तो पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे, बीच में ही वीर बोल पड़ा। बिल्कुल ठीक, सूर्या मुस्कुरा दी। अब मैं कागज बर्बाद नहीं करूंगा, इतना कहकर वीर जहाज उड़ाने में व्यस्त हो गया। अगले दिन वीर जब स्कूल जा रहा था तो उसके साथ उसके माँ पिताजी भी जा रहे थे, क्योंकि आज अभिभावकों के साथ शिक्षक गण बातचीत करने वाले थे। वीर खुशी से उछल रहा था। हॉल में प्रधानाचार्य, शिक्षक, बच्चे और अभिभावक गण बैठे थे। प्रधानाचार्य ने सबको संबोधित कर अपनी बात कही और फिर अभिभावकों से अपनी बात कहने को कहा। एक एक कर सबने अपनी बात कही। सूर्या भी उठी और विनम्रता से बोली, सर अगर आप आज्ञा दें तो मैं वहाँ स्टेज पर आकर अपनी बात रखना चाहती हूँ। प्रधानाचार्य ने सम्मान सूर्या को स्टेज पर बुलाकर माइक उसके हाथ में थमा दी। सूर्या ने बोलना शुरू किया, सबसे पहले मैं आप सभी को अपने साथ लाई ये कॉपियां दिखाना चाहती हूँ जो मेरे बेटे वीर की कक्षा 2 की है, अभी वह कक्षा 3 में है। देखिए लगभग आधी या उससे अधिक खाली है, कुछ भी नहीं लिखा गया है। ऐसा प्रत्येक वर्ष सभी बच्चों के साथ सभी स्कूलों में होता है। जब भी वे नई कक्षा में जाते हैं कॉपी किताब सभी नए लेने होते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर कापियों को भरने के बाद बदला जाए तो कितना ही अच्छा हो, क्योंकि कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। आप सभी जानते होंगे इसका दुष्परिणाम पर्यावरण पर पड़ता है। कहा भी गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो क्या हम अपनी ओर से एक छोटा प्रयास नहीं कर सकते अपने पर्यावरण के लिए? मैंने अपने वीर को सारी बातें बता दी हैं और अच्छे से समझा भी दिया है और वह समझ भी गए हैं, लेकिन एक वीर के समझने से बात तो नहीं बनेगी ना, इसलिए मैं आज अपनी और आप सबकी बात रखने यहाँ आई हूँ। मुझे आशा है धीरे धीरे सभी इस बात को समझ जाएंगे। प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षक गण अगर ठान लें तो यह असंभव काम संभव हो सकता है, इससे हमारा सिर्फ फायदा ही फायदा है। आपको मालूम है 40% पेड़ काटे जाते हैं कागज बनाने के लिए। जो जानवर कभी जंगल पर राज किया करते थे आज वे शहर में घुसकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कारण वही है, अगर आप उनका घर खाना खत्म कर देंगे तो वे कहाँ जाएंगे? कुछ लोग कागज के

0: एक तरफ ही लिखते हैं, दूसरी तरफ का पन्ना बेकार हो जाता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन, ठंडी हवा, फल फूल, मसाले, सब्जी, दवा, चारा, लकड़ी, ईंधन, घर तो देता ही देता है, यहाँ तक कि वह बादलों को अपनी ओर आकर्षित कर पानी भी देता है। पीपल तो एक ऐसा पेड़ है जो दिन के साथ साथ रात में भी हमें ऑक्सीजन देता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज पेड़ों की पूजा किया करते थे। आज के समय की मांग है कि हम पेड़ बचाएं भी और लगाएं भी। धन्यवाद। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वीर उछल उछल कर जोर जोर से ताली पीट रहा था। प्रधानाचार्य ने माइक लिया और कहना शुरू किया, आपने बहुत अच्छी और सही बात कही। मैं हम सबकी ओर से वादा करता हूँ कि हम आज से ही कागज बचाने की मुहिम शुरू करते हैं और साथ ही साथ पेड़ लगाने की भी। आप अभिभावक गण भी अपनी ओर से जरूर प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। अगले दिन वीर लस्सी पी रहा था। सूर्या ने पूछा, वीर लस्सी पीने के बाद कुल्हड़ का क्या करेंगे? वीर ने हंसकर कहा, कूड़ेदान में फेंक दूंगा। सूर्या ने कहा, नहीं, मेरे साथ चलिए, मैं बताऊंगी क्या करना है। लस्सी पीने के बाद वीर ने माँ की ओर ताका। सूर्या ने कहा, चलिए मेरे साथ, और उसे लेकर बगीचे में गई और वीर से बोली, पहले आप इसे पानी से धोकर साफ कर लीजिए, फिर यहाँ से मिट्टी उठाकर इसमें भर दीजिए। वीर ने वैसा ही किया। सूर्या ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें सरसों के बीज थे। वीर के छोटे छोटे हाथों में सरसों देखकर बोली, इसे अपने इस छोटे से गमले में डाल दीजिए। इससे क्या होगा माँ? वीर ने उत्सुकता से पूछा। जादू होगा, जादू, आपके हाथों का जादू। 2-3 दिन बाद देखिएगा। सच? हाँ, बिल्कुल सच। वीर कहाँ 2-3 दिन रुकने वाला था। वह जब भी मौका मिलता अपने छोटे से गमले में झांक आता, यह देखने कि आखिर कौन सा जादू होने वाला है। आखिरकार 2 दिन बाद उसे जादू दिख ही गया। कुल्हड़ में हरे हरे बहुत ही छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। वीर कुल्हड़ ले माँ के पास दौड़ा गया और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, माँ माँ, जादू हो गया, यह देखिए। वाह, देखा आपने कि आप अपने छोटे छोटे हाथों से कितने बड़े बड़े जादू कर सकते हैं। सूर्या वीर के चेहरे पर चमक रही खुशी को देख स्वयं भी खुश हो रही थी। माँ, यह मैं कल अपने विद्यालय ले जाऊंगा और सभी को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि यह मैंने कैसे उगाया। वीर के चेहरे से खुशी टपक रही थी। ठीक है, तो आप छोटे बच्चे छोटे छोटे पौधे उगाएं और हम बड़े बड़े बड़े पेड़ लगाएंगे। दे ताली कहकर वीर ने हाथ उठाया। ले ताली कहकर सूर्या ने अपना हाथ वीर के हाथ में दे दिया और दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे कहानी। कहानी का शीर्षक था बरगद का पेड़ और कहानीकार थी सविता सिंह।
2: दीदी, कहानी तो बहुत ही अच्छी थी और कहानी सुन के आनंद भी बहुत आया और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी खूब एंजॉय किए होंगे कहानी सुन के, है ना।
1: हाँ
2: लेकिन दीदी देखिए ना, यहाँ हमारे साथ एक नन्ही सी बच्ची और भी है जो कि कुछ प्रस्तुत करना चाहती है ना। बेटा अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम देवांगना फनी है।
2: आप क्या सुनाएंगी?
3: आज मैं एक देवी स्तुति सुनाने जा रही हूँ।
2: चलिए सुनाइए।

0: अरे वाह देवांगना, आपने तो बहुत ही सुंदर देवी गीत प्रस्तुत की है और हम तो एकदम मुग्ध हो गए। ऐसा लग रहा था
1: हाँ,
0: कि
1: बहुत
0: सुनते ही
1: अच्छी
0: रहो।
1: प्रस्तुति थी और लग रहा था कि बस सुनते ही रहें, ये खत्म ना हो।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम घर में बैठ के मम्मी पापा के साथ बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं या कहीं से कोई समाचार आ रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, या फिर इधर उधर की बातें। बातों का मतलब ये है कि हमारे पड़ोसी देश क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो आपको भी होनी चाहिए क्योंकि आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, है ना दीदी?
1: हाँ दीदी, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दीदी? रोज अखबार पढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीदी आपने कि हमें नियमित रूप से अखबार पढ़ना चाहिए। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, है ना,
1: हाँ
0: लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत ही आनंद आएगा।
1: और दीदी, अखबार पढ़ने से सिर्फ हमें पढ़ना नहीं आता है, हमारी जो मात्रा है, जो हमारे उच्चारण है, वो भी अच्छे हो जाते हैं। और जब भी हमें कुछ पढ़ना होता है तो अब हमें देर नहीं लगती, हमें सोचना नहीं होता है कि अच्छा ये कठिन है तो ये नहीं पढ़ पाएंगे। अखबार पढ़ने से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है, एक तो हम अच्छे से बोलना सीख लेते हैं, हमारे उच्चारण अच्छे हो जाते हैं, हमें मात्राओं का जो भेद होता है यानी अंतर होता है वो पता चलता है।
0: है ना?
1: हाँ
0: और दीदी, एक जैसे आपने कहा कि

0: मात्राओं का ज्ञान होता है तो अखबार पढ़ने से एक फायदा और होता है,
1: वो क्या है दीदी?
0: वो ये कि हमें नए नए शब्दों का भी ज्ञान होता है,
1: हाँ
0: हमें बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलती हैं, नए नए शब्द मिलते हैं जिन्हें हम अपने आने वाले जीवन में उपयोग कर सकें।
1: बच्चों, जैसा कि दीदी ने आपको बताया कि जब आपको नए शब्द मिलते हैं तो इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं।
0: और इसके अलावा बहुत सी जनरल नॉलेज की भी चीजें होती हैं
1: हाँ
0: जो कि बच्चों को बहुत काम आ सकती हैं। मैंने देखा है कभी कभी कहीं ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें कुछ अचानक से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो याद आता है, अरे मैंने तो वो न्यूज़पेपर पढ़ा था ना, तो
1: हाँ
0: उसमें मैंने ये
1: ये
0: न्यूज़ पढ़ी थी।
1: और ये इसका आंसर भी ये था।
0: हाँ, तो
1: हाँ
0: देखिए बच्चों क्या फायदा होता है
1: और दीदी
0: न्यूज़पेपर
1: पता है,
0: पढ़ने से।
1: न्यूज़पेपर में कभी कभी अच्छी अच्छी कहानियां भी निकलती हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं।
0: दीदी लेकिन अब देखिए, अब तो घड़ी की सुई भी टिक टिक कर रही है।
1: हाँ कह रही है कि हमें अपने नन्हे मुन्ने साथी से आज यहीं विदा ले लेना चाहिए।
0: जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम इस छोटे से संदेश के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। इस कार्यक्रम में आज का विषय है सिर की चोट और बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से बातचीत कर रही हैं शिखा श्रीवास्तव।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम, अपनी रेडियो मित्र शिखा श्रीवास्तव के साथ। सड़क दुर्घटना में या खेल के दौरान चोट लगी हो या फिर घर में कहीं गिर जाना, ऐसे में अगर सिर पर चोट लग जाती है तो ये मामूली देखने में भले ही लगती हो, किंतु इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जरा सी अनदेखी करने पर हम बहुत बड़े संकट में भी पड़ सकते हैं। कभी कभी स्थिति अत्यंत जटिल भी हो जाती है। तो सिर की चोट के बाद किन किन संकेतों पर तुरंत ध्यान देना है, कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, ऐसे मामलों में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, इन सब महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ चिकित्सक न्यूरो और स्पाइन सर्जन डॉक्टर सुनील सिंह जी को। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद शिखा जी।
0: सर, फोन के इंतजार तक हम इसी बात पर चर्चा कर लें कि ये सिर की चोट जो है इसको हम कितना गंभीर मान सकते हैं।
1: देखिए, जो सर की चोट है वो भारत में बहुत बढ़िया गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ी बात कि औसतन प्रतिवर्ष भारत में 15 से 20 लाख लोग सड़क की चोट से होने वाली दुर्घटना से प्रभावित होते हैं, जिसमें उनको सर में चोट लगता है
0: जी।
1: और इसमें कम से कम 10 लाख लोग प्रतिवर्ष मृत्यु हो रही है सर की चोट से
0: जी।
1: अच्छा, इन चोटों में चूंकि हम जान रहे हैं कि भारत में हमारी ज़्यादातर आबादी युवा लोगों की है, तो इसमें ज़्यादातर आबादी 15 से 40 साल के युवा

0: की है जो देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो
1: जी
0: ये
1: जी
0: एक बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है जिसपे हम अगर काम करें, जिसपे बचाव के उपायों पे काम करें तो इसमें बेहतर किया जा सकता है।
1: सिर में चोट लगी तो किन परिस्थितियों में हम समझेंगे कि ये गंभीर चोट है? कभी कभी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, कभी कभी खून बाहर निकलने लगता है। सिर के किस हिस्से पर चोट लगे कि इसको गंभीर समझा जाए?
0: देखिए, सर को कई हिस्सों में बांटा गया। सर का जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको स्कैल्प बोलते हैं, जो खोपड़ी के बाहर की आवरण है।
1: जी
0: दूसरे हिस्से को जो है खोपड़ी है, जो हड्डी से बनी हुई है, और अंदर का हिस्सा है जो ब्रेन है। तो जो ज़्यादा हम लोग मतलब बात करते हैं उसको ब्रेन इंजरी या ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो अगर किसी के ब्रेन में इंजरी है
1: जी
0: तो उसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जो कि हमको बता

0: इंजरी है,
1: जी
0: तो उसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि नहीं, हमको चिकित्सकीय सलाह की जरूरत है। जैसे चोट लगने के बाद कुछ मिनट या कुछ पल के लिए मरीज का बेहोश होना या व्यक्ति का बेहोश होना, ठीक
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: बेहोश होने के बाद होश में ना आना, लगातार उल्टी होना, नाक कान मुंह से खून आना, मिर्गी के झटके आना, सर में दर्द बना रहना, सुस्ती की अवस्था में रहना, उसके अलावा आंखों से कम दिखाई पड़ना या दो दो दिखाई देना,
1: जी
0: ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमको बताते हैं कि अंदरूनी चोट होने की संभावना है।
1: जी तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर?
0: सबसे पहले तो ये समझना है ना कि सर की चोट जो है बहुत गंभीर होती है, तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण लग रहे हैं ना, तो उसमें फिर विलंब नहीं करना है, आपको चिकित्सकीय सलाह लेनी है, न्यूरोसर्जन से मिलना है।
1: अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि चोट लग जाती है और ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में लोग नजरअंदाज करते हैं, चलो चोट लगी है, क्या हुआ? तो आपकी क्या सलाह है इस बारे
0: देखिए,
1: में?
0: यही ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए ना, क्या है ना कि हमने जो देखा है ना कि घर वाले बाहर की चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, चेहरे में सूजन हो गई या कट गया और कितने टांके लगे हैं, इन सब बातों का विशेष ध्यान देते हैं।
1: जी
0: पर कई बार ऐसा होता है कि चोट अंदरूनी होती है, बाहर से कुछ नहीं दिखता है। जो बाहर की चोट होती है ना, उसके लिए घर वाले तत्काल सलाह लेते हैं, अगर किसी को बड़ा कटा है, कुछ टांके ज्यादा लगे हैं, ब्लड ज्यादा आ रहा है, सूजन ज्यादा आ रही है, तो उसको लेकर तुरंत सलाह लेते हैं, अच्छी बात है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि बाहरी चोट नहीं होती, अंदरूनी चोट होती है, और कुछ कुछ ऐसे गंभीर अंदरूनी चोट हैं जिसमें मरीज शुरुआत में होश हवास की अवस्था में भी रहता है,
1: जी
0: पर उसकी सर की अंदरूनी चोट के लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्था में कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि कुछ चोटें ऐसी हैं जो जिसमें शुरुआत में मरीज होश में रहेगा और बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, पर वो बहुत जानलेवा होता है और मरीज की जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो
1: जी
0: ऐसी स्थिति में आपको जांच करानी है, न्यूरोसर्जन से मिलना है और सलाह लेनी है।
1: अच्छा, सबसे पहली जांच क्या होती है सर इसमें?
0: सर की चोट के लिए जो जो सर्वोत्तम जांच है, वो सर का सीटी स्कैन है, प्लेन सीटी हेड जो है वो बेस्ट जांच है।
1: जी
0: ये बेस्ट कई मामलों में, क्योंकि सर की सारी चोटें उसमें आ जाती हैं। दूसरी बात, इसमें समय बहुत कम लगता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीटी स्कैन में रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा होता है।
1: अच्छा सर, जब घर में कभी चोट लगती है किसी को या गिर जाता है, पता नहीं चलता, और बहुत समय बाद अचानक सिर में दर्द होने लगता है, हाँ,
0: जी,
1: तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या सलाह आप हमारे श्रोताओं को देंगे?
0: देखिए, दर्द के कई वजह हो सकते हैं। जैसे कि एक जो बाहरी चोट लगी है, वहां पे कहीं कटा है तो वहां पे भी दर्द होगा, पर अंदरूनी दर्द है। दूसरी बात, जहां चोट नहीं लगी उसके अलावा पूरे सर में दर्द है, और उसके अलावा सर की चोट के और भी कई लक्षण हैं, जैसे सुस्ती, उल्टी, अत्याधिक दर्द, मिर्गी के झटके, इस तरह के कुछ और भी लक्षण हैं, तो वो बहुत संभावना है कि उनको बाहरी चोट के अलावा अंदरूनी भी चोट हो, तो
1: जी
0: उसको जांच करा के देखना पड़ेगा और फिर उसका आगे इलाज करवाना पड़ेगा।
1: एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं, तो कहते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, उसको गुरमा निकल गया है,
0: जी जी
1: ऐसा बोलते हैं,
0: जी
1: तो क्या ये भी खतरनाक हो सकता है या ये मामूली चोट है?
0: देखिए, बच्चों के केस में क्या है ना कि देखिए, कहीं भी अगर जैसे कि चोट लगी तो इंटरनल ब्लीडिंग हुई, तो खोपड़ी के बाहर और चमड़ी के अंदर में ब्लीडिंग हो गई।
1: जी
0: पर बड़ों के केस में क्या है ना कि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो बड़ों में रिजर्व अच्छा होता है। छोटे बच्चों में क्या होता है ना कि अगर बहुत छोटा बच्चा है, कुछ महीनों का बच्चा है, तो उसके शरीर में ऑलरेडी बहुत कम खून होता है। बड़ों की तुलना में छोटे बच्चों में अगर गुर्मा बड़ा बन रहा है, तो उसमें खून की कमी अत्यधिक हो सकती है।
1: जी सर, एक फोन आ रहा है।
0: जी
1: हेलो,
2: हेलो जी, नमस्कार। मैम,
1: नमस्कार, कौन बोल रही है मैडम?
2: मैं मंजू कुमारी झारखंड से बोल रही हूँ।
1: मंजू जी झारखंड से बोल रही हैं, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज डॉक्टर सुनील सिंह जी, जो कि न्यूरो और ब्रेन के सर्जन हैं, हमारे बीच में हैं, तो सिर की चोट पर आज हम बात कर रहे हैं। आप क्या जानना चाहती हैं डॉक्टर साहब से बात करें?
2: जी मैम, हाँ जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: सर, मेरा एक छोटा बच्चा है, वो उसको 6-7 साल की उम्र में चेयर से गिरने पे कई बार खेलते समय भी चोट आ गई है।
0: जी
2: तो क्या पूछना चाह रहे हैं कि क्लॉटिंग वगैरह की जांच करा ले हम।
0: देखिए ऐसा है ना कि देखिए हर उम्र में चोट के अलग लक्षण होते हैं। अगर जैसे कि बच्चा अभी पूर्ण रूप से ठीक है, उसका विकास ठीक है, किसी अन्य प्रकार की परेशानी नहीं है, तो इसमें जांच के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सीटी स्कैन है इसमें रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, तो भविष्य में खतरे रहते हैं। तो अगर कोई लक्षण नहीं है तो बचाव करने की जरूरत ज्यादा है कि आगे चोट ना लगे, अभी तत्काल में कोई लक्षण उसको इस तरह के

0: हाँ, कोई लक्षण तो दिखाई नहीं देते हैं।
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और इसी तरह आरोग्यम में फोन करते रहें। हाँ सर, हम लोग सिर की चोट पर बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम में एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो इलाज शुरू होने की प्रक्रिया है, इसमें समय का कितना महत्व होता है?
2: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये।
1: सर एक फोन
2: जी
1: और
2: जी
1: आ रहा
2: जी
1: है।
2: जी
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं सर और कहाँ से?
3: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पत्योकर, पोस्ट राम जालगंज, जिला जौनपुर से बोल रहे हैं।
1: हाँ गुलाब चंद मिश्रा जी, डॉक्टर सुनील सिंह जी हमारे बीच में हैं और सिर के चोट पर आज बात हो रही है, तो डॉक्टर साहब से आप बात करें।
3: हमारे सिर पे जो है आगे तरफ चोट लगी थी
2: जी,
3: दर्द रहता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए?
2: नहीं, कब चोट लगी थी और चोट के लगने के बाद ही दर्द हुआ था कि उसके आगे पीछे भी दर्द था? मतलब
3: नहीं,
2: चोट आपको
3: उसके
2: कब
3: बाद।
2: लगी थी? आपको चोट के कितने दिनों बाद दर्द शुरू हुआ था?
3: चोट के करीब 1 महीने बाद।
2: अमूमन ये सर की चोट से संबंधित नहीं है दर्द, ठीक है ना? और सर दर्द की और भी कई वजहें हो सकती हैं। ये कब दर्द आपका ज्यादा होता है, किन परिस्थितियों में दर्द ज्यादा होता है?
3: सोने के वक्त तो।
2: और एक तरफ ज्यादा होता है कि पूरे सर में रहता है?
3: नहीं, एक तरफ।
2: एक
3: हाँ।
2: तरफ। तो ये ना, मतलब ये चोट से लगा होने की बहुत कम संभावना है। माइग्रेन या तनाव से टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं, उसकी संभावना ज्यादा है, ठीक है ना? आप सर दर्द के लिए ना एक न्यूरो विशेषज्ञ से मिल लें, ये दवाइयाँ चलती हैं, ठीक हो जाती हैं, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, पर इसमें वजह ढूंढने की जरूरत होती है। कभी कभी कुछ और भी वजह होते हैं जिसमें इस तरह के लक्षण हैं, पर बहुत कम संभावना है कि आपका ये चोट की वजह से हो। तो इसमें एक किसी न्यूरो विशेषज्ञ से मिल के उसका इलाज शुरू करवाएं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब चंद्र जी।
2: जी
1: हाँ, हाँ सर, हम लोग समय के महत्व की बात कर रहे थे कि इलाज शुरू होने में जो समय लगता है उसका कितना महत्व है?
2: देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। बहुत ज्यादा मरीजों की स्टडी करके जो पाया गया है कि जो सर की चोट में जो मृत्यु होती है वो 3 हिस्सों में बांटी गई।
1: जी
2: उसमें जो 50% तक की मृत्यु है वो कुछ सेकेंड से कुछ मिनट में हो जाती है।
1: जी
2: उसके अलावा 30% जो मृत्यु है वो 1 घंटे के अंदर हो जाती है, 1 घंटे के अंदर,
1: जी
2: और बाकी जो 20% है वो 1 घंटे के बाद का है।
1: जी
2: तो शुरुआत के 1 घंटे में जो सर की चोट से होने वाले मृत्यु है उसका 80% हिस्सा है। तो शुरुआत का 1 घंटा है उसको जो बोला जाता है गोल्डन आवर।
1: अच्छा,
2: अगर उसमें मरीज को समुचित इलाज मिलता है तो उसकी जान बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए भी अगर किसी को सर के गंभीर चोट के लक्षण है तो उसमें समय बहुत कीमती होता है। आप बेस्ट अस्पताल के खोज में अगर आपने कीमती 1 घंटा गवा दिया
1: जी।
2: और मरीज को चोट गंभीर है तो आप बेस्ट जगह भी पहुंच के ना आप रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को समझना है।
1: सर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर चोट लगी और हमारे आसपास अभी हॉस्पिटल नहीं है, दूर है, तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए वैसी कंडीशन में?
2: देखिए, प्राथमिक उपचार ये है ना कि सबसे पहले तो अगर संभव हो तो मरीज का थोड़ा सा सिरहाना, जो भी जिनको चोट लगी है सिरहाना थोड़ा ऊंचा रखें, ठीक है ना
1: जी।
2: दूसरा, इसमें एक विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है ना कि जैसे एक्सीडेंट के केस में कोई जरूरी नहीं कि मरीज के सर में ही चोट हो, उसके अन्य हिस्सों में भी चोट हो सकती है। और उसमें सबसे ज्यादा जो जटिल होती है वो गर्दन की चोट होती है, जो कि पता नहीं चलती है और मरीज को परमानेंट अपंग बना सकती है। तो गर्दन का मूवमेंट, खासकर बेहोश मरीज को, क्योंकि बेहोश मरीज नहीं बताएगा उसको कहाँ दर्द है, तो उसके गर्दन के मूवमेंट को बहुत मिनिमम रखें, कम रखें, ठीक है? कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो ना तो उसको आप प्रेशर दे के उसको रोक सकते हैं, एक साफ रूमाल से या किसी कपड़े से या हाथ से भी, साफ हाथ से दबा के ब्लीडिंग को कम करने का प्रयास करें। और अगर मरीज को उल्टी आ रही है या मुंह से ब्लड वगैरह आ रहा है तो उसको एक करवट करके रखना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो उल्टी होती है वो बेहोशी की अवस्था में फेफड़े में जाके और सांस की तकलीफ करती है और जानलेवा होती है। और कोशिश करें कि ऐसे मरीजों को जो पास का ट्रॉमा सेंटर है वहां पर पहुंचाने का प्रयास करें।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारियां आप दे रहे हैं और हमारे श्रोताओं को जरूर इससे लाभ मिलेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि सिर की चोट में ऑपरेशन कब जरूरी हो जाता है और कब स्थितियां ऐसी बनती हैं कि दवा से ही कंट्रोल हो जाए?
2: देखिए, जो सर की चोट है ना उसमें ऑपरेशन का जो एकमात्र उद्देश्य होता है ना वो दिमाग के दबाव को कम करना होता है। देखिए, भगवान ने ना जो खोपड़ी हमारी बनाई है उसको इतना मजबूत इसलिए बनाया है क्योंकि जो ब्रेन है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है, उसको सुरक्षा देने के लिए एक मजबूत कवच दिया है भगवान ने। अब चोट लगने की वजह से जो भी अंदर रक्त स्राव ब्लड इकट्ठा हो रहा है या सूजन हो रही है वो नॉर्मल ब्रेन को भी नुकसान कर रहा है। तो

0: ऑपरेशन का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो दिमाग में दबाव है उसको कम किया जाए
1: जी
0: और जो थक्का है उसको निकाला जाए और मरीज के सर्वाइवल और रिकवरी के चांसेस को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि दिमाग में कितना दबाव है, जांचों में सीटी स्कैन में कितना दबाव है, और उस दबाव को कम करने के लिए तरह तरह के उपाय ऑपरेशन किए जाते हैं।
1: चोट लगने से क्या याददाश्त और व्यवहार पे भी अंतर आता है?
0: जी देखिए, ऐसा है ना कि चोट लगने से दिमाग से संबंधित, दिमाग के किस हिस्से में चोट लगी है उस हिसाब से मरीज को लक्षण आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हिस्से दिमाग के ऐसे हैं जो याददाश्त से जुड़े हुए हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, कुछ हिस्से संतुलन से जुड़े हुए हैं, कुछ हिस्से हाथ पैर की ताकत से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो किस हिस्से में चोट लग रही है उस हिसाब से मरीज को लक्षण आते हैं, और शरीर के किसी भी, दिमाग के किसी भी हिस्से में चोट लगे मिर्गी के झटके की भी संभावना रहती है, उसके अलावा उस हिस्से का कार्य क्या है उस हिसाब से मरीज को लक्षण आते हैं।
1: जी सर, एक फोन आ रहा
0: जी
1: है, ले लेते हैं फिर आगे बात ही करते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
2: राधे श्याम चौहान नखिया।
1: हाँ, राधे श्याम चौहान भैया, कार्यक्रम आरोग्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप बात कर लें।
2: नमस्कार साहब।
0: नमस्कार नमस्कार।
2: ऐसा है ना, जैसे चोट लग गया कपाल में,
0: जी
2: और इससे क्या क्या परेशानी होता है?
0: देखिए, चोट लगने पे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे सर में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, मिर्गी के झटके आ सकते हैं, अपंगता आ सकती है, ठीक है ना, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, हाथ पैर में कमजोरी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि कैसी चोट है उस हिसाब से मरीज को लक्षण हो सकते हैं।
2: ठीक है डॉक्टर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। ऐसा है ना कि देखिए, मतलब जनरली सड़क दुर्घटना में ना मरीज को कोई जरूरी नहीं कि एक ही अंग में चोट लगे, तो जनरली सर का चोट अन्य चोटों से इस तरह से प्रभावित होता है कि जैसे किसी के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई,
1: जी
0: जैसे कि मरीज की छाती में चोट है या पेट में चोट है और अंदर रक्तस्राव ज़्यादा हो गया,
1: जी
0: या मरीज की पैरों में चोट है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। तो जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है इंटरनल या एक्सटर्नल, तो मरीज का ब्लड प्रेशर औसत से कम हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर औसत से कम होगा तो दिमाग को खून नहीं मिलता है। तो जो सर में चोट होती है वो जनरली दो हिस्सों में बांटी गई है, एक होता है प्राइमरी हेड इंजरी, जिसमें कि डायरेक्ट जो सर में चोट लगी है वो उसको प्राइमरी हेड इंजरी बोलते हैं,
1: जी
0: एक होता है सेकेंडरी हेड इंजरी, जिसमें कि जैसे किसी को खून का बहाव नहीं मिल रहा, रक्तचाप बहुत कम है या ऑक्सीजन नहीं मिला, उससे जो नुकसान होता है उसको सेकेंडरी इंजरी बोलते हैं। तो ज़्यादातर इलाज में हम सेकेंडरी इंजरी को ही प्रिवेंट करते हैं। अन्य चोटों की वजह से अगर बहुत अधिक रक्तस्राव हो गया या ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इससे दिमाग की भी रिकवरी प्रभावित होती है।
1: सर ये बताइए, जैसे चोट बाहर लगती है उसी को कहते हैं, या जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसको भी सिर की चोट में
0: देखिए
1: रखा जा सकता है? इस
0: जी,
1: प्रश्न का उत्तर जानेंगे इस फोन के बाद। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ कौन?
2: मोहन यादव, सरैया से बोल रहा।
1: डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, बात करें।
2: नमस्कार
0: नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, जो आज विषय है, जो सिर की चोट से कैसे बचे, तो उसका सावधानी कैसे मतलब बरतनी चाहिए हम लोगों को?
0: देखिए, इसमें ऐसा है ना कि जो सर की चोट के युवाओं में प्रमुख कारण है ना, वो एक्सीडेंट है, सड़क दुर्घटना है। तो सड़क और यातायात नियमों का पालन करें, ठीक है ना, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, स्पीड लिमिट में चलाएं। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, और सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तो सर के चोट कम होंगे। कभी-कभी क्या होता है ना कि किसी मरीज को चलते चलते अचानक से स्ट्रोक हुआ, ठीक है ना, स्ट्रोक होने से उसके एक हाथ पैर में कमजोरी आ गई, ठीक है ना। अब हो सकता है वो गाड़ी चला रहा हो या पैदल चल रहा हो, साथ में उसकी दुर्घटना भी हो गई, वो गिर गया, गाड़ी से गिर गया या पैदल गिर गया। ऐसी स्थिति में ना एक कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मरीज को जो हाथ पैर में कमजोरी आई है वो स्ट्रोक की वजह से आई है या सर की चोट की वजह से आई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दो, एक तो जांचों में तस्वीर बहुत साफ हो जाती है, क्योंकि सर की चोट में जो अंदर ब्लीडिंग होती है वो बहुत तस्वीर साफ कर देती है, उस ब्लीडिंग का लोकेशन क्या है। उसके अलावा मरीज की उम्र, मरीज को ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय की क्या कुछ अन्य बीमारियां हैं क्या, इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि मरीज को जो हाथ पैर में कमजोरी या लक्षण आए हैं वो सर की चोट की वजह से हैं या स्ट्रोक की वजह से हैं।
1: जी। अच्छा, बच्चों और बड़ों की चोट में क्या अंतर होता है?
0: जी देखिए, सबसे पहले तो कारण में अंतर है, हमने पहले भी चर्चा की है कि जो बड़ों में, युवाओं में चोट का जो प्रमुख कारण है वो सड़क दुर्घटना है, और बुजुर्गों में जो सर की चोट का कारण है वो गिर जाना है, सड़क के गिर जाना या असंतुलन की वजह से गिर जाना है। बच्चों में जो सर की चोट का प्रमुख कारण है वो

0: ऊंचाई से गिरना है, कभी बिस्तर से, सीढ़ी से, छत से, इस तरह से गिरते हैं। तो एक तो कारण में अंतर है, दूसरा लक्षण में अंतर है। हमने अभी तक जो भी लक्षण चर्चा किए हैं, जैसे कि सर की चोट के बाद बेहोश होना, उल्टी आना, मिर्गी के झटके आना, सुस्ती रहना, ये सब बड़ों में लक्षण मिलते हैं। छोटा बच्चा ये सब लक्षण आपको नहीं बताएगा।
1: जी
0: तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो या तो बहुत अत्यधिक रोएंगे या अत्यधिक सुस्त रहेंगे, अपना जो भी फीडिंग उनकी होती, दूध वगैरह है, वो नहीं पियेंगे, ठीक है ना, और सुस्त ज़्यादा रहते हैं। तो लक्षण भी बच्चों में और बड़ों में अलग होते हैं। दूसरी बात, हमने एक अभी फिर चर्चा किया था कि बच्चों में जो गुर्मा बनता है उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। छोटे बच्चों में बहुत बड़ा हिस्सा ब्लड का वहाँ इकट्ठा हो जाता है, वो एक अलग परेशानी है। जबकि बड़ों में ब्लड लॉस को बड़े अच्छे तरह से टॉलरेट कर देते हैं, खासकर अगर वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं है और सिर्फ चमड़ी चमड़ी तक ही है, गुर्मा है तो। अच्छा, इलाज में भी अंतर यह है ना कि बच्चों की चोट में सर्जरी की जरूरत कम पड़ती है, मतलब कि बच्चों में गंभीर चोट की संभावना कम होती है। भगवान ने बच्चों का शरीर इतना लचीला बनाया कि उनको गंभीर चोट की समस्या कम होती है, इसलिए उनमें ऑपरेशन की जरूरत कम पड़ती है। दूसरा, बच्चों का जो दिमाग है वो विकसित हो रहा होता है, तो वो चोट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। बच्चों में, छोटे बच्चों में सर की चोट में रिकवरी बड़ों की तुलना में और बुजुर्गों की तुलना में अच्छी और तेज होती है।
1: तो समय भी कम लगता होगा।
0: जी, हर चीज में होता है, समय भी कम लगता है, प्रयास भी कम लगता है, ऑपरेशन की भी जरूरत कम पड़ती है बड़ों की तुलना में। जी
1: अच्छा, अगर कोई गर्भवती महिला किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है तो क्या उस दौरान जो चिकित्सा होती है सिर के चोट की, अगर सिर में उसके चोट लग गई है, तो उसका क्या बच्चे पर भी असर पड़ता है या उस समय चिकित्सा पद्धति दूसरी होती है?
0: देखिए, मतलब प्रेगनेंसी में किसी भी बीमारी के लिए जो चिकित्सा होती है ना वो अलग चलती है, क्योंकि आप जो भी दवाइयाँ या जो भी उपचार दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे को, ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले तो हमेशा ये समझना है कि जो गर्भवती महिला है ना, वो एक नहीं है, वो दो मरीज हैं, ठीक है ना। तो उसमें बच्चे के भी ध्यान को दिया जाता है, स्वास्थ्य को ध्यान दिया जाता है, पर इसमें देखना है कि महिला को कितना खतरा है। अगर महिला को अत्यधिक खतरा है और दोनों में से, मतलब इस तरह की स्थिति बच रही कि बच्चे की लाइफ सेव करने में माँ को जान को खतरा है, तो फिर माँ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं ना, वो बच्चों को शुरुआत के 3 महीने में ज़्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि बच्चों के अंग हैं जो शुरुआत के 3 महीनों में ज़्यादातर बन जाते हैं। तो बाद की जो दवाइयाँ होती हैं वो बच्चे को उतना प्रभावित नहीं करती हैं। पर ये तो मतलब स्पष्ट है कि गर्भवती महिला में किसी भी बीमारी का इलाज आम इलाज से अलग चलता है।
1: और चिकित्सा के दौरान या चिकित्सा के बाद अगर मरीज क्या पूरी तरह से ठीक हो जाता है?
0: देखिए, ये मतलब डिपेंड करता है, पहली बात तो एज पे बहुत डिपेंड करता है ना।
1: जी
0: दूसरी बात ये है कि बच्चों में, मतलब इसमें बहुत अच्छी, बच्चों में या युवाओं में अच्छी रिकवरी होती है। दूसरा ये है कि कितनी गंभीर चोट है, दिमाग में कितना नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है वो दिमाग के बाहर हुआ है कि अंदर हुआ है, इन सब बातों पे बहुत निर्भर करता है कि रिकवरी कितनी अच्छी होगी। पर फिर भी सर की चोट में ज़्यादातर केसेस में और बच्चों और युवाओं में रिकवरी बहुत अच्छी होती है।
1: एक फोन आ रहा है सर।
0: जी,
1: हेलो,
2: माधवर यादव,
0: क्या पूछना
1: क्या
0: चाहते
1: प्रश्न
0: हो?
1: है सर? आप लग रहा है पहली बार फोन लगाया।
2: हाँ, हमारे पहली बार फोन लगा लगा लगी बार।
1: डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहते हैं?
0: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: डॉक्टर साहब, जो कि हम थोड़ा बहुत पहले बचपन में घाव जो कि थोड़ा सा लगी थी पिछले भाग में,
0: जी
2: अभी तो उसका निशान है,
0: जी
2: और कभी काल के झंझनाहट जिससे मालूम होता है चलने में फिरने में, जो कि
0: जी
2: तकलीफ में यही जन के है कि थोड़ा सा जब चली लगन की तो झन झन करा लगन की जिससे चले में,
0: सर में झन झन करता है कि हाथ पैर में झन झन करता है?
2: नहीं, सिर कपार में।
0: उस मेरा सवाल यह था, उस समय जब आपको चोट लगे थे तो उस समय कोई जांच वगैरह हुई थी सर की, और कुछ लक्षण थे झंझनाहट के अलावा?
2: नहीं, जा तो उस समय तो जांच पड़ताल कुछ नहीं, क्योंकि तो हमारी उम्र जो की मुश्किल से जो रहल 10 साल की उम्र रहल
0: जी, तो और कोई लक्षण झंझनाहट के अलावा नहीं है ना?
2: नहीं, और तो कोई लक्षण नहीं है ऐसा।
0: तो ये सर के चोट से इसका संबंध होने की बहुत कम संभावना है, ठीक है ना। किन्हीं और वजहों से ये आपको झंझनाहट होगा, इसके लिए आप किसी न्यूरो विशेषज्ञ से मिलके उसको दिखवा दें।
2: अभी साहब, अभी पिछले भाग में भाई निशान है हमारे।

0: निशान रहता है। देखिए कहीं भी चोट लगेगी ना, तो जो घाव भरता है तो उसमें निशान रह जाता है, निशान के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? जी जी
1: धन्यवाद।
0: जी जी
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोन और आ रहा है सर। हेलो,
0: जी जी
2: हेलो,
1: कौन बोल रहे हैं?
2: हम बनारस से वसीम बात कर रहे हैं।
1: अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? आरोग्य में आपने फोन किया है।
2: सर में बहुत दिन से दर्द रहता है।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, बात करिए।
0: जी बताइए वसीम जी, सर में दर्द कब से है आपके?
2: 20 दिन से हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है
0: अच्छा, पहले कभी सर में दर्द नहीं होता था, ये सिर्फ 20 दिन से है।
2: जी।
0: अच्छा, कोई पुरानी बीमारी, ब्लड प्रेशर या इस तरह की कोई और बीमारी आपको है?
2: नहीं, कोई बीमारी नहीं है।
0: अच्छा, कोई दवा नहीं चलती है आपको?
2: नहीं, सर दर्द हुआ था, डॉक्टर ने गए थे, दवाई लिया है, मगर कुछ आराम नहीं समझाना।
0: अच्छा, सर में चोट वगैरह कभी लगी हो?
2: नहीं, चोट तो नहीं लगी थी।
0: तो अब ये देखना पड़ेगा कि किन वजहों, सर के दर्द के कई वजह होते हैं, ठीक है ना? तो चूंकि दर्द हल्का मध्यम ज्यादा, कितना दर्द है, हल्का है कि मध्यम है कि ज्यादा है?
2: हल्का होता है, मगर कभी कभार तेज भी हो जाता है।
0: तो तत्काल के जो तेज सर दर्द है ना, इसको कभी इग्नोर नहीं करना है, ये कभी कभी बड़ी बीमारियों के लक्षण होते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए आप न्यूरो विशेषज्ञ से मिल लें, अगल बगल से दवा ना लें, किसी अच्छे न्यूरो विशेषज्ञ से मिल के उसकी जांच करवा लें और उसका इलाज करवाएं। उसमें वजह ढूंढनी पड़ेगी कि किन वजहों से ये दर्द हो रहा है, ठीक है ना? नया दर्द जो बहुत तगड़ा हो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको ना। जी
2: धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन समय समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है आपका?
0: देखिए, जो सबसे बड़ा संदेश हम अपने युवाओं को देना चाहेंगे कि देखिए, सड़क दुर्घटना ना एक जिंदगी छीन लेती है, एक परिवार को उजाड़ देती है, और ज़्यादातर केसेस में सिर्फ हमको दो बातों का ध्यान देना है। यातायात नियमों का पालन करें,
1: जी
0: जिंदगी बहुत कीमती है, थोड़ा सा हमेशा जब भी रोड पे चढ़ें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें। लोग बहुत जल्दी में हैं, ठीक है ना? रोड पे जल्दीबाजी का कोई औचित्य नहीं है, जिंदगी है तो सब हो जाएगा। सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें ड्राइविंग करते वक्त, अल्कोहल वगैरह के साथ ड्राइव ना करें, और अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो रही है तो उसको नज़दीक के जो भी अस्पताल है वहाँ पे पहुँचाएं, ठीक है ना? क्योंकि उसका तो कोई है नहीं ना, जब तक घर
1: जी
0: वालों को सूचना पहुँचती है तब तक बहुत विलंब हो जाता है। और आपको सर की चोट के, किसी भी मरीज को सर की चोट के लक्षण हो तो उसको कभी हल्के में ना ले, क्योंकि देर करने के बाद ना आप चाहे जितना अच्छा इलाज करें वो रिजल्ट नहीं आता है। तो
1: जी
0: समय बहुत कीमती है, समय का विशेष ध्यान दें।
1: जी बहुत अच्छी आपने जानकारियां दी सिर की चोट से जुड़ी हुई। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए डॉक्टर सुनील सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और तत्काल चिकित्सा की ओर अग्रसर रहें। सिर की चोट को बिल्कुल भी हल्के में न लें। अगर इस तरह की कोई समस्या हो जाती है तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वैसा तुरंत नियमों का पालन करें और कोशिश करें कि बचाव ही आपके काम आ जाए और सिर में इस तरह की चोट लगे ही नहीं, तो उन बचावों पर, उन सावधानियों पर पूरा ध्यान दें। सतर्क रहें, जागरूक रहें और अब अनुमति दें, सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम। धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। इस कार्यक्रम में आज का विषय था सिर की चोट और बचाव। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से बातचीत कर रही थी शिखा श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।
4: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2:00

के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आप तो ऐसे न थे। जी हां श्रोताओं, ये नाम है आज के फिल्म का जिसका गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और आवाजें हैं मना रुदास की, गीत निदा फाजली का, संगीत उषा खन्ना का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मनहर उदास की आवाज में। गीत निदा फाजली का था, संगीत से सवारा था उषा खन्ना ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीत संतोष आनंद का है और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में अभी आप सुन रहे थे रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म का गाना जिसे लिखा था संतोष आनंद ने और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन, आवाज यशुदास की है और अनुराधा पौडवाल की। आइए सुनिए प्यारा सा गीत।

यशुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म का गाना, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत है जिसकी तर्ज बनाई है रवि ने। फिल्म का नाम है वक्त।

था जिसकी तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब कार्यक्रम में अगला गाना, फिल्म का नाम है अप्रैल फूल। आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की है, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

अप्रैल फूल, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज थी। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत आर डी बर्मन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सवारा था आरटी बर्मन ने। कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

अनजाना फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुने कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है पिघलता आसमान, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे पिघलता आसमान फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा था इंदिवर ने, संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। और अब कार्यक्रम में अगला और अंतिम गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सूरज फिल्म का ये गीत है जिसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुने सूरज फिल्म का ये गाना।

0: सूरज फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत हसर जयपुरी का था, संगीत से सवारा था शंकर जी किशन ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार। आकाश

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजर सराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1:05।

हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आइए सुन लेते हैं खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना कोन जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार कांति देवी, जिनके पति का नाम है राजकुमार, पता है कचनरवा टोला कोन जनपद सोनभद्र, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, इनकी आयु है 35 वर्ष, लंबाई 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। घटना के समय इन्होंने लाल रंग की साड़ी और पैर में हवाई चप्पल है इनके। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना कोन जनपद सोनभद्र। थाना जलालपुर जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उमेश सिंह, इनके पिता का नाम है श्याम बहादुर सिंह, पता है ताला मझवारा सुगुर्दीपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, इनकी आयु है 36 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, चेहरा लंबा है और रंग गोरा है। घटना के समय में इन्होंने लाल रंग की टी शर्ट और सफेद पैंट पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना जलालपुर जनपद जौनपुर। थाना नेवड़िया जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार इंदु गौड़, जिनके पति का नाम है शेषमन गौड़, पता है होरैया थाना निवड़िया जनपद जौनपुर, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, इनकी आयु है 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना निवड़िया जनपद जौनपुर। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एजवेस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण सुनिएगा शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक। इस दौरान समाचारों का प्रसारण अपने नियत समय से किया जाता रहेगा। युवा साथी अपने कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:15 पर सुनेंगे आज की बात युवाणी गांव से, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बच्चे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल सुनेंगे शाम 5:00। दिन में 2:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म होगी चौदहवीं का चांद। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे दिन में 1:30 से।

और अब से थोड़ी ही देर में यानी 1:15 पर श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में। दिन में 1:15 पर आप ये कार्यक्रम सुन सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: उत्तर प्रदेश के वजीरे आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल वजीरे आला को सुनाए। लोगों में एतमाद पैदा करते हुए वजीरे आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गाय की पनागाह में गाय की खिदमत भी की। वजीरे आला योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान आज दोपहर बाद गोरखपुर महानगर हल्के में 926 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वाजिर है कि वजीर आला ने कल अपने दौरे के पहले रोज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की क्यादत में यही नया हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा,
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की तामीर और एहतियात के स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा से मुतालिक मुबैना घोटाले की जांच की गई है। हुकूमत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर SIT तश्कील देकर मामले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक तहकीकाती टीम में 3 सीनियर और तजुर्बेकार अफसरान शामिल हैं। हुकूमत ने एक हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन में हतमी रिपोर्ट तलब की है। SIT की सिफारिशात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर इम्तिहानी एहलकारों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद NTA इम्तिहानात की निगरानी और अमल को मजबूत बनाना और ऑफलाइन कलम और कागज पर मबनी इम्तिहानात के हमवार महफूज और मियारी इनकात को यकीनी करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में मुल्क ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर चलते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिले जिक्र तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इस मौके की मुनासिबत से एक खुसूसी सीरीज नश्र कर रहा है। आज हम शहरियों की जिंदगियों में आसानी लाने के लिए हुकूमत की कोशिशों के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं।
2: केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में GST संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।
0: भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा कलासाम में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर एयर चीफ खेमा राम कुमावत और अग्निवीर एयर चीफ दानिश आलम की इस हादसे में मौत हो गई। वाजिर है कि तैयारा हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर के बाशिंदे सर्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए आज मुनक़िद होने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की मुतवक्का भीड़ को एडजस्ट करने के लिए वसी और खसूसी इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों और दीगर मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए अगर जरूरत हो तो इम्तिहान की खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जौनपुर, इटावा और अमरोहा में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यह इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान को राजदारी और मुनसिफाना बनाए रखने के लिए

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। सना सलीम जी एक बार फिर से हैं, सिर्फ एक हफ्ते का अंतराल, उसके बाद स्वागत है आपका। हमें लग रहा है 90 वर्षों का ये जो सफर था, जिसकी बहुत चर्चा हम लोग कर रहे थे और बहुत सारे आयोजन हमने किए, उसी का था इंतजार। सना जी को स्वागत है, नमस्कार आपको।
1: अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।
0: बिल्कुल, और ये इस मौके पर हम लोगों ने जो बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए हमारे केंद्र से और विविध भारतीय आकाशवाणी के अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम कार्यक्रम हुए, आयोजन हुए, उसके बारे में श्रोताओं की क्या राय है, उनके अगले जो मेल आएंगे उसमें जरूर उसका जिक्र करेंगे और इन 90 वर्षों के सफर का जिक्र समय समय पर हमारे भी श्रोता आकाशवाणी से जुड़ाव को दोहराते रहेंगे तो ये सफर और भी सुहाना हो जाएगा, सुरीला होने के साथ साथ।
1: और आज के इस सफर में जो मेल्स हमें मिले हैं वो पढ़ना जो है शुरू करते हैं अरुण जी। ये पहला मेल हमें मिला है सुजीत राय का, जिला भागलपुर बिहार से। लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मैं आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रमों को ध्यान पूर्वक सुनता हूँ। आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत लाजवाब होते हैं, इसकी जितनी भी तारीफ करूँ वो कम पड़ जाती है। आकाशवाणी वाराणसी से हेलो फोन इन फरमाइश और आरोग्यम और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है वो काफी लाजवाब होता है। मैं खुद इन सारे कार्यक्रमों का लुत्फ लेता हूँ।
0: बिल्कुल, आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, लुत्फ लेते रहें। सुजीत राय जी, आपने हमें लग रहा है पहली बार हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है, तो आपका स्वागत इस्तकबाल है और ये सिलसिला जरूर बनाए रखिएगा, यानी कार्यक्रमों को सुनने का और उनके बारे में प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाने का। बहुत शुक्रिया।
1: और जब से ये नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई अरुण जी, तब से नए श्रोता जो हैं बहुत सारे जुड़े हैं।
0: ये जो फेसबुक है उसके जरिए जो प्रोग्राम वाराणसी वाइब्स हो रहा है, उससे जरूर जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जुड़ गए हैं और खासतौर से वो जो हमारे प्रेजेंटर आप सरीखे आरजेज हैं उनको वो देख भी पा रहे हैं, तो ये जुड़ाव और भी गहरा होता जा रहा है।
1: जी, और ये कुछ नए से ही श्रोता हैं, तुषार शुक्ला, अर्जुन शुक्ला लंका वाराणसी से लिख रहे हैं, आप सभी लोगों के कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, खास करके फेसबुक लाइव वाला प्रोग्राम वाराणसी वाइब्स के तो क्या ही कहने, मन आनंदित हो जाता है प्रोग्राम सुनकर, जिसमें मुझे कुछ प्रोग्राम्स अत्यंत अच्छे और जानकारी युक्त लगे, जैसे कि 13 मई को मंजूषा जी आई थी विश्व शालीनता दिवस का विषय लेकर आई थी जो कि काफी अच्छा था। 16 मई को निराली निवेदिता जी फिन इन्फ्लुएंसर पर दी गई जानकारी हम सभी को काफी पसंद आई। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ऐसे ही अच्छे और जानकारी युक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे और हम दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे।
0: अच्छा, ये दर्शक हैं फेसबुक वाले।
1: जी, शैलेश जी, मंजूषा जी और निराली निवेदिता जी को अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई।
0: तो इन तीनों ही आरजे तक आपकी बधाई पहुंच रही है, कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें और हमें उम्मीद है कि आप आकाशवाणी वाराणसी के भी प्रोग्राम सुनेंगे और कुछ कार्यक्रम तो वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रहते हैं, तो जरूर अपनी राय हम तक पहुंचाएं और नियमित रूप से सुनते रहें, बाकी कार्यक्रमों का भी जिक्र करेंगे तो और अच्छा लगेगा।
1: जी, अगला ये मेल है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से।
0: जी,
1: जिला खंडवा मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, हमें दिनांक 18 मई 2026 दिन सोमवार का गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में सना सलीम जी द्वारा नेशनल म्यूजियम डे पर बात जरूरत की, इन दोनों ही विषयों पर दी गई जानकारी और गीत अच्छे लगे।
0: ये जो पिछला मेल था ना उसमें हम कहने वाले थे कि सना जी चूंकि आजकल सिर्फ सुबह ही गुड मॉर्निंग करने आ रही है तो शाम को उस प्रोग्राम में इनके दर्शन श्रोताओं को नहीं हो पा रहे, इसलिए वहां पर
1: गुड इवनिंग करने वाले बहुत सारे
0: देर आए दुरुस्त आए, दूसरे मेल में आपका जिक्र हुआ और इन्हें बहुत शुक्रिया कि आपके प्रोग्राम

0: पसंद है। सना जी तक रूबरू आपकी बधाई पहुंच रही
1: बहुत
0: है,
1: बहुत शुक्रिया।
0: लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि आपके अगले मेल का, जिसमें आप बाकी प्रोग्राम्स का भी जिक्र करेंगे।
1: जी, अब ये हमारे नियमित श्रोता हैं रतिनाथ त्रिपाठी, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से।
0: जी,
1: लिखते हैं कि 6 मई को रात्रि 10 बजे प्रस्तुत रूपक आकाशवाणी वाराणसी पर प्रस्तुति अरुण जी की थी। आवाज में बहुत सारे महान कलाकारों के साथ ही कुछ श्रोताओं को भी शामिल किया गया। आशुतोष जी और अशोक पांडे द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी,
1: 7 मई को गुड मॉर्निंग बनारस में सना द्वारा अच्छी जानकारियों सहित बात जरूरत की सेगमेंट में तकिया का उपयोग कैसे करें और कब करें, इस विषय पर बहुत सारी जानकारियां मिली। इसी कार्यक्रम में 8 मई को शैलेश दुबे जी का बहुत ही जानकारीपूर्ण कार्यक्रम और 9 मई को बहुत दिनों के इंतजार के बाद आशुतोष जी द्वारा समसामयिक जानकारी और काशी कथा में चूहा गली के बारे में जानकारी मिली। साथ ही हाथी गली का नाम पहली बार सुनने को मिला।
0: ये जो गलियां हैं ना काशी को, तो गलियों का शहर कहा जाता है, और इसमें से ढूंढ ढूंढ करके आशुतोष जी
1: बनारसी भी हैं,
0: जानकारी आप तक ले आते हैं। आपकी बधाई पहुंच रही हमारे जिन साथियों का आपने जिक्र किया, और वो जो प्रोग्राम था आकाशवाणी 90 वर्षों के सिलसिले में, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, वो आपने पसंद किया, बहुत शुक्रिया आपको। बाकी भी प्रोग्राम इधर हुए हफ्ते में, तो आप जरूर अगले मेल में उनका जिक्र कीजिए।
1: 8 मई को एक ही कलाकार कार्यक्रम में शैलेश दुबे जी द्वारा श्रेया घोषाल पर बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। 9 मई को आशुतोष जी द्वारा कुछ बातें कुछ गीत बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति थी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। 10 मई को आरोग्यम में डॉक्टर उन्मेष और आकांक्षा सिंह की बातचीत में ऑस्टियोपोरोसिस पर बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिली।
0: जी,
1: 10 मई को आज इतवार है में झलकी समस्या निदान केंद्र सुना, अच्छा लगा। उसी दिन एक ही फिल्म से कार्यक्रम में नैन्सी द्वारा गदर एक प्रेम कथा पर प्रस्तुत कार्यक्रम सुना, अच्छी जानकारी मिली। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7 मई को कुमार सारंग द्वारा संतूर वादन, 6 मई को विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन, पंडित जसराज का गायन, 9 मई को पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्र जी का वायलिन वादन और पंडित किशन महाराज जी का तबला वादन सुनने को मिला, इसके लिए धन्यवाद।
0: बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने, और आज इतवार है, शास्त्रीय संगीत और बाकी जो गुड मॉर्निंग वगैरह, तो हम आपको शुक्रिया करें, ये कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं और यूं ही मेल लिखते रहें। आप तो हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं, कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, हमें खुशी होती है।
1: ये अगला मेल हमें मिला है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा हसीना दिलशाद।
0: जी,
1: लिखते हैं कि सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं, अत्यंत रोचक और मनोरंजक लगता है। आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स में अनाउंसर नैना वाल्मीकि जी जब आती हैं तो उन्हें बोलना नहीं आता और न पढ़ना आता है।
0: अच्छा, एक आध दफे पहले भी कुछ एक श्रोताओं ने जिक्र किया है नैना जी का, और आप लोगों

0: हेलो, फोन इन फरमाइश और ये प्रोग्राम पसंद आया, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। कई दफे ये होता है दिलशाद जी कि हमारे यहाँ जो टेलीफोन लाइन है वो काम नहीं करती है, और तब ऐसी स्थिति में जो आपने बात लिखी कि सभी चुनिंदा श्रोताओं के ख्यालात एक साथ कैसे सुनने को मिल गए, तो ऐसी ऐसी कभी कभी आकस्मिक स्थिति हो जाती है जिसमें इस तरह ऐसा हो जाता है, ये संयोग मात्र है।
1: 4 मई को कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स निराली निवेदिता द्वारा प्रस्तुत सुना पसंद आया। सर, इधर 2 महीने से आराधना कार्यक्रम के अंतर्गत कोई नातिया कलाम सुनने को नहीं मिल रहा है। प्रियदर्शी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुना मजदूर दिवस पर विशेष प्रस्तुति बहुत पसंद आई। 7 मई को गुड मॉर्निंग बनारस सना सलीम द्वारा प्रस्तुत सुना मालूमाती लगा, इनके मालूमाती मतलब इनकी जानकारी में इजाफा
0: देर
1: हुआ
0: से लगा है। वही हम बीच में कहने वाले भी थे कि दिलशाद जी आमतौर पर हिंदुस्तानी यानी हिंदी उर्दू मिश्रित लिखते हैं, लेकिन शुरुआत के जो एक दो पैराग्राफ आपके थे वो बिल्कुल लगा नहीं कि दिलशाद जी ने लिखा। आजकल थोड़ा सा ये जो चैट GPT वगैरह आ गया है, गूगल पर जो लोग लिखते हैं, तो थोड़ा सा वो मौलिकता जो है वो व्यक्ति की नहीं वो इंटरनेट की हो जाती है। जिन कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, आपकी बधाई हमारे तमाम उन साथियों तक पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया आपका।
1: संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमें ये मेल किया है एडवोकेट वारिस अली खान ने। लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण जी और सना जी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। अर्ज है
0: जी,
1: जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है खुदा उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। 3 मई का PKLD जिसमें हमारे मेल को सना सलीम ने अपनी आवाज दी थी, मुझे बहुत पसंद आया।
0: तो जो हमारे गायक आवाज देते हैं तो उनको फीस वगैरह मिला करती है
1: जी,
0: और उन्होंने आपका शेर पढ़ करके सना जी मुस्कुरा भी दी, इसका मतलब उन्हें समझ में आ गया, ये तो गारंटी है। बहरहाल अच्छी शुरुआत आपने की है, हर बार आपके जो अशार आते हैं वो वाकई हम लोगों के भी ज्ञान में इजाफा करते हैं
1: जी। 4 मई का दोपहर 2:30 बजे से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जिसे अंजना झा ने किया था, बहुत अच्छा लगा। भोजपुरी गीतों का चयन बहुत अच्छा था। 7 मई का कहकशां सना सलीम ने बहुत अच्छा किया था। मेरा मानना है कि पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रचार भी करें जिससे श्रोता इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पत्र भेज सकें और अपनी पसंद के गीत सुन सकें।
0: दर हकीकत दुश्वारियां श्रोताओं के सामने ये हैं कि पोस्ट कार्ड अब नहीं मिल रहे हैं, हालांकि विविध भारती ने भी मनचाहे गीत फिर से शुरू किया है। अब देखना होगा कि वहां कितनी तादाद में श्रोताओं के खत पहुंच रहे हैं। जब से ये इंटरनेट मोबाइल आ गया हर हाथ में, तो खेत खलिहान मिल में काम करते हुए हमारे हर श्रोता तुरंत इंस्टेंट फरमाइश भेजते हैं, तो वो जो खतों के पहुंचने न पहुंचने का अंदेशा रहता है वो खत्म हो गया। इस वजह से खतों के लिखने का जो चलन है वो समाज में कम हो गया है। बहरहाल कार्यक्रम तो हमारे चल रहे हैं, श्रोता अगर पत्र भेजेंगे तो वो जरूर शामिल होंगे।
1: आखिर में उन्होंने आपसे पूछा है कि पिछले शो PKLD में आपने कहा था कि पत्र हम तक नहीं पहुंचते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तक पत्र न पहुंचने की वजह क्या है? क्या एड्रेस गलत होता है? इस बात को आप गंभीरता से लें।
0: बिल्कुल गंभीरता से हमने कई बार कहा, और इस बारे में तो हमने, चूंकि हम और भी चीजों से व्यस्तता हमारी है, वाबस्तगी है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो सामान्य डाक की प्रक्रिया है हमारी डाक विभाग की, उसमें पहले की तरह ही सतर्कता रहे, यानी हर डाक हर चिट्ठी सावधानी से छांटी जाए और पते तक पहुंचे, लेकिन व्यावहारिकता में थोड़ा सा इसमें कमी हमें नजर आती है। बहुत सी पत्रिकाएं हैं जो आती हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंचती हैं, उसी तरह श्रोताओं के बहुत सारे खत हैं जो वो लिखते हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंचते। इसकी वजह ये नहीं कि पता गलत होता है, इसकी वजह यह है कि सामान्य डाक के प्रति पहले के मुकाबले थोड़ी सी गंभीरता में कमी आई है
1: जी। और ये बात ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पत्र लिखने की सोच रहे हैं और ताकि इनकी लिखने की जो आदत है वो बनी रहे, ऐसा
0: तो
1: इन्होंने लिखा है।
0: आप कहीं अगर आपके आसपास पोस्ट कार्ड उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता कहते हैं देश भर के कि पोस्ट कार्ड जो है नजदीकी डाक घर में नहीं मिलता है, तो आपके यहाँ अगर पोस्ट कार्ड है तो जरूर आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम में हमें भेजें, और वो रात वाला भी प्रोग्राम है उसमें भी वही जो खत रहते हैं वो शामिल होते हैं, तो आप भेज कर देखिए, आएंगे। और पता तो बिल्कुल वही है जो आपको हम लोग हर प्रोग्राम में बताते हैं, और वो खत अगर छट करके और हम तक पहुंचेंगे तो जरूर शामिल होंगे, हम लोग खुद ही खतों को ढूंढ ढूंढ करके शामिल करते हैं।
1: ये अगला मेल है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल का, जमानिया जिला गाजीपुर से। लिख रहे हैं, 15 मार्च को स्नेहा सिंह और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत PKLD सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। पत्र पढ़ने का मनमोहक अंदाज स्नेहा सिंह का पसंद आया, अरुण भैया का तो पूछना ही नहीं।
0: ये लगता है कि होली वाले समय का है क्या?
1: हाँ, मार्च।
0: हालांकि ये थोड़ा सा रखते हैं अपने संदूक में, और मैं मंजूषा शब्द का प्रयोग करने वाला था लेकिन ये संदूक में रखते हैं और वो निकाल निकाल करके मेल भेजते हैं, इसलिए इनके पुराने मेल भी नए होते हैं। हम श्रोताओं को ये बता दें, वो प्रोग्राम

0: पसंद आया, आपकी बधाई स्नेहा जी तक पहुंच रही है
1: और अरुण जी तक भी पहुंच रही है
0: जी, बहुत शुक्रिया।
1: 16 मार्च को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना जो दिल को छू गया। 17 मार्च को अंजना झा द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी पसंद आया। 19 मार्च को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी प्यारा लगा। श्रोताओं की पसंद पर बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाया जो दिल को आनंदित कर दिया। सभी फरमाइशी गीत की शानदार प्रस्तुति के लिए अनुपम गुप्ता, अंजना झा और स्वस्ति श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मार्च को किरण सिंह द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस और 22 मार्च को शैलेश दुबे द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस बहुत ही जानकारी पूर्ण रहा। अच्छी प्रस्तुति के लिए किरण सिंह और शैलेश दुबे को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई।
0: कार्यक्रम के जरिए आपकी बधाई इन तमाम साथियों तक पहुंच रही, ये तो अच्छी बात है सुरेश जायसवाल जी कि आप हर हमारे साथी का प्रोग्राम सुनते हैं ध्यान से और उसके बारे में अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं। बाकी श्रोताओं से भी यही कहेंगे कि अलग अलग सभी की प्रस्तुतियां सुने और उनका जिक्र अपने मेल में किया करें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका।
1: ये अगला मेल जो हमें मिला है ये शायद कोई नए श्रोता है
0: जी,
1: नाम ये पहली बार मैं सुन रही हूँ, राजेश राय के बाद उन्होंने कॉमा दिया है फिर राय लिखा है, मतलब राजेश राय, राजकुमारी अभय शुभम जखनी वाराणसी से
0: जी
1: लिख रहे हैं कि आकाशवाणी की भूमिका तो बहुत पहले से जग जाहिर है। पिताजी तो खेत में भी रेडियो ले जाते थे, हिताई नताई में भी जाते तो झोला में लेकर जाते थे, फिर टीवी आया, मोबाइल आया और मिस्त्री भी गायब हो गए। शादी में रेडियो मिला था, बिगड़ा तो फिर बना नहीं।
0: अच्छा, कुछ श्रोताओं की ये जो लिखावट है और पैटर्न है हम लोग भी गौर करते हैं। ये नाम नया है लेकिन तरीका बहुत सारे श्रोताओं का थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो जो नए श्रोता हैं आपके हर मेल का हम लोग स्वागत करते हैं।
1: आगे लिखते हैं कि बेटा शुभम मोबाइल में फेसबुक लाइव देख रहा था तो मैंने भी देखा, निराली निवेदिता नाम की मैम ने प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, उनका प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा
0: जी।
1: अरुण जी का फरमाइश वाला और पत्र के जवाब वाला सुना, बहुत ही सराहनीय लगा, फिर पता किया कि रेडियो कहाँ मिलता है।
0: अच्छा, ये प्रोग्राम सुन करके
1: जी। दो दिन बाद दूरदर्शन के सामने एक दुकान से 1200 रुपए का मिला।
0: जी, बड़ा महंगा पड़ा।
1: अब सुनता भी हूँ,
0: शौक आपका मतलब जी,
1: अब सुनता भी हूँ और मोबाइल पर देखता भी। अरुण जी फरमाइश वाले नहीं दिखते
0: अब हम लोग, वो क्या है ना कि दिखने के लिए दिखने के काबिल भी होना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है। आप तो लिख रहे हैं लेकिन जो दिख रहे हैं उनका दर्द वो ही जानते हैं।
1: बाकी सब लोग को सुनते भी हैं, देखते भी हैं।
0: रेडियो शुरुआत से ही, अब जब 90 या 100 साल करीब प्रसारण को हो गए हमारे देश में, इसमें कल्पना का बहुत बड़ा योगदान है। नाटक फीचर रूपक हम लोग प्रसारित करते थे तो देखने से ज्यादा आप जो इमेजिन करते हैं उससे जो आपका जो अंदरूनी सृजनात्मकता का विकास होता है वो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक जो हैं वो आप सुनते हुए उस दौर में पहुंच जाते हैं, तो यही आवाज के माध्यम की ताकत है। हमें भी लगता है कि आवाज के दौर में देखने वाली बात के चलते थोड़ा सा तालमेल उस पे असर पड़ा है, फर्क आया है
1: जी। आगे लिखते हैं कि सुबह में एक आशुतोष जी हैं जो बनारसी बाबू हैं, जानकारी ठीक दिए, बनारसी कुड़ी भी है, सना सलीम शायद पत्र वाली हैं।
0: जी जी।
1: बहुत तेज बोली पर अच्छा
0: बोली।
1: जो
0: लिखने की शैली है ना वो हम लोग भी समझ रहे हैं
1: जी। बहुत तेज बोली पर अच्छा बोली।
0: अच्छा।
1: फिर एक दिन एक सीधी साधी मंजूषा प्रोग्राम लेकर आई, नृत्य दिवस और हास्य दिवस भी था उस दिन। बहुत पहले गया भैया जब कृषि जगत में बोलते थे तो ये वाली सीधी साधी की तरह मनमोहक बोलते थे।
0: तब सीधी साधी थी या नहीं या बहुत छोटी रही होंगी
1: जी,
0: इसलिए उस समय बोलती नहीं थी, अब बोल रही है और देर आए दुरुस्त है, मंजूषा जी के नाम का इंतजार था।
1: हाँ वही तो, हंसी रुकती ही नहीं थी। अब सब पुराने लोग तो नहीं बोलते पर नए बच्चों का अंदाज भी समय के लिहाज से बहुत सुंदर है, सबको आशीर्वाद, जवाब मिला तो हमारा मन बढ़ेगा फिर लिखेंगे।
0: बिल्कुल, आपका मन हम लोग बढ़ा ही रहे हैं कि आप लिखते रहिए और आपके मेल का इंतजार रहेगा, जरूर आपके जैसे नए नए श्रोताओं को पाकर हमें भी खुशी होती है
1: जी। और आज कार्यक्रम का ये आखिरी मेल जो है वो हम शामिल कर रहे हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का
0: जी।
1: लिखते हैं कि 31 मई को प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, वाराणसी से सुना, बहुत ही अच्छा लगा, अरुण जी और सना जी की प्रस्तुति और जवाब देने की शैली मन को बहुत भाई, आपके केंद्र से प्रसारित अन्य कार्यक्रमों को तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, पत्र के लिए धन्यवाद को पहली बार सुना।
0: तो ये जानकर के तो हम लोगों को बहुत दुख होगा और अफसोस होगा कि इतने दिनों से हमारी जो मेहनत है वो जाया हो गई, तो जरूर आप आकाशवाणी वाराणसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल
1: चैनल और फेसबुक पर पड़े हुए
0: पुराने प्रोग्राम सुनिए, ताकि आपको एक साथ जो वो जो कर्ज है

0: वो उसमें पूर्ति हो जाए।
1: जी, 5 जून पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। 5 जून के ही फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, अरुण जी की सराहनीय प्रस्तुति शानदार रही, आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई।
0: तो बहुत बधाई, स्वागत आपका कि आपने कार्यक्रम सुने और आपको प्रोग्राम पसंद आए। आपके अगले मेल का इंतजार हमें रहेगा।
1: और मेल आपको करना है हमारी ईमेल आईडी पर pkldaarvaranasi@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा
0: और आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अरुण पांडे
1: और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। प्रस्तुति थी अरुण पांडे और सना सलीम की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ 0542227658।

0: आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूं। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
0: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: लोकरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को स्वस्ति श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिन कलाकारों को हमने आपके लिए चुना है उनके नाम हैं मंगला विश्वकर्मा और छाया मिश्रा। इनके गीत, लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे और आप जिन नंबर पे हमें संदेश भेज सकते हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905519981। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं लोकगीत का ये सिलसिला। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मंगला विश्वकर्मा का गाया ये देवी गीत। और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे नाम बताते हैं, आपके ढेरों संदेश हम तक प्राप्त हुए तो कुछ संदेश भी हम पहले पढ़ देते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेजा है नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा है मंगला विश्वकर्मा का ये लोकगीत। इसी के लिए तकिया मड़ियाहू से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तम शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद हसरत शाह, मोहम्मद साजिद शाह, मोहम्मद रोमेश शाह, मोहम्मद अबान शाह, आप सभी का संदेश भी प्राप्त हुआ। अस्तुपुरा जिला मऊ से इस लोकगीत को सुनना चाहते हैं मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना प्रवीण और अब्दुल्ला आजाद। और अब आइए सुनते हैं ये देवी गीत।

मंगला विश्वकर्मा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा देवी गीत, और इसके लिए आप सभी के संदेश हम तक प्राप्त हुए। मजनू का टिल्ला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे हरियाणा से बिल्लू सिंह, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और आपके परिवार के सभी सदस्य। इसी लोकगीत के लिए हमें संदेश भेजा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक ने इस लोकगीत को पसंद किया। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे रतलाम एमपी मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा और श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा ने इस लोकगीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ पलारी से। इसी लोकगीत के लिए संदेश प्राप्त हुआ विशाल मिश्रा, बंधवा बाजार माधोपुर इमिलिया जौनपुर से आपने हमें संदेश भेजा। दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का संदेश मिला। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से इस लोकगीत को सुनना चाहा ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने इस लोकगीत को पसंद किया। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन, हर्ष कुमार सेन ने इस लोकगीत को सुनना चाहा। इसी लोकगीत के लिए संदेश प्राप्त हुआ रामशकल चौधरी का चोचक बाजार जिला गाजीपुर से। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हमें संदेश भेजा भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष ने। मोताला महाराष्ट्र से इस लोकगीत को सुनना चाहते थे विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। इसी लोकगीत के लिए हमें संदेश भेजा गांव हांडी खेड़ा।

जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा आप सभी ने। डबवाली से बसंत सिंह कुलदीप गांधी आपका संदेश हमें प्राप्त हुआ। जनकपुरी सहारनपुर से इस लोकगीत को सुनना चाहते थे जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल शुभम, प्रियंका आंचल कुंज, प्रवीण चिराग, रजत राजेश धीमान और धीमान परिवार के सभी सदस्यों ने इस लोकगीत को सुनने के लिए हमें संदेश भेजा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का संदेश प्राप्त हुआ। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से संदेश भेजा प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी आप सभी ने हमें संदेश भेजा बेनीपट्टी मधुबनी बिहार।

पाकुड़ झारखंड से संदेश भेजा उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अरणवानंद, सत्यमानंद, बोहड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुट्टी भगत ने। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से इस लोकगीत को पसंद किया जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह ने। लोहता वाराणसी से इस लोकगीत को सुनना चाहते थे हरीश चंद्र उपाध्याय।

मंगला विश्वकर्मा के ही लोकगीत को सुनना चाहते थे चापा छत्तीसगढ़ से, दिलदार मेरी, ज्योति जानवीद और दीक्षांत मेरी। रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियांशु, प्रीति, प्रांजल, प्रकृति और मंगला विश्वकर्मा, आप सभी ने हमें संदेश भेजा मेहंदीगंज मड़ई राजा तालाब वाराणसी से। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे गांव चौहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने इस लोकगीत को सुनना चाहा। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी ने इस लोकगीत को पसंद किया। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंद्रा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने इस लोकगीत को पसंद किया। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला लोकगीत छाया मिश्रा के स्वर में, लीजिए सुनिए ये सोहर।

छाया मिश्रा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये सोहर, और इस सोहर के लिए आप सबके ढेरों संदेश हम तक पहुंचे। सबसे पहले जो फरमाइश आई है वो है पद्मा टॉकी नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने इस लोकगीत को सुनना चाहा। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे चकफुटही असनाओ बाजार जला भदोही से गिरधारी लाल यादव। इसी लोकगीत को पसंद किया मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा। इसी लोकगीत के लिए संदेश भेजा बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। सोनू बिंद ने हमें संदेश भेजा जौनपुर से। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब झुमरी तिलैया से महेंद्र चौरसिया का संदेश प्राप्त हुआ। बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमें संदेश भेजा रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। गम्हरिया जमशेदपुर टाटा नगर से हमें संदेश भेजा रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेद

0: जोधपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल ने इस लोकगीत को सुनना चाहा। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे गणेशपुर श्योपुर वाराणसी से संतोष कुमार, अशोक कुमार, मनोज कुमार और सनोज प्रजापति। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इस लोकगीत को पसंद किया ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनोली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रेधान खुराना, आप सभी ने संदेश भेजा। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से इस लोकगीत को सुनना चाहते थे दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी ने इस लोकगीत को पसंद किया। दतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने इस लोकगीत को सुनना चाहा। इसी लोकगीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ गिर्रा पलारी से वीरेंद्र साहू और आशीष साहू। नयापारा भिरई जिला बालोद से बसंत कुमार ठाकुर, नानू राम ठाकुर, जनक राम ठाकुर और ईश्वर राज पप्पू ठाकुर का संदेश मिला। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पोरस ने संदेश भेजा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने संदेश भेजा। नांदेड़ महाराष्ट्र से इस लोकगीत को सुनना चाहते थे नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और सायन गायकवाड़। इसी लोकगीत को सुनना चाहते थे रमाशंकर यादव, रासीपुर बहादुर, सिरकोनी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। इसी लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी चौसा बाजार, चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद, सीता मुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रदुमन और प्रीतम कुमार ने। इसी लोकगीत के लिए संदेश प्राप्त हुआ ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर का संदेश प्राप्त हुआ। अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद का संदेश मिला। विराज मिश्रा, शालिनी मिश्रा, वान्या मिश्रा, आप सबने संदेश भेजा करनाल हरियाणा से। गाजीपुर से इस लोकगीत को सुनना चाहते थे भास्कर दुबे। दतरेगी से छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। बिहार से इस गुरुग्राम हरियाणा से इस लोकगीत को सुनना चाहते थे कुमारी गुंजन, कुमारी राधा, कुमारी नेहा, आलोक कुमार, उमेश कुमार और समस्त परिवार इनके। इसी लोकगीत के लिए हमें संदेश भेजा यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे ने। दुआ राम विश्वकर्मा, पुनारद यादव, खुरमान सिंह पटेल, जग्गू और ध्रुव ने हमें संदेश भेजा राजन छत्तीसगढ़ से। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने संदेश भेजा और इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए समाचार पहले अंग्रेजी में।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France, to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France Special Global Strategic Partnership to be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday.

0: प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक

0: विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्डफिश ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।

0: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 और 8 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है 14वीं का चांद।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रियदर्शी। आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कालजयी फिल्म जो प्रेम, दोस्ती, त्याग और लखनऊ की तहजीब का अद्भुत संगम है।

फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी गुरुदत्त, वाहिदा रहमान और जॉनी वॉकर ने। संगीत था रवि का और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। कहानी हमें ले चलती है पुराने लखनऊ की गलियों में, जहां तहजीब सांस लेती है और रिश्तों में मोहब्बत की खुशबू बसती है। यह कहानी है नवाब असलम की, जिनका किरदार निभाया है गुरुदत्त ने।

असलम एक पढ़े लिखे सुलझे हुए और नेक दिल युवक हैं। उनके सबसे करीबी दोस्त हैं नवाब प्यारे मियां। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन असलम की मुलाकात एक बुरकानशी युवती से होती है। वह उसका चेहरा नहीं देख पाते लेकिन उसकी आंखें और उसकी शालीनता उनके दिल में घर कर जाती है। वह उस अनदेखी लड़की के प्रेम में पड़ जाते हैं।

की माँ उनके विवाह की बात चलाती है। संयोग ऐसा बनता है कि जिस लड़की से असलम प्रेम करते हैं उसी लड़की का रिश्ता उनके दोस्त प्यारे मियाँ के लिए तय हो जाता है। असलम यह बात नहीं जानते, निकाह हो जाता है। कुछ समय बाद असलम पहली बार अपने दोस्त की बेगम का चेहरा देखते हैं और स्तब्ध रह जाते हैं। वह लड़की वही थी जिससे वह प्रेम करते थे। उधर लड़की जमीला भी असलम को पहचान लेती है।

0: अब कहानी प्रेम और दोस्ती के कठिन मोड़ पर आ खड़ी होती है। असलम अपने दिल का दर्द अपने भीतर छिपा लेते हैं। वह जानते हैं कि उनका दोस्त उनसे बेहद मोहब्बत करता है, इसलिए वह अपने प्रेम को कुर्बान कर दोस्ती को बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन भावनाओं को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता। जमीला की निगाहों में भी वही दर्द है। दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन तकदीर उन्हें बार बार आमने सामने ला खड़ा करती है। धीरे धीरे प्यारे मियां को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि कोई रहस्य है जो उनसे छिपाया जा रहा है। शक की दीवारें खड़ी होने लगती हैं। अब कहानी अपने भावनात्मक चरम पर पहुंचती है। गलत फहमियां बढ़ती हैं। दोस्ती और रिश्तों की परीक्षा शुरू होती है। असलम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर उनके दोस्त का घर न टूटे। वह अपने दिल की हर ख्वाहिश को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच्चाई सामने आती है। प्यारे मियां को पता चलता है कि असलम और जमीला की कहानी क्या थी। लेकिन यही फिल्म अपनी सबसे बड़ी खूबसूरती दिखाती है। ना कोई छल, ना कोई विश्वासघात, ना कोई स्वार्थ, केवल इंसानियत, दोस्ती और त्याग। यह इस फिल्म की आत्मा है। दोस्तों, श्रोताओं, चौदहवीं का चांद की सबसे बड़ी विशेषता है इसका लखनवी रंग। फिल्म में पुरानी हवेलियां, संकरी गलियां, अदब से भरी बातचीत, उर्दू की मिठास और रिश्तों में सम्मान। हर संवाद ऐसा लगता है मानो कोई शेर कहा जा रहा हो। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत केवल पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग और सम्मान का भी नाम है। इसी के साथ वक्त से आपसे अनुमति लेने का इशारा मिल रहा है, तो दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे किसी दिन किसी और फिल्मी सफर के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखे ख्याल। नमस्कार, आदाब।
1: शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशीन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी 14वीं का चांद। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एजवेस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, DTH न्यूज और NIR ऐप और वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, DRM, DTH, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और वेब OTT पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। प्रारंभ होती है आज की सायंकालीन सभा।

0: सभा के प्रारंभ में सबसे पहले आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: बच्चा लोगन, तू लोगन के केहू उपहार दे वाला तो कैसन लगला? माने तू लोगन के अपने बड़न से या अपने जौन प्रिय लोगन हुआ उनसे कौनो चीज अगर उपहार में मिलला तो बड़ी निक लगला ना। वैसे तू लोगन देखले होबा जा कि तू लोग के परिवार का बड़ लोगन के माने वो जब केहू जरूरतमंद लोगन के जब दान देवे न तो जेके दान देवे न वो बड़ी खुश होना आ उनके बड़ी दुआ देवे न बड़ी आशीष देवे न। माने केहू के अन्न का दान, केहू के कपड़ा का दान, केहू के भोजन का या केहू के धन का दान है ना। लेकिन जानत हुआ बच्चा लोगन कुछ दान ऐसा होला जौने का जुड़ाव न सीधा मने के जिंदगी से होला। हम कहल ई चाहत है न कि रक्त देवे का दान यानी खून का दान एक ऐसा दान हो जेकरे देहले से केहू का जिंदगी तुरंत बच जाला। माने देखा केहू के साथे दुर्घटना हो गयल हो या बहुत ज्यादा खून निकल गयल हो या फिर कबो कबो केहू के ऑपरेशन भी होवे के समय जौन है ना खून के जरूरत होला। केहू केहू के ऐसा बीमारी हो ना जौने के ठीक करे बदे समय समय पर खून का जरूरत हो तो ऐसने लोगन बदे खून का जरूरत होला है ना। आ खून ऐसा पदार्थ हो ऐसा चीज हो जौन की कहीं भी कोनो कारखाना में कोनो फैक्ट्री में बनत नहीं यानी कृत्रिम रूप से ई तैयार नहीं होत। एकर पूर्ति बस ऐसने समय पर एक दूसरे के खून का या रक्त का दान कर के ही कयल जा सकला। तो लोगन के जागरूक करे खातिन तू लोगन के बतावे खातिन कि खून का दान करना कितना जरूरी है हर एक मने के जिंदगी बचाव बदे। यही से आज पूरे दुनिया में विश्व रक्तदान दिवस मनावल चाहता जोने से कि लोग एकरे प्रति जागरूक हों गंभीर हों। चुन्नू मुन्नू देखा अपने कार्यक्रम में भी हम लोग यही से जुड़ल जौने की जानकारी लेके आयल है कि तू लोग के और अच्छा से फरिया के जानकारी मिल सके। तो देखा वार्ता लेके आयल है यही विषय पर डॉक्टर स्वर्णिम घोष बताई हैं कि रक्त के बारे में का का खासियत हो यानी चला बच्चा लोग अब हमने जौने की रक्त के बारे में जानल जा।
2: जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं?

आप सब आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी आप खेलते खेलते गिर जाते हैं और घुटने पर थोड़ी सी खरोंच आ जाती है तो वहां से लाल रंग का खून, जिसे विज्ञान की भाषा में रक्त या ब्लड कहा जाता है, निकलता है। यह लाल रंग का रक्त हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे दौड़ता रहता है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है, रक्त उस ऑक्सीजन को लेता है और सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर की हर कोशिका के पास पहुंचा देता है। सिर्फ यही नहीं प्यारे बच्चों, जो हम खाना खाते हैं उनके सारे विटामिन्स और प्रोटीन्स को भी यही रक्त पूरे शरीर में बांटता है। कोशिकाएं जब काम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और कचरा बनाती है तो रक्त उसे वापस भी समेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है ताकि हम उसे सांस के जरिए बाहर छोड़ सके, और बाकी कचरे को पेट के साथ किडनी में ले जाता है ताकि शरीर साफ रहे। इस प्रकार रक्त सफाई कर्मचारी का भी काम करता है। बच्चों, रक्त के 4 जादुई दोस्त भी हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC और प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा। लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC हमारे शरीर की ऑक्सीजन वाली गाड़ियां हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे रक्त या खून का रंग लाल दिखाई देता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC हमारे शरीर के सैनिक की तरह हैं। जब भी बाहर से कोई गंदा वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हमला करता है तो ये सैनिक उनसे लड़ाई कर हमें बीमार होने से बचाते हैं। प्लेटलेट्स ये हमारे शरीर के मैकेनिक या मिस्त्री की तरह हैं। जब हमें चोट लगती है और खून बहने लगता है तो वो भागकर वहां पहुंच जाते हैं और एक जाला जैसा बना देते हैं जिससे खून बहना बंद हो जाता है और पपरीसी जम जाती है। अंत में प्यारा सा दोस्त जिसका नाम प्लाज्मा है, यह हल्के पीले रंग का पानी जैसा तरल होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स तीनों ही तैरते रहते हैं और पूरे शरीर में चक्कर लगाते रहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़े इंसान के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त या खून होता है और हमारा दिल एक पंप की तरह इस रक्त को पूरे शरीर में ढकेलता रहता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि रक्त हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन कभी कभी किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोगों के शरीर में रक्त की बहुत कमी हो जाती है। और आपको पता है, रक्त या खून किसी फैक्ट्री या लैब में नहीं बनाई जा सकती, इसे तो सिर्फ एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है। कुछ बच्चे ऐसी आनुवंशिक बीमारियों जैसे थैलेसीमिया और एनीमिया के साथ पैदा होते हैं जहां उनका शरीर खुद रक्त नहीं बना पाता। इन बच्चों को जीवित रहने के लिए हर 15 से 20 दिन में नया खून चढ़ाना पड़ता है। मानव शरीर में रक्त ऐसी लाल जीवन धारा है जिसके बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारे शरीर का मुख्य परिवहन तंत्र है जो अंगों को आपस में जोड़ता है और उन्हें जीवित रखता है। जब हम लोग अपनी मर्जी से अस्पताल जाकर दूसरों के लिए रक्त देते हैं तो उसे रक्तदान कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा दान है, महादान है, क्योंकि इससे किसी की जान बचती है। रक्तदान एक ऐसा दान है जिसमें लेने वाले को कभी नहीं पता चलता कि रक्त देने वाला कौन था और देने वाले को भी नहीं पता चलता कि जिसने रक्त लिया वह कौन था, उसका रक्त किस मजहब, किस जाति या किस उम्र के व्यक्ति के रगों में दौड़ रहा है, यह उसे कभी पता नहीं चलता। इस प्रकार रक्तदान बिना किसी भेदभाव के शुद्ध मानवता की सेवा है। यह निस्वार्थ भावना और मानवता का प्रतीक है। बच्चों, पैसे या संपत्ति का दान इंसान को सुख देता है,
लेकिन रक्त का दान

0: इंसान को जीवन दे सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, रक्तदान को महादान कहा गया है। यह एक ऐसा उपहार है जो किसी को दोबारा मुस्कुराने, दोबारा जीने का मौका देता है। हम लोगों के द्वारा किया गया रक्तदान किसी के घर का चिराग बुझने से बचा सकता है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो, जिसका वजन 45 किलो से अधिक हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, वह रक्तदान कर सकता है। बच्चों, अक्सर हम सोचते हैं कि रक्तदान करने से हमारा शरीर कमजोर बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच तो यह है कि रक्तदान करने वालों को कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। समय समय पर किया गया रक्तदान न सिर्फ दूसरों की जान बचाता है, बल्कि यह आपके शरीर में नए रक्त के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। हमारे दिल की सेहत बनी रहती है, शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। पुराना रक्त निकलने के बाद शरीर तेजी से नया और स्वस्थ खून बनाता है। बच्चों, अभी आप छोटे हैं, लेकिन जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप 65 वर्ष की आयु तक हर 3 माह में रक्तदान कर पाएंगे। आइए आज हम संकल्प लें कि जब भी हमें अवसर मिले, हम रक्तदान जरूर करेंगे, खुद भी आगे आएंगे और अपने परिवार तथा दोस्तों को भी इस महादान में सहभागिता करने हेतु प्रेरित करेंगे। रक्तदान है महादान, इससे बचती है जान। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, देश को स्वस्थ बनाएं, इंसानियत का कर्तव्य निभाएं।
1: अब ही तू लोग सुनला है ना कि रक्त के बारे में का जानकारी खास हो, ये विषय पर डॉक्टर स्वर्णिम घोष अब बड़ा अच्छा से बतैनी है। और तू लोग भी जागरूक हुआ और अपने आसपास के लोगन के भी बतावा कि कितना जरूरी है रक्तदान करना। और जरूरी तो यो है कि मन में इंसान हो जाए। तो चला अब मन में इंसान हो जाओ।

0: मन में इंसान हो गल बच्चा लोगन, और बत कही करत जानकारी के बात लेत। हाँ, समय हो गल अब तू लोगन से विदा लेवे का, तो खूब मन लगा के पढ़ा लोगन, और एक दूसरे के साथे मिल के हमेशा रहा और एक दूसरे का सहयोग करा। तो अब चलत ही फिर आगे अगले कार्यक्रम में आवल जी बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके। चुन्नू मुन्नू जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी संदेश।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
6: 0542227658।
3: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
7: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लक्ष्य तय करें दोस्तों, मेहनत खुद ब खुद आपको सामने दिखेगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आपसे बातें करने हम आ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। तो हम आ गए हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी लेकर।
1: और युवाओं की अपनी पसंद और अपनी आवाज को लेकर हाजिर हैं मैं यानी शिवांगी
0: और मैं शिवानी। आप सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: हाँ जी, तो शिवांगी जी, अब बातों का सिलसिला शुरू किया जाए और आज कुछ अच्छी और नेक बातें करेंगे। वैसे मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा कि एक ऐसे नेक काम के बारे में मुझे तुम बताओ शिवांगी, कि जो बिना किसी खर्च के किसी को नया जीवन दे सकता है।
1: ऐसा नेक काम तो शिवानी मेरे दिमाग में एक ही आ रहा है जिससे हम लोगों को नया जीवन

0: दे सकते हैं और वो भी बहुत कम लागत में।
1: वो क्या?
0: वो है रक्त, यानी कि खून, जिसका कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। जब किसी मरीज को रक्त की जरूरत होती है, तब किसी व्यक्ति को रक्तदान ही उसकी उम्मीद बनता है। इसी सोच को बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के लिए हम हर वर्ष 14 जून, यानी कि आज, विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों को रक्त देने के प्रति जागरूक करना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना होता है।
1: आपकी बातों में शिवांगी जी, वो मुझे आपकी बातें अच्छी लगी और ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपकी बातें अगर थोड़ी जोर से हमारे श्रोताओं के बीच जाएंगी तो अच्छी होंगी। और इस नेक काम के बारे में हम लोग बताएं दोस्तों, तो जरा सोचिए, हमारे द्वारा दिया गया सिर्फ सिर्फ एक यूनिट जो खून है, किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज या किसी ऑपरेशन से गुजर रहे व्यक्ति की जान बचा सकता है। इसलिए रक्तदान को महादान कहते हैं दोस्तों।
0: बिल्कुल, और कई लोगों के मन में रक्तदान को लेकर तरह तरह की भ्रांति और सवाल होते हैं। कुछ लोगों सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित है। हमारा शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी को पूरा कर देता है। और दोस्तों, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से या उससे अधिक है, तो आप भी स्वस्थ हैं और नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, ये बात तो हमारी शिवांगी ने सही कही है। और रक्तदान से न केवल किसी जरूरतमंद की मदद होती है, बल्कि इससे अपने स्वास्थ्य की भी समस्याओं की जांच हो जाती है और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। आज के युवाओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारे जितना भी युवा साथी आज आप हमें सुन रहे हैं, हम सभी युवाओं की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर युवा आगे बढ़कर रक्तदान करे तो देश में रक्त की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया और जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
1: इस विश्व रक्तदान दिवस पर हम सभी को स्वस्थ रहकर और अपने स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन की नई उम्मीद और नई मुस्कान बन सकता है दोस्तों।
0: बिल्कुल शिवानी, और मुस्कान तो तब भी आती है जब मौका होता है किसी त्योहार को मनाने का। तो आपको पता है दोस्तों, इन दिनों उड़ीसा में राजा संक्रांति महोत्सव हो रहा है, जो आज यानी 14 से 16 जून तक मनाया जाएगा।
1: दोस्तों, ओडिशा में राजा संक्रांति महोत्सव को राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये हिंदू पंचांग के आषाढ़ महीने की दूसरी तिथि को पड़ता है। इस त्योहार को उड़ीसा में क्यों मनाया जाता है आपको ये पता है? नहीं पता, चलिए हम बता देते हैं। दरअसल उड़ीसा में यह त्योहार मानसून के आगमन का उत्सव है। राजा संक्रांति पहली राजा उत्सव का दूसरा दिन है, जो 3 दिवसीय उत्सव है और कभी कभी राज्य में 4 दिनों तक भी चलता है।
0: और दोस्तों, राजा संक्रांति दिवस को झूला उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों वृक्षों की शाखाओं पर कई प्रकार के झूले लगाए जाते हैं और लड़कियां महिलाएं लोकगीत गाते हुए बड़े मन से झूला झूलती हैं।
1: दोस्तों, इस त्योहार के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दें तो पहली राजा इस उत्सव का पहला दिन है, राजा संक्रांति दूसरा दिन है, जबकि तीसरे दिन को बासी राजा पूर्व राजा कहा जाता है। राजा संक्रांति को मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वास्तविक राजा।
0: और इस त्योहार के दौरान लोग धरती पर नंगे पैर भी नहीं चलते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानसून की बारिश शुरू होने से पहले धरती को आराम देना चाहिए। महिलाएं घरेलू काम से छुट्टी लेती हैं और किसान कृषि करने से अवकाश लेते हैं।
1: दोस्तों, सभी लोग खेलकूद में मग्न रहते हैं। महिलाएं घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और विशेष रूप से बनाए जाने वाले झूले पर झूलने झूलने के सम झूला झूलने में समय बिता देती हैं अपना। इन झूलों को अगर बात कहें तो वहां नाम दिया गया है दोस्तों, दांडी डोली, पटा डोली, चरकी डोली और राम डोली, जैसे विभिन्न नामों से इन झूलों को जाना जाता है। और वहां पे इस प्रकार से अच्छे अच्छे पकवान बना के और झूला झूलते हुए ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में ना कई सारे जितने भी राज्य हैं या जितने भी परंपराएं हैं, हर परंपरा के साथ अपना एक त्योहार

0: जुड़ा होता है और हर त्योहार को हर व्यक्ति अपने तरीके से मनाता है। तो जैसे आज हमने राजा संक्रांति उत्सव, ये जो उड़ीसा में मनाया जाता है, उसके बारे में जाना, और इस त्योहार के बारे में जान के ऐसा लग रहा है शिवांगी कि जैसे हम लोग भी सावन में यूजुअली
1: झूला
0: झूला
1: झूलते हैं,
0: झूलते हैं। हम भी
1: बिल्कुल
0: अपने घरों
1: बिल्कुल।
0: में कहीं ना कहीं झूला टांग लेते हैं कि झूला झूलने में मजा आता है। और ये मौसम ही ऐसा होता है कि झूला तुम और किसी मौसम में नहीं झूलती होगी, हमें लगता है सावन
1: सावन
0: में
1: में
0: ही झूलते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो वहां के लोग इस त्योहार को मनाते होंगे, ये महसूस करके ही ऐसा लग रहा है कि हाँ कितना अच्छा लगता होगा लोगों को
1: बिल्कुल।
0: आपस में मिलना
1: जैसे
0: जुलना।
1: हमें
0: और
1: सावन की याद आती है, वैसे ही एकदम मतलब वहां के त्योहार भी होते हैं, झूला झूल के
0: जैसे
1: मनाते
0: कि
1: हैं।
0: सावन हमारे यहाँ आ गया, बारिश हुई तो पता चल गया, लेकिन वहां पे सोचो इस सावन के आगमन के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है,
1: बिल्कुल
0: 3 दिन
1: बिल्कुल।
0: तक वहां कितना हर्षोल्लास रहता होगा।
1: स्वागत करते हैं एक्चुअली वो वहां पे।
0: हाँ, तो दोस्तों हमें हर त्योहार के बारे में, अपने भारत देश में जितने भी त्योहार हैं उनके बारे में जानना चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि आज आपको उड़ीसा में जो ये मनाया जाता है त्योहार राजा संक्रांति, इसके बारे में बताया जाए। खैर, बातें अभी बहुत सारी होंगी और जानकारियां भी बहुत सारी होंगी, और आज रविवार है तो कुछ स्पेशल भी आपके लिए होगा ही होगा, तो वो भी बताएंगे। लेकिन अभी चलते हैं फिलहाल मनोरंजन के सफर पर।

0: तो शिवांगी, बातें हो रही हैं, मनोरंजन हो रहा है, तो वैसे ये बताओ रविवार को जो है तुम स्पेशल क्या करती हो?
1: मैं तो घर का सारा काम करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन, पूरे हफ्ते जितने भी कपड़े होते हैं वो एक साथ धुलना पड़ता है, इसलिए मैं रविवार के दिन कपड़े, साफ सफाई और ज्यादातर मम्मी की हेल्प करती हूँ।
0: अधिकतर घरों में और अधिकतर लोग यही करते हैं रविवार को। लेकिन आपको पता है दोस्तों, हम रविवार को क्या करते हैं? जब हमें आपसे मिलने आना होता है यहाँ स्टूडियो, हम करते हैं आपके लिए कुछ खास लाने की कोशिश, आपके लिए कुछ अच्छा बनाने की कोशिश, और ये जानने की कोशिश कि हमारा युवा जो अपने लिए करियर के ऑप्शन चूज किया हुआ है, वो क्यों और क्या सोच के किया हुआ है उसने। तो इस रविवार को यूथ कैंपस के लिए हम गए थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटीज, और वहाँ हमने युवा साथियों से बातचीत की है। तो आइए उस मेहनत को भी हम सुन लेते हैं कि हमने उनसे क्या बातचीत की है और उन्होंने अपने बारे में, अपने करियर को चूज करने के बारे में हमें क्या बताया है।
2: आपका नाम क्या है
3: जी? माय नेम इज़ वंशिका।
2: आप कहाँ पढ़ती हैं?
3: मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ।
2: आप कौन सा कोर्स कर रही हैं?
3: मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ।
2: ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या लास्ट ईयर है?
3: ये मेरा फर्स्ट ईयर है।
2: अच्छा, तो आप अभी एग्ज़ाम दे करके आ रही हैं?
3: जी हाँ, मैं एग्ज़ाम दे करके आई हूँ।
2: किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था आपका?
3: मेरा आज था कंप्यूटर एंड ICT।
2: अच्छा, तो वंशिका आप ये बता सकती हैं कि आपने ये जो कोर्स चूज़ किया है वो क्यों किया है?
3: जी, मैंने ये कोर्स चूज़ किया क्योंकि मुझे इसी लाइन में अपना करियर बनाना है, आगे चल के मुझे एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना है। और मेरा इंस्पिरेशन जो है फ़िलहाल तो कोई नहीं है, बट यहाँ आने के बाद एक टीचर है जिनसे मैं मिली और वो ही मेरे इंस्पिरेशन है।
2: ओके ओके, और वंशिका आपका यही ड्रीम जॉब है या फिर कोई और, मतलब इसी को आप अपना एज अ करियर चूज़ की है?
3: जी हाँ, इसी को मैंने एज अ करियर चूज़ किया है।
2: तो आपके माइंड में ये पहले से ही सेट था कि आपको एंकर बनना है?
3: जी हाँ, वैसे तो मुझे न्यूज़ एंकर ही बनना है।
2: अच्छा, बता सकती हैं कि अगर आप ये जो कोर्स कर रही हैं वो 3 साल का है, उसके बाद आपका मास्टर्स का क्या प्लान है?
3: जी, मास्टर्स मैं यहीं से करूँगी और उसके बाद इसी लाइन में आगे भी पढ़ूँगी।
2: तो आपको यहाँ से किसी प्लेसमेंट के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए कहीं पे भेजा जाता है या फिर भेजा जाएगा, आपको कोई ऐसी चीज़ पता है?
3: अभी तो मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बट मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अभी इंटर्नशिप नहीं कह सकते, बट मैं एज अ ट्रेनर रिपोर्टिंग कर रही हूँ और सीख रही हूँ।
2: ओके, तो वंशिका आप ये बताइए कि आपको लगता है कि आपने ये जो सब्जेक्ट चूज़ किया है इसका फ्यूचर है, और आप जिस जितना इंटरेस्ट आपके पास है उतने इंटरेस्ट से लोग आपको देखेंगे, जानेंगे भी?
3: जी हाँ, अगर मेरी बातें सच्ची रहीं और मैं पब्लिक के तरफ से बोली, पब्लिक के सपोर्ट में और बिना किसी भी भेदभाव के बोली, तो ज़रूर जनता मुझे सुनेगी।
2: मतलब आपको कॉन्फिडेंट है कि आप अगर सच्चाई का साथ, निष्पक्षता से अगर आप रिपोर्टिंग करती हैं तो लोग आपको सुनेंगे? ठीक है, आपको लगता है कि आपके इस जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई के अनुसार और AI आप पे डिपेंडेंट, मतलब आप AI पे डिपेंडेंट रहोगे या आगे फ्यूचर जो है आपका वो AI पे जाएगा?
3: जी नहीं, मैं AI का यूज़ कहीं नहीं करती हूँ।
2: अच्छा, आप AI का यूज़ ही नहीं करती हैं? अच्छा, मतलब और अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि इन फ्यूचर अगर AI, जैसे आप कह, आपने कहा कि आप पत्रकारिता की छात्र हैं और पत्रकारिता करती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, अगर AI को रिप्लेस कर दिया जाए ह्यूमन के हिसाब से, कि AI को ला दिया जाए, तो उसके हिसाब से आपके क्या मत रहेगा?
3: ठीक है, मैं तब का तब देखूंगी। और वैसे भी मैं AI का यूज़ नहीं करती, मेरे पास एक सपोर्टिव पर्सन है जो मुझे नोट्स

0: देते हैं वो मेरे भाई ही हैं, तो फिर मुझे नोट्स मिलता रहता है, तो मुझे एआई का नीड नहीं होता उतना।
1: थैंक यू सो मच वंशिका,
0: वेलकम।
1: आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम पुष्कर सोनी है।
1: आप कहाँ रहते हैं?
2: जी मैं पहाड़िया रहता हूँ।
1: अच्छा, और आप यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में क्या पढ़ाई कर रहे हैं?
2: मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए मास कॉम की तैयारी कर रहा हूँ। पहला ईयर का दूसरा सेमेस्टर चल रहा है अभी।
1: ओके, तो आप ये बताइए कि आपने ये जो कोर्स है वो क्यों चूज़ किया है?
2: ये कोर्स हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके माध्यम से किसी भी फील्ड में मतलब कई सारे ऑप्शन खुल सकते हैं, जिसके ज़रिए हम या तो संपादक या तो फोटोग्राफर, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मेरा मकसद ये था कि मैं ये पत्रकारिता लेकर के आगे राइटर भी बन सकता हूँ।
1: ये तो आपने

0: ये था कि मैं ये पत्रकारिता लेकर के आगे राइटर भी बन सकता हूँ।
1: ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, मतलब इससे पता चलता है कि आपको स्टोरी टेलिंग और स्टोरी राइटिंग में इंटरेस्ट है।
0: जी
1: अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि आप ये जो चूज़ किए हैं अपना स्ट्रीम, उसमें आप अपने अपना ये ड्रीम जॉब समझते हैं या ड्रीम करियर है, या फिर आपको यहीं से आगे बढ़ना है?
0: नहीं, हमें इसी से ही आगे सब बढ़ना ही है।
1: मतलब आप एज अ करियर ही इसे चुने हैं, और तो इसके पीछे किसी ने आपको सपोर्ट किया है, किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया कि आप ये चूज़ करो और इससे ही इसमें ही फ्यूचर है, या किसी ने आपको इंस्पायर किया हो?
0: नहीं नहीं, इसमें मेरी बड़ी दीदी का ही हाथ है, जो कि उसने बताया था कि इसके आगे मतलब कई सारे ऑप्शन खुल सकते हैं, स्किल भी डेवलप भी हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने बताया था।
1: हाँ, तो क्योंकि आपने ऐसा स्ट्रीम चूज़ किया है जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लाइक आरजे, एंकर, राइटिंग कंटेंट। ओके, तो पुष्कर जी, आप ये बताइए कि आपने यही क्यों चूज़ किया, यही कैंपस क्यों चूज़ किया?
0: क्योंकि मेरी बचपन से ही आदत लिखने की थी।
1: अच्छा,
0: इसीलिए।
1: अच्छा, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ही आपको ये स्कोप दिखा कि आप यहीं से कुछ फ्यूचर में कर सकते हो ऐसा?
0: जी,
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
1: का नाम क्या है?
2: मेरा नाम तृप्ति कुमारी है।
1: आप कहाँ रहती हैं?
2: हम ये शिग्रा लहतारा के पास रहते हैं।
1: अच्छा, आप कहाँ पे पढ़ती हैं?
2: ये काशी विद्यापीठ में।
1: आप विद्यापीठ से क्या कर रही हैं?
2: ये मास कम्युनिकेशन
1: जर्नलिज्म कर रही हैं आप। तो ये आपका कौन सा ईयर है?
2: ये मेरा सेकेंड, अभी तो फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए, सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा।
1: अच्छा, तो आप ये बताइए कि आज आपका कौन सा एग्जाम था?
2: आज कंप्यूटर का था।
1: अच्छा, तो ये लास्ट एग्जाम है या फिर?
2: नहीं नहीं, आज लास्ट था आज का।
1: अच्छा, आज लास्ट एग्जाम था। तो आप ये बताइए तृप्ति जी कि आपने यही स्ट्रीम क्यों चुना, यही कोर्स क्यों है आपके लिए?
2: क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि मैं बोल पाऊँगी, मैं रिपोर्टिंग अच्छे से कर पाऊँगी, मुझे लगता है कि मैं जनता को प्रभावित कर सकती हूँ अपनी बातों से, उन्हें मतलब उनसे उनकी बातें समझ सकती हूँ और क्या।
1: अच्छा, तो आप मतलब अवेयरनेस फैला सकती हैं, लोगों को जागरूक कर सकती हैं अपनी बातों से। तो आप ये बताइए कि जिस तरह पत्रकारिता को इस समय देखा जा रहा है, जिस समय पत्रकारिता का जो हाल बना दिया गया है, उस पे आपका क्या कहना है?
2: देखिए, पत्रकारिता तो कल भी सही था, आज भी सही है, लेकिन वो डिपेंड करता है इंसान पे। अगर पत्रकार सही है तो उसे कुछ भी कर दे, वो आज भी सही खबर देगा, कल भी सही खबर देगा। अगर वो गलत है तो वो जाहिर सी बात है हमेशा गलत ही खबर देगा।
1: जो हमारा पत्रकार है उसे कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जो स्तंभ है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है?
2: कुछ सही है, कुछ गलत है। अब कुछ के चक्कर में सबको बदनाम नहीं किया जा सकता, और रहा पत्रकार चौथा स्तंभ है तो वो रहेगा, क्योंकि दुनिया को जागरूक करने का एकमात्र यही सहारा है, जो दुनिया को जागरूक कर सकता है, उन्हें सही और सही समय पे सही खबर पहुंचाता है।
1: तो तृप्ति, आपने ये जो कोर्स चूज़ किया है वो किस बेसिस पे किया है? आपको क्या लगता है, आपने किसी को इंस्पिरेशन मान के किया है, या आपके अंदर से खुद ये भाव आया कि आपको पत्रकारिता करनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए?
2: नहीं, मेरे अंदर से खुद ये भाव आया कि मुझे करना चाहिए।
1: तो आपने जो कोर्स लिया है वो किसी को इंस्पिरेशन मान के नहीं लिया, ऐसा है आपका कहना? तो अगर आपने इंस्पिरेशन नहीं माना है तो इसमें आप कैसे अपने आप को प्रूव करेंगी इस कोर्स में?
2: प्रूव करेंगे, थोड़ा डेवलपमेंट मेरे अंदर होगा तो मैं प्रूव करूंगी। अभी तो फिलहाल मेरा सेकेंड ईयर है तो थोड़ा टाइम लगेगा।
1: मतलब आप अपने नॉलेज पे काम करोगे, अपने स्किल्स पे काम करोगे, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन तो इसमें बहुत मस्ट है, क्योंकि आपको वो भाषाएं आनी चाहिए जो लोग समझे, ना कि आपको बहुत ज़्यादा डीप चले जाना है। ये भी तो होती है पत्रकारिता में, तो शायद आप लोगों में एक सब्जेक्ट भी होगा ये।
2: हाँ है, कम्युनिकेशन स्किल्स का।
1: तो आपने उसे पढ़ा है?
2: हाँ, क्लास लेती हूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें सिखाया जाता है कि मतलब कैसे स्किल्स करना है, किससे कैसे बात करना है, आई कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ का एक रूटीन है, मतलब हर चीज़ को एक सिचुएट करके बात।
1: तो पत्रकारिता को आप एज अ करियर चूज़ किया है आपने, या फिर उसके अलावा भी आप कुछ और करना चाहती हैं?
2: नहीं, एज अ करियर,
1: एज अ करियर ही चुना है। आप इसमें अपना इम्प्रूवमेंट देना चाहती हैं और लोगों को अवेयर करना चाहती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच तृप्ति जी।
2: थैंक यू
3: जी। मेरा नाम विजय कुमार है।
1: आप कहाँ से आए हैं?
3: जी, हम बक्सर बिहार से बिलोंग करते हैं।
1: आप यहाँ पर मतलब वाराणसी में किस चीज़ के लिए आए हैं? सिर्फ एजुकेशन बेस पे आए हैं या फिर रीज़न कोई और है?
3: जी, हम एजुकेशन के लिए तो आए हैं, और यहाँ के जो लोगों में बिहेवियर से उनका कल्चर है, उनका मैनर से, जो टीचर्स स्टाफ है, इस चीज़ को मतलब बेखूबी हम देखना और समझना चाहते हैं।
1: ओके, तो मतलब आप यहाँ के टीचर्स के साथ कनेक्ट करके खुद को उनसे जानना और उनके नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, उनके स्किल मतलब कि आपको वो कितना बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो विजय जी, आप ये बताइए कि आप ये जो काशी विद्यापीठ है उसमें आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं?
3: जी हाँ, महात्मा गांधी काशी

0: विद्यापीठ में जर्नलिस्ट मास कॉम का कर रहे हैं,
1: पत्रकारिता करते हैं आप यहाँ पे, तो आपने ये जो पत्रकारिता ही क्यों चुना, आप तो कोई और सब्जेक्ट भी चुन सकते थे।
0: जी, हमने पत्रकारिता इसलिए चुना क्योंकि आज के टाइम में पत्रकारिता एक गोदी मीडिया की तरह बन गई है, और हमें इसलिए इस चुना ताकि हमें जब मौका मिले पत्रकारिता माने के लिए तो सच्चाई जो है उस चीज़ को बेखूबी दिखाने, समझाने और समाज में प्रेरित करने के लिए चुना है।
1: ओके, तो आप मतलब सोचते हो कि अगर आप पत्रकारिता के छात्र हो या आप पत्रकारिता करते हो तो आप निष्पक्षता से इस कार्य को करोगे, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो आपने इसे अपना ड्रीम करियर चुना है या सिर्फ आप अपने आप को इसी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो?
0: जी, हमने इस चीज़ को ड्रीम एक तक कह सकते हैं, इसको हम ड्रीम की तरह भी सोचे, देखें और समझ रहे हैं ताकि हमें मौका मिले इस चीज़ में करने के लिए, ताकि इसमें कुछ बेहतर काम अपने तरीके से कर सकें।
1: मतलब आप अपनी चीज़ों को दिखा सके लोगों में कि आप लोगों, मतलब ये जो हमारा वातावरण है यहाँ पे, जो लोग हैं रह रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, वो चीज़ें आप आगे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कहीं से इंस्पायर होकर के ये स्ट्रीम चुने हैं, ये कोर्स चुने हैं, या फिर आपके अपने मन से ये चीज़ें?
0: हम अपने मन से किए हैं ताकि हम आज के टाइम में सब कुछ देख रहे हैं, टेलीविज़न में भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं और शहर में भी देख रहे हैं कि जहाँ जिसके पास बल है, जिसके पार्टी है, वही अपना सब कुछ जमाना चाहता है कि सिर्फ हम ही रहें और किसी नहीं आए।
1: तो ये आपका एज अ ड्रीम जॉब है?
0: जी हाँ।
1: तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, अगर हम इस ड्रीम जॉब को साइड करते हैं और आपसे पूछें कि आप एक्चुअल में क्या बनना चाहते हो, तो सिर्फ आप एक पत्रकार बनना चाहते हो या आप इसके जगह कुछ और भी?
0: जी, हम पत्रकार तो बनना चाहते हैं और रिपोर्टर, ताकि हम सही चीज़ को कवर करें और जो सच्चाई है, ट्रूथनेस है समाज में, उस चीज़ को लोगों में इन्फ्लुएंस करें।
1: ठीक है, तो आप ये बताइए कि आप अभी, आपने कहा कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो यानी कि बीए, तो इसके बाद आपका क्या प्लान है? आप ग्रेजुएशन करते करते ही अपना मतलब कहीं इंटर्नशिप प्लेसमेंट चेक ढूंढोगे या मिलेगा आपको, या फिर आप मास्टर्स के लिए भी प्रिपेयर हो?
0: जी, हमें मास्टर के लिए कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है नहीं करेंगे।
1: अगर आपको उसी दौरान इंटर्नशिप के लिए मिल जाते हैं तो क्या आप ये पढ़ाई बीच में ब्रेक डाउन कर सकते हो या उससे ऐसे ही कंटिन्यू करोगे?
0: पढ़ाई तो करेंगे ही और इंटर्नशिप भी चाहें तो हम ज्वाइन कर सकते हैं उस टाइम।
1: ओके, तो थैंक यू सो मच विजय जी। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम छानवी श्रीवास्तव है।
1: आप कहाँ से आई हैं?
2: मैं वाराणसी से हूँ, चौका घाट।
1: अच्छा, आप वाराणसी से बिलोंग करती हैं। तो आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ही अपने पढ़ाई के लिए क्यों चुना?
2: क्योंकि मुझे पसंद था, यहाँ इंटरेस्ट था एडमिशन लेने का, तो इसीलिए।
1: और आप कौन सा कोर्स कर रही हैं यहाँ से?
2: मैं बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ।
1: और आपने ये जो कोर्स है वही क्यों चूज़ किया? आप कोई और स्ट्रीम भी चूज़ कर सकती थी?
2: मुझे इंटरेस्ट था, मैं मतलब रिपोर्टर्स को और एंकर्स को देख के टीवी में इंस्पायर हुई थी, उसकी वजह से मैंने लिया।
1: ओके, तो आपका जो 12th था वो आपने किस सब्जेक्ट से किया था, साइंस या फिर मैथ्स कॉमर्स?
2: कॉमर्स।
1: तो आप कॉमर्स से अपना स्ट्रीम यहाँ पे चेंज कर दिया आपने?
2: हाँ,
1: तो
2: हाँ।
1: उसका कोई रीज़न?
2: हाँ, मैं चाहती थी कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो जाए और मैं इस फील्ड में इसके बारे में भी थोड़ा सा जान जाऊँ, और अगर मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ गया तो मैं इसमें ही अपना करियर बना लूँ।
1: ओके, तो एज ए करियर आप इसे चुननी है?
2: हाँ।
1: ओके, तो आपको लगता है कि ये जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता करने से लोग आपको सुनेंगे आप में, क्योंकि आप में कुछ ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए जिससे कि लोग आपके ऊपर अटेंशन दें, आपको सुने, क्योंकि आप कुछ अलग करो, तो आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हो इसमें?
2: हाँ, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं अपने टॉपिक को, मैं अपने मतलब जो मैं बोलना चाहती हूँ उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही हूँ, उसको लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ, तो फिर वो एक खूबी हो सकती है।
1: तो ये जो पत्रकारिता आपने कहा है, ये जो पत्रकार होते हैं उन्हें चौथा स्तंभ माना जाता है, तो ये जो कहीं ना कहीं स्तंभ है वो लड़खड़ा रहा है, तो आपको लगता है इसमें जो हमारा पढ़ाई है, हमारी पढ़ाई शिक्षा है, उसको उसमें कुछ बेहतरी लानी चाहिए या फिर इंसान को खुद में सुधार लाना चाहिए?
2: खुद में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई सही और हम सही से नहीं कर रहे हैं तो फिर कमी हम में है, तो हमें खुद में भी सुधार लाना चाहिए, और अगर हमें कोई दिक्कत लग रही है तो मैं उसके बारे में भी बात करना चाहिए।
1: तो आप ये बता सकती हैं कि आप जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ रही हैं, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपको कैसा पढ़ाते हैं?
2: वो तो अच्छा पढ़ाते हैं।
1: ओके, तो यहाँ पे क्लासेस चलती हैं हमेशा?
2: हाँ, हाँ, रेगुलर चलती हैं।
1: प्रैक्टिकल्स वगैरह?
2: हाँ,
1: वो भी होते हैं। ओके, तो आप लोगों को कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप प्रैक्टिकल करिए या फिर लोगों से बातचीत करिए, इंटरेक्शन करिए?
2: हाँ,
1: अच्छा, ऐसा किया गया है।
2: हाँ,
1: ठीक है, तो आप ये बताइए कि जब आप लोग

0: क्लास करते हो तो उसके थ्रू आप लोग को पता चला होगा कि यहाँ पे इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के बारे में,
1: हाँ.
0: तो ऐसा कुछ आप लोग को बताया गया?
1: हाँ, बताया गया था.
0: तो शानवी, आप ये बताइए कि जैसा कि आप पढ़ाई कर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ स्कोप है, हाँ. तभी आप पढ़ाई कर रही है, तो एज अ इंटर्न अगर आप इंटर्न करते हो तो क्या आप बनारस में ही इंटर्न करोगे या कहीं बाहर जाना चाहोगे?
1: नहीं, मैं बाहर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बनारस से ज़्यादा बाहर स्कोप है. बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बनारस से ज़्यादा स्कोप है.
0: ओके, तो बनारस से बाहर निकलना चाहती हैं आप, तो इसके लिए आप कौन सा प्लेस चुनेंगे, कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए?
1: तो मैं दिल्ली में जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे पेड इंटर्नशिप का ऑप्शन है, तो बहुत सारी ऐसे मतलब हमें वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है,
0: वहाँ पे आप अपने स्किल को और डेवलप कर सकते हो, ऐसा है वहाँ पर. ठीक है, तो आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद आप ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स करोगे?
1: हाँ, मैं मास्टर्स करूँगी.
0: और इसके बाद आपका क्या प्लान है?
1: मैं उसके बाद मतलब मैं चाहती हूँ कि साथ में मैं इंटर्नशिप भी करूँ अपने मास्टर्स के साथ, उसको कंटिन्यू रख के, क्योंकि उससे मेरी स्किल्स भी डेवलप्ड होंगी, मैं सीख भी जाऊँगी, जो मैंने कोर्स करा है उसका बेनिफिट भी होगा मुझे.
0: हाँ, उस पर कम्युनिकेशन वगैरह भी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी. ओके, ठीक है, थैंक यू सानवी.
2: तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यूथ से की गई बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी और वो अपने फ्यूचर को लेके कितना सीरियस है वो जान लिया होगा आपने. तो
3: वैसे शिवांगी, हमारी जो यूथ है वो जब अपने लाइफ में करियर में आगे बढ़ना चाहती है ना, तो वैसे भी सोच लेती है कि हमें ये करना है. और आज हमने जितने भी अपने साथियों से बात की, मैक्सिमम जो बच्चे थे वो पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें अपने आप को तलाश रहे हैं, कोई कंटेंट राइटिंग के उस पर अपने को देख रहा है, कोई एंकर के रूप में अपने आप को देख रहा है. तो ये अच्छी बात है कि ये अपने माइंड में क्लियर है कि
0: बिल्कुल,
3: हम अगर
0: बिल्कुल.
3: पत्रकारिता कर रहे हैं तो हमें ये चीज यहाँ तक ले जानी है अपने में इम्प्रूवमेंट करके.
0: बिल्कुल.
3: तो आज जब हमने अपने जो यूथ है उनसे, उनके कैंपस में जाके बातचीत की, तो उन्होंने अच्छा जवाब भी दिया. तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारी बातचीत थी आपको अच्छी लगी होगी, और जो यूथ सुन रहे होंगे उनके मन में अगर कुछ ऐसा होगा कि क्या करें क्या नहीं करें, तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, दूसरा बच्चा अगर ये कर रहा है तो मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ. तो आप भी सोचिए, अपने करियर पे फोकस करिए और वो चीज़ चुनिए जो आप करना चाहते हैं और वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं. वैसे बातों का सिलसिला मेरे और शिवांगी के साथ जारी रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं मनोरंजन के सफर पर. आइए सुनते हैं ये गीत.

0: शिवांगी, एक बात याद आ गई
1: पूछिए।
0: कि पिछली बार जब मैं तुम्हारे साथ कार्यक्रम कर रही थी तो तुम्हारे शब्द गड़बड़ हो रहे थे, और मैंने कहा था कि तुम हमारे युवाणी प्रोग्राम को सुना करो और वहां रोज अपने दोस्तों को नए नए शब्दों से रूबरू कराते ही हैं।
1: हाँ शिवानी, लेकिन मैं तो रोज अपना युवानी प्रोग्राम अब ध्यान से सुनती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के यूथ डायरी से हमारा हिंदी का शब्द क्या है।
0: बिल्कुल, आज के शब्द ध्यान से सुनना और शब्द बताना भी।
1: ओके।
0: दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का शब्द है अनुश्रवण, जिसका अर्थ होता है सुनकर जानकारी प्राप्त करना, किसी घटना या विषय के बारे में लोगों को सुनना या श्रुति परंपरा से प्राप्त सूचना। और अगर हम इसके वाक्य प्रयोग को समझें तो कुछ यूं कह सकते हैं कि मुझे इस घटना की जानकारी केवल अनुश्रवण से प्राप्त हुई, या फिर प्राचीन काल में अनेक कथाएं अनुश्रवण के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती थीं। या एक और वाक्य प्रयोग ले लीजिए कि किसी तथ्य को केवल अनुश्रवण के आधार पर सत्य नहीं मान लेना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अनुश्रवण के साथ साथ अब बारी आती है हमारे इंग्लिश वर्ड की। तो आज क्या, कौन सा इंग्लिश वर्ड बता रही हो शिवांगी?
1: आज का हमारा इंग्लिश वर्ड है लेबिलस, जिसकी स्पेलिंग है LEBULOUS, और जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट, धुलधुला या अनिश्चित। और इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे द आइडिया रिमेन्स नेबुलस एंड नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन, या फिर हिज प्लान्स फॉर द फ्यूचर आर नेबुलस, या फिर एक और द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर वर नेबुलस। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब बात कर लेते हैं अपने विजेताओं की, जो अपना नाम सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे।
0: जी हाँ दोस्तों, आपको अब बताते हैं कल का सवाल और उसका सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम। दोस्तों, हमने आपसे कल सवाल किया था कि किस शहर में लोक निर्माण विभाग PWD ने सड़क संकेतकों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है, जिसका सही जवाब है दिल्ली। और जिन लोगों ने ये सही जवाब दिया है उनके नाम है ग्राम जसवाणी, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ठाक से। ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदानगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे। और इसी के साथ हैं प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम सिमरौल से हैं रवि मौर्य। इसी के साथ साथ जो विजेता हैं वो हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इस बात की भी बधाई कि आप हमें रोज सुनते हैं और हमारे सवालों का जवाब देते हैं और अपना नाम जो है हमारे माध्यम से सुन पाते हैं। तो आज का सवाल भी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के सवाल का सही जवाब देकर आप सुनेंगे कल अपना नाम रेडियो पर और विजेता के रूप में छा जाएंगे। तो शिवांगी, आज का क्या सवाल है हमारा?
1: तो आज का हमारा सवाल है, वित्त वर्ष 2026-27 में 9 हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो जाइए हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे youth.ar.varanasi पर, या फिर अपना सही जवाब आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी youth.ar.vns@gmail.com पर, और बन जाइए विजेता।
0: बिल्कुल, सवाल नहीं सुना तो फिर से सुनिए कि वित्त वर्ष 2026-27 में 9 हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो फटाफट से फोन उठा लीजिए और हमारे इंस्टा आईडी या फिर ईमेल आईडी पर अपना जवाब भेज दीजिए। और शिवांगी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए भाई विश्व में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है,
1: बिल्कुल।
0: तो आज जो खबर लाई हो वो क्या लाई हो बता दो सबको।
1: तो आज की खबर है, महाराष्ट्र के अकोला के 17 वर्षीय छात्र सार्थक कमला किशोर ढोले ने इंटरनेशनल फिलोसफी ओलंपियाड

0: 2026 में कांस्य पदक जीतकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है, और यह 2019 के बाद इस प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक है।
1: क्या बात है। और इसी के साथ दोस्तों रोजगार सूचना भी जान लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट ALP पदों के लिए 11,127 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी की है। इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और इस फॉर्म को भरने की आज अंतिम तिथि है। तो आप इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो भर लीजिए। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है rrb.apply.gov.in। दोस्तों अब कार्यक्रम में समय हो गया हमारे जाने का, लेकिन जाते जाते आपको इतना ही कहेंगे कि ध्वनि प्रदूषण कम करिए, और रास्तों पर वाहन से अगर आप चल रहे हैं तो ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखिए। इससे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसी संदेश के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। आज आप सुन रहे थे शिवानी
0: और शिवांगी को।
1: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेब के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भोजपुरी में समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के एनएक्सी भवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इस बैठक में गोरखपुर आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों शामिल भई है। इस दौरान जनप्रतिनिधि लोग एक एक करके अपन प्रस्ताव रखे जे पर विभागीय अधिकारी उनमें ओकरे वस्तु स्थिति के जानकारी दिले। इस मौका पर मुख्यमंत्री विभाग के कई को परियोजना के गहन समीक्षा कर ले और कार्य में तेजी ले आने के निर्देश दिले। बैठक में विकास कार्य के साथ साथ कानून व्यवस्था के पहलुओं पर समन्वय बनाए रखे पर जोर दिहल गई। इससे पहले आज सवेरे मुख्यमंत्री गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में करीब 150 लोगों की समस्या सुन ले और प्रार्थना पत्र लेके समाधान बदे भरोसा दे ले। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री अधिकारी लोगों के निर्देशित कर ले कि उन लोगों की समस्या के संवेदनशीलता से लेत जल्दी से जल्दी समाधान सुनिश्चित करे। ए पर कौनो तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर जाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 बरिस पूरा भइले के मौका पर प्रदेश के कई जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मिर्जापुर जिला के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज ओइजा पहुंच के संवाददाता लोगों से बतियावत केंद्र सरकार के कार्यों के गिनौले।
2: किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, लोन विधि योजना की और प्रभावी बनाई।
1: श्री नंदी कहले कि देश के आखिरी पार्टी में बैठल मनई के सरकार के योजना के लाभ मिल रहा था, जेकर नतीजा हो कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बहरे आ चुकल हवे। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी आज उन्नाव में प्रेस वार्ता कई के केंद्र और प्रदेश सरकार के कई को जन कल्याणकारी योजना, विकास कार्य और उपलब्धि पर रोशनी डालने। बलिया में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु संवाददाता लोगों से बतियावत देश भर में चल रहल जन कल्याणकारी योजना के जिक्र कर ले। अम्बेडकर नगर में प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राज पर सरकार की उपलब्धि गिनौले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछला 12 बरिस में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति भइल बा। आकाशवाणी समाचार ए मौका पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहल है। आज हम लोगों की जिंदगी में सुगमता ले अइले के सरकार के कार्यन पर जानकारी दे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है।

0: ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा आज प्रदेश के कई जिलों में कई को केंद्रों पर सकुशल पूरा हो गई। परीक्षा के दौरान प्रशासन की ओर से स्वच्छता के लेकर पूरा इंतजाम कर गए रहे। परीक्षार्थियों के संभावित भीड़ के ध्यान में रखकर केंद्रन वाला सज्जू जिलों में प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग तैयार रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA परीक्षा अधिकारियों बदे आई गॉड कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एगो कार्यक्रम शुरू कर ले हवे। एकर उद्देश्य NTA परीक्षा बदे पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रिया के मजबूत कई ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षण के सुचारू, सुरक्षित और मानक के हिसाब से संचालन सुनिश्चित कई है। विश्व रक्तदाता दिवस के मौका पर आज प्रदेश के सज्जू पूर्व जिलन में रक्तदान शिविर और जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कई गये। इस मौका पर स्वैच्छिक रक्तदान करे वाले लोगों के प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित कई गये और ढेर से ढेर लोगों के रक्तदान करे बदे प्रेरित कई गये। आजमगढ़ जिला के मंडलीय चिकित्सालय में आज 10 बेड के रक्तदाता कक्ष के शुरुआत कल गए। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज DRM DTH पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुन सकेंगे शाम 6:30 से, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:10 से। श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आइए अब जानकारी दे दें कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में आप सुन सकेंगे गायन। कलाकार होंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां, 10:30 पर। पंडित चितरंजन ज्योतिषी का गायन 12:45 पर और 7:31 पर। गिटार वादन, कलाकार होंगे प्रेम जैन। कार्यक्रम सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे मनहर उदास के गाए गजल 8:00 और मीरा दास के गाए भजन 12:30 पर। कार्यक्रम लोक संगीत का प्रसारण समय होगा 9:50 पर, 1:45 पर और कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत 6:30 पर। कलाकार होंगी रेणु भारती। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत हम आपको सुनवाएंगे 6:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्लास्टिक सर्जरी और इसकी उपयोगिता विषय पर डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह की बातचीत। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण समय होगा 5:15 से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और वार्ता, साइबर फ्रॉड, डिजिटल युग की नई चुनौती विषय पर। वार्ताकार होंगी शिवानी पांडे। महिलाएं सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी 1:15 से, जिसके अंतर्गत वे सुनेंगे चर्चा, बातचीत, सेहत ज्ञान और गृहलक्ष्मी टिप्स। आकाशवाणी के 90 वर्ष हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास में आकाशवाणी का योगदान, ये परिचर्चा आप सुन सकेंगे 10:00 से और सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण समय होगा 8:10 पर और 10:00 से।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग आप सुन सकेंगे शाम 7:31 पर, शाम 7 बजे से, शाम 6:10 पर, शाम 5 बजे से, और कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में दोपहर 2:30 से। गैर फिल्मी गीत एवं गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर, और कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत दोपहर 11 बजे से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12 बजे से। सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा का प्रसारण समय होगा सुबह 8:45 से, और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे से। श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ आप सुन सकेंगे सुबह 6:40 पर, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुबह 6:35 पर, विचार बिंदु सुबह 6:30 पर, और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुबह 6:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल दिनांक 15 जून को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, लेकिन उससे पहले ये जरूरी संदेश।
1: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म दीवाना से। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत नदीम और श्रवण का, और आवाज कुमार सानू की।

अभी आपने सुना फिल्म दीवाना से इस गीत को। इस गाने के बोल लिखे थे समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का था और आवाज कुमार सानू की थी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परदेश से। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत नदीम श्रवण का और आवाज कुमार सानू की।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भाषाः देशस्य परिवर्तनस्य भविष्य निर्माणस्य च चालकभूताः सन्ति इति उक्तवान्।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: सभाम अभी संबोधयन फ्रांस देश से राष्ट्रपति मैक्रों वर्य अवदत् वैश्विक नवोन्मेषण शक्ति रूपेण भारतस्य उदयस्य प्रशंसां सः कृतवान्। सः अवदत् यद् अद्य प्रश्नः नास्ति यद् भारतं नवोन्मेषं करोति वा न वेति, अपितु प्रश्नः अयमस्ति यद् भारतेन सह नवोन्मेषकार्ये कः सहभागी भविष्यतीति। अस्य वर्षस्य आरम्भे मुम्बईनगरे प्रारब्धस्य भारत फ्रांस नवान्वेषण वर्षस्य उल्लेखं कुर्वन् श्री मैक्रों वर्यः अवदत् यत् भारतस्य प्रमुखाणां नवोद्योग संस्थानां नवान्वेषकाणाञ्च प्रदर्शनार्थं निवेशकैः उद्यमपतिभिः सह सहयोगं प्रवर्धयितुं सहभागी देशत्वेन चितः इति फ्रांस देशः गौरवान्वितः अस्तीति। अस्मिन् अवसरे विदेश कार्यमंत्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोभालः, प्रधान वैज्ञानिक परामर्शकः अजय कुमार सूदः, इन्फोसिस संस्थापकः नारायण मूर्तिः, अनेके व्यापार प्रमुखाः च उपस्थिताः आसन्। दिनानन्तरं प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपतिः मैक्रों च भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वस्य प्रगतिं समीक्षितुं, प्रमुख क्षेत्रीय वैश्विक विषयान् चर्चयितुं च द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यतः। आयुष मंत्रालयेन अद्य नूतनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्व अभिलेखः निर्मितः। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम अर्थात प्रत्यक्ष प्रसारित योग सत्रे सर्वाधिक दर्शकाणां सहभागितायै आयुष मंत्रालयेन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थानस्य हाववेल्ड संस्थायाश्च सहयोगेन अद्य अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसस्य 26th-2000 वर्षस्य उत्सवानां भागरूपेण वैश्विकम् ऑनलाइन आभासीयं योग सत्रम् आयोजितम्। अस्मिन् वैश्विक ऑनलाइन योग सत्रे आयुष मंत्रालयः 35,000+ सत्यापित दर्शकाणाम् अभिलेखं स्थापितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः अद्य बेंगलुरु नगरे विकसित भारत संकल्प समावेशं सम्बोधयन्ती अवदत् यत् कर्नाटक राज्यं यूपीए शासनकालस्य अपेक्षया पञ्चगुणितं अधिकं केन्द्रीय कर विभाजनम् अवाप्तवत्। वित्तमंत्री अवदत् यत् कर विभाजनस्य माध्यमेन राज्याय 4,00,000 रूप्यकाणि प्राप्तानि। राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणाय, रेल संरचना विकासाय, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक संपथ परियोजनायै, पुनर्नवीकरणाय, ऊर्जा परियोजनायै केन्द्रीय सहायता प्रदत्ता इति तया उक्तम्। केन्द्रीय श्रम आजीविका राज्यमंत्री शोभा करन्दलाजे वर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति देशः अग्रे सारितः। आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मन्दिरे दर्शनानन्तरं सा अवदत् यत् एषा यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 12-वर्षीय कार्यकाल पूर्णतायाः तथा च देशस्य दीर्घकालं निरन्तरं सेवमानस्य प्रधानमन्त्रिणः स्मरणार्थं कृतास्तीति। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री मोहन यादवः अद्य सागरमण्डले राज्यस्तरीय कार्यक्रमे लाडली बहना इति योजनायाः 37th सहयोगांशस्य वितरणं कृतवान्। सम्पूर्णे राज्ये 1,25,00,000 महिला लाभार्थीनां वित्तकोषेष् प्रत्यक्षतया 35,18,00,000 रूप्यकाणि प्रेषितानि। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व रक्तदात्री दिवसस्य अवसरे जनानां स्वैच्छिक रक्तदानाय आह्वानं कृतवान्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रसारिते सन्देशे तेन उक्तं यत् रक्तदानं कस्यचित् व्यक्तेः जीवन रक्षणस्य तथा नूतन जीवन प्रदानस्य सर्वाधिकं प्रभावी पावनञ्च माध्यमम् अस्तीति। ओमान देशे भारतीय दूतावासः अवदत् यत् प्रायः 14 भारतीयान् वहत् भारतीय ध्वजारोहितं यान्त्रिक नौकायानं विराट 1 इत्यस्मै ओमान

0: देशस्य तटे यन्त्रस्य विफलतायाः अनुभवः अभवदिति। सामाजिक प्रसार माध्यमे दूतावासः सूचितवान् यत् सम्प्रति ओमान अधिकारिणां समन्वये समीपस्थैः नौकायाने यानैः उद्धार कार्यं प्रचलतीति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, ऑस्ट्रेलिया देशः स्वस्य फीफा विश्वकप 2026 इत्यभियानस्य आरम्भं साफल्येन समारभत। स्वस्य ग्रुप डी इत्यस्य आरम्भे तुर्कीये इत्येनं देशं 2-0 पराजयत्। ह्यः स्कॉटलैंड देशः मैसाचुसेट्स नगरे ग्रुप सी इत्यस्य आरम्भे हैती देशस्य उपरि 0 उत्तरे एकांकेन कठिन संघर्षे विजयं प्राप्य ग्रुप सी मध्ये अग्रस्थानं प्राप्नोत्। तस्मिन्नेव समूहे अन्यत्र पञ्चवारक विजेता ब्राजील देशः न्यू जर्सी नगरे मोरक्को देशेन सह एकैकांकाभ्यां समांकीय स्थानं अवाप्नोत्। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य वर्मिंगहम नगरस्य एजवास्टन नगरे ग्रुप ए क्रीडायां चिरप्रतिद्वंदिना पाकिस्तानेन सह स्वस्य आईसीसी महिला टी20 विश्वकप इति अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। क्रीडा सायं 7 आरप्स्यते। महिला टी20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतस्य आधिपत्यम् आसीत्। उभयपक्षयोः मध्ये क्रीडितेषु 16 स्पर्धासु 13 स्पर्धाः भारतेन विजिताः सन्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंगहम में खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Pakistan of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.
4: कुछ मुकाबले सिर्फ खेले नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। कुछ प्रतिद्वंद्विताएं सिर्फ आंकड़ों में नहीं बसती, वे करोड़ों दिलों की धड़कनों में धड़कती हैं। और जब बात भारत और पाकिस्तान की हो तो हर गेंद एक कहानी बन जाती है, हर रन एक उम्मीद और हर विकेट एक उत्सव। आज बर्मिंगहम की धरती पर महिला टी20 विश्व कप में भारत के अभियान का आगाज हो रहा है। वनडे विश्व विजेता भारत आत्मविश्वास की नई उड़ान के साथ मैदान में है, जबकि पाकिस्तान की टीम अपने जज्बे जुनून से बड़ा उलटफेर करने का सपना लेकर आएगी। आसमान में तिरंगे की उम्मीदें हैं, मैदान पर खिलाड़ियों का हौसला और रेडियो के इस सफर में आपके साथ क्रिकेट का सबसे रोमांचक कारवां। मैं हूं आपका होस्ट आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट साक्षी मांडवाल।
5: Thank you so much, Anand, and a very warm good evening to all our listeners of Akashvani. We are back over here once again, bringing you the first game of the ongoing Women's World Cup 2026, the big one, India versus Pakistan. Joining me over here in the studio today are three very

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: FM 100.6 पर ये विविध भारती का वाराणसी केंद्र है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द वीक, जिसमें प्रोफेसर मंगला कपूर से आकांक्षा सिंह की बातचीत सुनवाई जा रही है।
1: नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हमारे सामने वो व्यक्तित्व है जिनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि अदम्य साहस, आत्मविश्वास और नई पहचान गढ़ने की कहानी है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो इंसान को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ लोग उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। हमारी आज की अतिथि जो हैं, उन्होंने भी कठिन से कठिन समय का सामना करते हुए न केवल अपने आप को संभाला बल्कि शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में भी अपना एक व्यक्तित्व बनाया, अपने को संभाला, संवारा और एक नई पहचान बनाई। अपने ज्ञान, आत्मबल और सकारात्मक सोच से अनगिनत लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई। आइए हम सभी स्वागत करते हैं पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर मंगला कपूर जी का, जिनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि साहस ही असली सुंदरता है और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति। मैम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, मुझे सुनने के लिए, श्रोताओं को सुनाने के लिए।
1: मैम, शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा अभी की बात करेंगे।
2: बिल्कुल।
1: जैसे जो आपने किताब लिखी है सीरत, जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे तो लगा कि एक आम व्यक्ति जो है कितना संघर्ष करके पीछे से आगे आता है, तब जाके उसे आम से खास बनने का मौका मिलता है। और आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो जो वो कठिन समय था, अपने आप को आपने किस तरह संभाला, जो बचपन की कुछ यादें हैं हम शुरू से जानना चाहेंगे, आपका बचपन कैसा रहा?
2: बचपन जैसा तो मेरे साथ कुछ बीता ही नहीं, जिसको बचपन कहते हैं, जो खेल कूद के गुजारा जाता है
1: जी।
2: तो 12 वर्ष की अवस्था थी मेरी, तो मेरे ऊपर अचानक एसिड अटैक करवाया गया बाकायदा। चाचा जी का बनारसी साड़ी का बिजनेस था और उनके इस मार्केट में कई प्रतिद्वंदी थे। एक जो बहुत ज्यादा जिनको तकलीफ थी, तो उन्होंने अपनी उस वेदना को, किसी को वेदना दे करके सोचा कि हम आगे बढ़ जाएं। उसके लिए उन्होंने मुझे चुना। हम लोग ज्वाइंट फैमिली, चाचा जी ने शादी नहीं की थी, तो घर में लड़की के नाम पे मैं अकेली और छोटी थी
1: जी।
2: और ये सोचिए 1954 और उसका जमाना, जब मैं, और ये 65 की बात है, 65 की बात है। उस समय 11:30 ही था, 12 भी क्या कहूंगी। उन लोगों ने, मैं रात में सोई हुई थी घर में ही, तो मेरे घर के नौकर को पैसा दे करके और मेरे ऊपर ऐसे अटैक करवाया
1: जी।
2: हम, मेरे भाई मेरे साथ में है, छोटा भाई, हम दोनों आंगन में, मई के दिन थे, काफी गर्मी थी, आंगन में चौकी लगी थी, उस पे सो रहे थे। और करीब भोर में 2:30 बजे की बात है
1: जी,
2: जब यूं ऐसा लगा कुछ गरम गरम पड़ा और मैं चिल्ला उठी इतना। और आप समझिए, आज की जो जनरेशन, आज का जो बच्चा है, वो उतनी देर दूर तक सोच नहीं सकता। हम लोग का जमाना बड़ा इनोसेंट होते थे उस उम्र में, अभी तो बहुत परिपक्वता आ गई है छोटे में ही। तो मैं चिल्लाई और वाकई ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा था, मैं चिल्लाने लगी कि ऊपर से हवाई जहाज गया है और मेरे ऊपर गरम गरम पानी छोड़ के चला गया है। चीखी चिल्लाई तो फिर घर के लोग उठे, लाइट जलाया, फिर मुझे देखा तो चाचा जी ने कहा रे ये तो तेजाब है। और मैं चीखते चिल्लाते उन लोगों ने मुझे गोद में उठाया और उनकी गोद में ही मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ होश नहीं। फिर बनारस में कबीर चौरा हॉस्पिटल है
1: जी,
2: वहां मुझे ले गए और वहां एडमिट किया गया। मुझे सुबह काफी देर बाद होश आया तो देखा कि मैं अस्पताल में थी, मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था और डॉक्टर्स घेरे हुए थे मुझे, तो दवाई वगैरह जो किया जाता लगा चुका और मेरा चेहरा फूल करके बहुत बड़ा हो गया था, सूज गया था और पूरा काला हो गया था, काला चमड़ा आ गया था ऊपर, काफी पीड़ा थी, आंख नहीं खुल रही थी मेरी। डॉक्टरों ने आंख देखा तो बोले कि ये तो

0: अंधी भी हो गई, मतलब अब ये देख नहीं पाएगी, आंख भी गई इसकी। तो वहां तो खैर यही नहीं लग रहा था मेरे पेरेंट्स को या और लोगों को कि ये बच भी पाएगी। शायद 3-4 दिन भुगतने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद कहां जी पाएगी। उस तो फिर चला, लंबा चला वो, रोज दवाइयां होती थी और कुछ भी सुधार समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि वो बढ़ता ही गया। बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि मेरे सारे चेहरे में मवाद भर गई, पूरा चेहरा
1: जी।
0: और बहुत कलकलाहट होती थी। मैं न सो पाती थी न खा पाती थी, बस बेकल सी टहलती रहती थी, वो दिन हो या रात हो। हालत दिन पर दिन

0: वो दिन हो या रात हो, हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई
1: जी।
0: और मवाद जो है वो टप टप करके गिरती थी
1: जी।
0: धीरे धीरे चेहरा और विकृत होता चला गया। काफी संघर्ष रहा, वो वहां जितने दिन रहना था शायद कुछ दिन पूरे करने होते हैं, लेकिन उसके पहले ही मरणासन्न स्थिति में मुझे बाबा वहां से घर ले आए। मैंने कहा मुझे मरना है तो आप मुझे घर ले चले। एक बड़ी अमानवीय घटना है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी, वो ये कि वहां के जो डॉक्टर थे जो मुझे देख रहे थे, हम लोग प्राइवेट रूम लेकर के उसमें थे और पिताजी गए उनसे बात करने कि मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूं क्योंकि वो मर रही है, और वो भी नहीं चाहती, हम लोग भी नहीं चाहते कि उसके प्राण अस्पताल में निकले जहां उसको घर घर लगी हुई है, तो हम लोग घर ले जाना चाहते हैं। तो बोला ठीक है आप अपनी मर्जी से लिख के ले जाइए, लेकिन आज नहीं कल ले जाइएगा। ठीक है, पिताजी मान गए। दूसरे दिन उसी रूम में करीब 8-10 नर्सों को लेकर के आया और मेरा छोटा भाई और माँ ही उस समय थे। कमरे से इन लोगों को निकाल दिया और जो है उन 10 नर्सों ने मुझे कस के हाथ पैर पकड़ लिया जी, जबकि ये होता है ऑपरेशन रूम में जा करके आप बेहोश करिए उसके बाद कुछ, लेकिन नहीं, वो बकरा जैसे हलाल होता है उस तरह से वो मेरे काले चमड़े जो जमे हुए थे उनको खींचता जा रहा था और काटता जा रहा था और मैं बेतहाशा चिल्ला रही थी। बाहर ये लोग रो रहे थे चिल्ला के कि पता नहीं क्या कर रहा है मेरी बेटी के साथ कि मेरी बेटी इतना चिल्ला रही है, और उससे जितना करते बना करके वो पूरी टीम लेकर के निकल गया वहां से। उसके बाद से मेरी हालत बहुत सीरियस हो गई, मैं एकदम उस दिन रात को फिर पिताजी मुझे घर ले आए, बल्कि आंगन में लिटा दिया गया। दूसरे दिन वो सारी कार्यवाही की गई जो मरने के समय प्रक्रिया होती है, दान वान ये सब, वो सब हो गया। फिर भी सांस बाकी थी, मैं होश में आती चिल्लाती, फिर बेहोश हो जाती, और एक रात जब बहुत हालत खराब थी तो नया नया हॉस्पिटल बना था रामघाट अस्पताल करके, यहाँ बनारस में ठीक गंगा किनारे है, वहां नया नए नए और बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। तो वहां से पिताजी डॉक्टर को ले आए, उन्हें कहा देखिए मैं कुछ कर नहीं सकता इस हालत में, ये कर सकता हूँ इंजेक्शन दे देता हूँ ताकि ये
1: थोड़ा कष्ट
0: सो सके, सो नहीं पा रही है ये सो जाए, और अगर सुबह तक ये जिंदा रहेगी तो आप अस्पताल ले आइएगा। सांस थी, जिंदा हो गई और फिर वही प्रक्रिया चालू, फिर पिताजी लेकर के वहां गए, उन डॉक्टर ने मुझे वहां एडमिट कर लिया
1: जी।
0: और एक बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर थे उस समय, उन सारे डॉक्टर मिलके एक मेरा पूरा बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें 10 बजे मैं ऑपरेशन रूम में गई थी, शाम को 5 बजे निकाली गई। वो जितना चेहरे पे जितना भी चमड़ा था उसको खींच खींच के उन्होंने साफ कर दिया, और उस साफ करने में जो पस था उस पस की वजह से मेरा कान नाक ये सब गल के निकल गए थे इनके हिस्से वो, और फिर निकाला गया और वो ड्रेसिंग होती रही जैसे होता है, घाव सूखते गए और विकृतियां और आती गई, क्योंकि घाव सूखने के बाद जो जला हुआ चमड़ा था वो सिकुड़ना शुरू हो गया यूं करके
1: जी,
0: और मेरे होंठ लटक के बिल्कुल नीचे आ गए थे यूं, मैं खाना नहीं खा पाती, 4 दाने खाती थी बाकी गिर जाता था। ठीक है, उस तब उन्होंने ड्रेसिंग करके और घाव सूख जाए इतना तो कर दिया, मेरी ये गर्दन ऐसे चिपक गई थी
1: जी,
0: इतने स्कार्स बन गए थे, मैं घूम के अगल बगल नहीं देख सकती थी। उन्होंने कहा कि अब ले जाइए इसको, इनको अब थोड़ा बहुत जो सुधार हो सकता है वो प्लास्टिक सर्जरी कराने से हो जाएगा। बनारस से उस समय कोई प्लास्टिक सर्जन थे ही नहीं, पता किया गया तो लखनऊ में थे, और हम लोग की स्थिति जो है उस समय तक बहुत खराब हो चुकी थी। वहां गए बाबा बात करके आए और उन्होंने बहुत खर्चा बताया
1: जी।
0: नहीं जा सके हम लोग, घर में पड़ी रही। फिर मेरे एक मामा जी पटना में, उनका ट्रांसफर होके आए, डॉक्टर थे वहां पे, प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर थे।

0: डॉक्टर एन के सिन्हा। मामा जी ने वहां बुला लिया और फिर वह लगातार 3 महीने, सॉरी 3 साल तक पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिट रही।
1: अच्छा।
0: और हर महीने 2 महीने पे एक ऑपरेशन होता था। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद पता चला BHU में डॉक्टर एन एन खन्ना नए नए होकर डॉक्टर आए थे, उनको दिखाया गया और उन्होंने बड़े उत्साह से मेरा करीब 4 ही 5 ऑपरेशन किया था। उसके बाद एक मीटिंग थी, बोले मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, आने के बाद फिर मैं मीटिंग में होता गया है कि जहां जहां से जो प्लास्टिक सर्जन आते हैं वो लोग विचार करते हैं मेरे पास ऐसा केस है, कैसे हम इसको इस तरह देख रहे हैं, और लोग भी सलाह देते हैं इसको थोड़ा इस। उसमें वो पटना वाले डॉक्टर भी आए थे मेरे ही केस की फाइल लेकर के,
1: अच्छा,
0: और खन्ना साहब भी मेरे ही केस की फाइल लेके गए थे
1: जी।
0: और वो काफी यंग यंग पर्सन थे उस समय। तो उन्होंने तुरंत उनको मना किया, ये लड़की तुम्हारे पास कैसे, अरे बनारस की है, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। बोले नहीं, मैं इसका सारा कुछ प्लान कर चुका हूँ, तुम उसका ऑपरेशन नहीं करोगे और उसे फिर पटना भेजो जाके।
1: अच्छा
0: जी आए हम लोग मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ, सीनियर जूनियर की बात है और मैं नहीं मानूंगा तो मुझे तो रहना इसी फील्ड में है, तो बेबी आप वहां चले जाओ फिर से। पिताजी ने साहब कह दिया, देखिए हमारी स्थिति नहीं है कि हम ले जाएं और धूप करें और
1: जी बिल्कुल।
0: जी। फिर मैं घर में पैक हो गई, बंद हो गई बिल्कुल।
1: अच्छा।
0: उम्र भी बढ़ी रही थी तब तक, क्योंकि वो उम्र ऐसी थी उस समय जब डॉक्टर्स मुझे ले जाते थे ऑपरेशन के लिए तो कहते थे बेबी अभी तुमको तकलीफ होगी लेकिन तुम पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी, और वो जो सुंदर होने की कल्पना थी उसके कारण मैं सब झेलती गई, घर बैठ गई, उम्र तो बढ़ी रही थी। फिर लगा कि नहीं ये तो बहुत भयानक हादसा मेरे साथ हो गया है, ये जो भी है ठीक नहीं है, और मैं किसी का सामना डरती थी, लोगों में निकलने में किसी का सामना नहीं करती थी, कोई आ जाए तो बात नहीं करती थी, एक कमरे में पैक हो गई है ना। खैर चला वो सब, काफी दिनों तक चला। मैं पढ़ भी नहीं पाई, पिताजी ने प्राइवेट फॉर्म भरवाया, वहां जब गई लड़कियों ने मुझे घेर लिया, हंसने लगे देख के, नर्वस ब्रेक डाउन हुआ, मैं वहीं गिर गई।
1: अच्छा।
0: मुझे लगा ये क्या है, काले अक्षर जो है ये क्या है, मैंने तो कभी कुछ इनको देखा ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है। निराश पिताजी फिर घर ले आए, हुआ कि अब करेगी क्या, बच तो गई है। तो मेरा गला बचपन से ही बहुत अच्छा था और थोड़ा डिप्रेशन भी होने लगी थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कहीं ऐसी जगह ऐसी चीज में लगाएगी इसका मन थोड़ा बहला रहे। तो पिताजी को याद आया कि चलो इसको संगीत में डाल देते हैं, उसी बहाने घर से निकलेगी, 4 लोगों में बैठेगी और गला अच्छा है ही। खैर वहां फाइट वाइट करके किसी तरह मेरा एडमिशन हो गया, मैंने वहां से संगीत सीखना शुरू किया, जारी रखा सफर, और संगीत प्रभाकर तक जो इलाहाबाद से प्रयाग संगीत समिति से होता है वहां तक किया, और उन दिनों में मैं काफी अच्छा सीख गई थी, इवन की जो वहां के टीचर्स थे वो मुझ पे क्लास छोड़ने लग गए थे
1: जी।
0: फिर बाबा आगे की पढ़ाई के लिए मुझे BHU ले आए, BHU से मैंने BMUs, MUs, म्यूजिक में, उसके बाद PhD तक किया। वो भी दौर एक अजीब था, जब घर से निकलती थी अनेक उपाधियां मुझे मिला करती थी, नाक कटी जा रही है, देखो देखो इसका चेहरा कैसा है, तो लगता तो था सारा कुछ बांध बांध के निकलती थी, आती थी बाबा से रोती थी मैं कल से नहीं जाऊंगी, नहीं बेटा तुमको जाना ही है
1: जी।
0: तुम किसी की बात पे ध्यान मत दो, तुम्हें लक्ष्य अपना निर्धारित है, वहां तक जाने के लिए जो संघर्ष करना पड़े आप करो।
1: बाबा ने हौसला बढ़ाया,
0: बहुत बढ़ाया, मैं तो कहूंगी कि सारे पेरेंट्स ने साथ दिया लेकिन बाबा ने जो हौसला दिया, मैं आज जहां हूं उन्हीं के कारण हूं, कभी उन्होंने गिरने नहीं दिया कि नहीं ठीक है तुमसे नहीं होता छोड़ दो, नहीं करना है। फिर BMUs किया, गुरुजनों का बहुत मुझे बहुत प्यार मिला वहां, लेकिन वो जो यात्रा थी सीखने की
1: जी।
0: मैं रहती थी गंगा किनारे, जो आज जुकासो होटल बना हुआ है उसी बिल्डिंग में, वहां से कभी कभी इतना नहीं, गड़वासी टोला में रहती थी उस समय, इतना भी पैसा नहीं होता था कि मैं BHU तक आ सकूं, तो मैंने बहुत बार BHU पैदल आई और यहां से वहां तक।

0: बदल जाती थी।
1: जी
0: मेरे पास बहुत कपड़े नहीं होते थे, इसकी घर की डावा डोल हो चुकी थी लगाते लगाते पैसा। लेकिन यही है कि जाड़ा हो बरसात हो गर्मी हो, मैं चलती गई। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा
1: जी।
0: और पीएचडी तक मैंने प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी नाम है जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया, गुरु जी का आशीर्वाद है बहुत। और इसी बीच मेरा गाना कुछ लोगों ने सुना, मैं मंदिर में बैठ के गा रही थी तो उनको लगा ये तो बहुत अच्छा गाती है लड़की, तो वो लोग घर आए, बाबा से बोले कि इसको प्रोग्राम करने दीजिए हम लोग के साथ। घर में एक मीटिंग बैठी, ये हुआ कि पागल पागल हो जाने से तो अच्छा है कि बाहर निकलना शुरू करे, गाना शुरू करे। तो मैं स्टेज करने लगी और पहली ही बार में मुझे इतनी सफलता मिली, और उसके बाद लगातार पढ़ती भी थी और प्रोग्राम्स करती चली गई मैं। मैं शायद हजारों की संख्या में प्रोग्राम दिया है जिसकी वजह से मंगला कपूर ने प्रसिद्धि पाई, नेम फेम पाया, और मुझे काशी की लता का जो अवार्ड मिला है
1: जी।
0: वो उस काफी आवाज टैली करती है, तो वो अवार्ड मुझे इसलिए मिला कि मैं जहां भी गाने जाती थी और सब लोग लता जी से ही बराबरी करते थे
1: जी
0: जी। तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए मैंने, और उसके बाद पढ़ाई तो जारी थी ही, फिर दौर शुरू हुआ पीएचडी करने के बाद नौकरी ढूंढने का। नौकरियां नहीं मिलती थी, क्यों नहीं मिलती थी, मेरा सारा स्टाफ सुंदर है, अब उसमें ऐसी एक तो आ जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इंटरव्यू अच्छे हुए हैं, लेकिन चूंकि मैं ऐसे चेहरे वाली हूं इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। निराश हो जाती थी कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी अब तो, फिर मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर बीएचयू से वैकेंसी निकली, मैंने भरा और अपने गुरुजी और पिताजी से कह दिया था कि ये आखिरी बार है, इसके बाद अब मैं कहीं इंटरव्यू नहीं लूंगी। वहां बैठी, काफी बड़े बड़े लोग आए थे इंटरव्यू देने, मैं भी थी, सुबह की गई कि रात को 8 बजे मेरा नंबर आया, इंटरव्यू वहां भी अच्छा हुआ मेरा, और हम पिताजी और मैं मौन से निकले और चल दिए कि अब छोटी छोटी जगहों में नहीं हुआ तो बीएचयू जैसे संस्थान में और नौकरी पाना तो मेरे लिए आकाश कुसुम प्राप्त करने जैसा है। लेकिन कृपा हुई माता रानी की, बाबा विश्वनाथ जी की, मेरे गुरुजनों की, मेरे माता पिता की, कि वहां से मुझे जब आया कि नहीं आपको एज ए लेक्चरर नियुक्त किया जाता है, मेरे पास फोन आया तो वाकई मैं बिलीव नहीं कर पाई, विश्वास नहीं हुआ। वहां मैंने ज्वाइन कर लिया, बहुत लगन से मैंने पढ़ाना शुरू किया और वहीं फिर रहने की मुझे वार्डनशिप भी मिल गई
1: जी।
0: तो एक प्रशासनिक जो काम होता है वार्डनशिप पे रह के मैंने वो भी और अच्छी तरह निभाया। वहां भी दो लोग, दो तरह के लोग थे, एक तो मेरी आवाज के कारण या मेरे व्यवहार के कारण मैं ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती अपने काम से काम
1: जी।
0: तो दो थे जो मुझे बहुत मानते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनको ठीक नहीं लगती थी मैं। खैर अब मैं संक्षेप में आपको सारी बातें बताती हूँ क्योंकि ये लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो नहीं आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछिए जो भी।
1: हम आपको रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे।
0: हाँ।
1: हम ये जानना चाह रहे थे कि उस छोटी सी 12 साल की जो लड़की थी मंगला
0: जी,
1: क्रंदन से भरपूर पीड़ा से भरी हुई, वहां से लेकर जब आपने आगे की यात्रा तय की विचार शून्यता के बीच में, संवेदनहीनता के बीच में, लेकिन आप चलती रही, अपने हार नहीं मानी और अब पद्मश्री प्राप्त करने तक ये जो लंबी यात्रा है बहुत संघर्ष पूर्ण यात्रा है,
0: बस बस वही हाँ।
1: जी लेकिन इस यात्रा में वो कौन सी शक्ति थी जिसने आपसे कहा कि नहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना।
0: मैंने अभी बताया आपको, मेरे पिताजी
1: जी।
0: मैंने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका चेहरा सामने आते ही मुझे लगता था अरे ये व्यक्ति जो इसने अपना सारा सुख त्याग दिया, मेरी माँ जो भटकती रही अपने और बच्चों को छोड़ के मेरे साथ अस्पताल अस्पताल अस्पताल, ये उनका जीवन रहा है और मैं इस तरह अपने आप को खत्म कर दूंगी, उनकी मेहनत को जाया कर दूंगी, तो मुझे लगता था कि नहीं करना है।

0: बाबा हमेशा कहते थे एक लक्ष्य पे पहुंचना है तुमको, तो इसलिए मैं और भी जोर शोर से लगी थी। उसके बाद भी मैं हारी नहीं, मैंने पढ़ाई ठीक से किया और पढ़ाया अच्छी तरह, बच्चे
1: जी
0: मुझे बहुत मानते थे, मातृवत स्नेह उनको मिला मुझसे। मेरे अंडर में करीब 14-15 बच्चों ने पीएचडी की, मैंने 5 पुस्तकों का लेखन किया और छठी लिख रही हूँ,
1: जी
0: उसी में एक सीरत लिखी जो जिसमें मेरी ऑटोबायोग्राफी है,
1: जी
0: मेरी वहां से लेके उसमें पद्मश्री तक तो नहीं लिखा है क्योंकि अभी मिला है। लेकिन फिर और मैं इतना बताना और चाहती हूँ जरूर कि एक जीवन वो भी होता है जब आदमी रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट का के बाद का जो जीवन है वो बड़ा कठिन होता है। लोगों को देखा मैंने, बैठ
1: बिल्कुल
0: जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और मैं ये बताना इसलिए चाहती हूँ कि मेरी जितनी उपलब्धियां हैं रिटायरमेंट के बाद की हैं।
1: अच्छा।
0: मुझे 3 स्टेट लेवल पुरस्कार मिले हैं मोदी जी से, कोटलाबेन से मोदी जी से मिली हूँ, और मेरा पूरा कमरा अवार्ड और सम्मान और सबसे भरा पड़ा है। और ये जो पद्मश्री घोषित हुआ बाद में, अभी तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि लगा नहीं था कि ये मुझे, तो मैं सामाजिक कार्य करती हूँ, दिव्यांगों के साथ
1: बिल्कुल
0: मिलकर काम करती हूँ, मैं एक संस्था में वहां की अध्यक्ष भी हूँ
1: जी
0: और बराबर जनहित में कार्य करती हूँ, स्कूलों में जाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, अगर गरीब बच्चों का स्कूल है तो वहां मतलब किताबें वगैरह जो उपलब्ध नहीं होगी,
1: समाज
0: तो दो
1: कार्य।
0: तीन समाज कार्य ज्यादा कर रही हूँ और कई संस्थाओं से जुड़ी, रोटरी जैसे क्लब से भी,
1: जी जी
0: वहां से भी इसी तरह के क्रियाकलाप होते हैं, तो उनमें हिस्सा लेकर के मेरा जीवन जो है अब इतना व्यस्त है कि लोग मुझसे मिलने आते रहते हैं और करते रहते हैं, और इसने एक नई ऊंचाई दी जिसमें
1: जी
0: सारे पेपर्स वाले, मीडिया वाले, और यहां से लेके मुझे नहीं लगता कि कहीं भी छूटा है। महाराष्ट्र में मराठी में
1: जी
0: बहुत
1: मंगला
0: सारे
1: मंगला
0: मंगला
1: फिल्म
0: से
1: बनी है।
0: फिल्म भी बनी है मेरे ऊपर जो अभी जल्दी ही बनारस में लगने वाली है क्योंकि उसका हिंदी डब हो रहा है,
1: जी
0: वो मराठी में बनी है, तो हर जगह फैल गया है नाम।
1: ये जानना चाहेंगे ना कि शिक्षाविद के रूप में जो करियर की यात्रा रही है, तो इस घटना के बाद वो आपकी जो यात्रा है शिक्षाविद के रूप में किस तरह बदली, मतलब जो आपके स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाया है।
0: बहुत ज्यादा मैं एक चर्चा करना भूल गई कि वो ये कि जब मैं बैठ गई थी तो मैंने एक कोचिंग चलाना शुरू किया,
1: जी
0: पांडे वैली एक जगह है, छोटा सा कोचिंग, मैं बच्चों से पैसा ऐसा नहीं लेती थी ज्यादा, कोई कुछ रख दे तो ठीक है, तो कई बच्चे आते थे वहां और हम लोग अच्छे से, मैं उनको संगीत सिखाती थी, कभी नहीं लगा कि ये स्टूडेंट है, बिल्कुल लगा मेरे अपने बच्चे हैं, वो इसी तरह प्यार करते थे मुझे, उसी तरह हम लोग भी शाम को एक साथ कुछ खाते थे, चाय वाय पीते थे, तो इस तरह रहा। और जो कॉलेज में भी बच्चों को जिनको शिक्षा दी वहां से भी बच्चों ने मुझे बहुत सम्मान किया, बहुत प्यार दिया, वो अभी भी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो हैं विदेश से लेके इंडिया में सब जगह अच्छी अच्छी जगह सभी
1: जी जी
0: काम
1: बिल्कुल
0: कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। मैम चलते चलते ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का जो वो मंत्र है वो क्या है, और क्या आप मानती हैं कि आत्मनिर्भरता महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है और हर महिला को आत्मनिर्भर होना जरूरी है।
0: जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आज जो इतने कांड हो रहे हैं, रेप कांड हो रहे हैं, एसिड अटैक
1: जी जी
0: के
1: जी
0: कितने कांड हो रहे हैं देख रही हैं, तो जो हिम्मत हार जाते, हारना नहीं चाहिए, ये जीवन की एक मोड़ था जहां सवर्ण लिखा था, आप आगे बढ़िए, और सबसे बड़ी बात है अपना विल पावर, कभी गिरने, मैं आज जो हूँ अपनी इच्छा शक्ति
1: बिल्कुल
0: आत्मशक्ति की वजह से हूँ, मैं गिरती हूँ, शुगर है, ये है, बीच में फ्रैक्चर भी हुआ, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन मैं फिर उठी,
1: अपने अपने आप को संभाल लिया।
0: हाँ संभाला, नहीं मुझे करना है, मैं वाकर लेके चली, बैसाखी लेके चली, छड़ी लेके अभी भी यात्रा पूरी कर रही हूँ,
1: जी
0: और उन बच्चों के लिए तो खास करके कहूंगी जो थोड़ा सा फेल हो गए, कहीं कामयाब हो गए तो तुरंत अग्रसर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए, नहीं,
1: गलत कदम उठाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ
1: जी
0: गलत, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत से सारे और भी मोड़ मिलेंगे, तुमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं आना चाहिए क्योंकि ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है,
1: बिल्कुल
0: दूसरों के लिए काम कीजिए, आपकी जिधर रुचि हो उस फील्ड में काम करिए और लोगों को लगाइए अपने साथ।
1: और यही संदेश आपका उन सभी के लिए रहेगा जो
0: जी
1: इन इन घटनाओं से बचे हैं।
0: जी बिल्कुल रहेगा, और सरकार से ये कहना चाहती हूँ
1: बिल्कुल
0: कि जो इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा
1: सजा
0: मिलनी
1: तो

0: चाहिए ताकि ये रुक सके
1: जी,
0: रुक सके, जब वो डरे, जिस ऐसी सजा जिससे उनको डर पैदा हो कि ये ऐसा कृत्य करना छोड़ दें वो।
1: बिल्कुल मैम, आपकी जो ये पूरी गाथा रही काफी प्रेरणादायक रही, और जब आप बता रही थी तो हम तो महसूस कर करके हमें हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। हम सोच सकते हैं कि उस छोटी सी बच्ची ने कितना कुछ सहा होगा।
0: 36-37 ऑपरेशन
1: जी, बिल्कुल, ये मतलब बड़ी बात है, इतना दर्द सह के भी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखना और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना। श्रोताओं, यही इसी को कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिली है, जैसा कि अभी मैम ने कहा, तो भरपूर जी के इसे बिताना चाहिए हमें। मैम, आप कार्यक्रम में आई और अपनी कहानी और प्रेरणा स्वरूप जो आपने हमें संदेश दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और मुझे अच्छा इसलिए भी लगा कि ये बात लोगों तक फैले, ताकि जो विकृतियां समाज में हो रही हैं
1: जी,
0: उनमें कुछ तो रोक लगे।
1: बिल्कुल, और ये जरूरी
0: जी। नमस्कार।
2: FM 100.6 पर ये विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द वीक, जिसमें प्रोफेसर मंगला कपूर से आकांक्षा सिंह की बातचीत सुनवाई गई। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।
3: यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
4: संगीतकार रविंद्र जैन।
3: यशोदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: आजादी। जरा याद करो कुर्बानी।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा, उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन्य है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं।

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की

तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्य गाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी सन 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: वंदे मातरम। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी। अब अंजाम कुछ भी हो, युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

0: 100.6 पर विविध भारती वाराणसी से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम छाया गीत। प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई?
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के साथ जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे।
1: ओ।
2: तुम कहो आज कैसे राग भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ, आओ बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: जी, इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ।
3: न्योता?
1: हाँ, कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊंगा।
1: ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं हैं।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
3: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था। और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जिगर को मान लेते हम भाई, अपनी खुशी गमी में पूरे गांव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम। पानी की तरह पैसा बहा देते।
1: अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना।
3: ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई, इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना?
1: रूप सिंह?
3: हाँ हाँ रूप सिंह।
1: छी छी छी छी छी छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी है? अरे उस चोटे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी।
3: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा
1: है? हाँ बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है समझो।
3: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होंगे।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चू को नाकों चने चबवा दूंगा। हाँ।
3: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
3: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है।

0: बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा हूँ।
2: अरे ओ ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
1: अच्छा,
2: राम राम।
1: अच्छा राम राम, राम राम।
2: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
1: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।

0: गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तो बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ पुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान, देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी। हाँ?
2: जाओ, जाओ,
1: अरे मंगरू,
3: मंगरू वो क्या बात है माधो?
1: अरे चौधरी जी आ गए।
3: चौधरी जी? हाँ देख माधो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
3: ठीक है
1: मैं भी आता हूँ।
4: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
3: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त पे आया। आइए आइए बिना जी।
4: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
3: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
4: मेरी रकम दे रहे हो ना।
3: जी जी वो
4: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
3: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे के वो रुपए तो सब
4: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू। मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
3: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
4: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरवा आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए, और अब तुम्हारी बच्ची।
3: ओ चौधरी जी मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। धर्म से धर्म से
4: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
3: चौधरी जी मालिक, मालिक
4: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
3: नहीं नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
4: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
3: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी, पटवारी जी।
5: भैया अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
4: 3,000।
5: ठीक है मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
4: जी आप?
5: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
4: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
5: अच्छा भैया जय राम जी।
3: पटवारी जी आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
5: तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतार

0: रुपए हैं आपके चौधरी जी?
1: जी 3,000।
0: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
1: जी आप?
0: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
1: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी? आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ। जय राम जी की।
0: अच्छा भैया, जय राम जी।
2: पटवारी जी, आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
0: मंगरू, तुम्हारा भला कैसे होगा? तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
2: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
0: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
2: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
0: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
2: नहीं, वो क्या पटवारी जी?
0: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
2: पर गलती उसी की पटवारी जी।
0: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो। और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
2: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
0: देखो,
2: क्या करूँ?
0: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
2: लेकिन
0: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
2: ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी। और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
0: कौन से रुपए भाई?
2: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
0: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
2: काहे?
0: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
2: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
0: अच्छा ये लो मंगरू।
2: ये क्या कागज? ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
0: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर है मंगरू, कागज के जेवर, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
2: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
0: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
2: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
0: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
2: अच्छा, वो किस तरह?
0: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
2: अच्छा।
0: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
2: अच्छा,
0: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
2: 11,000?
0: हाँ भाई।
2: सच कह रहे पटवारी जी?
0: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। और रुपया मिल जाने के बाद?
2: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
0: लेकिन अब फजूल खर्च मत कर।
2: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
0: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
3: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी तो चलिए।
2: आ गए पंडित जी? चलिए, आइए पटवारी जी।

कागज के जेवर हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

0: ये है विविध
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की

0: मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरुत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन। श्री मैक्रों ने भारत

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार।

0: में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: The world seeks trusted and reliable partners.
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
3: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव

0: उठी है, चाहे वह सुधार, जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आरडी बर्मन का है।

उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना। गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।
3: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है,

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना, जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

0: थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था

बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता।

0: आभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाएगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है। इसका सोल्यूशन वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल, नेचुरल है। नेचुरल ब्यूटी वॉश।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है, दर्द और सुकून का ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी

0: में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
1: इसका सोल्यूशन
0: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
0: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गुंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

0: जब से बेकरार।
1: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
0: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
1: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके।
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: इको का टर्मरिक फेस वॉश। टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
1: इसका सोल्यूशन
0: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
0: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विषय

0: विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI working group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs.

FM 100.6 पर ये विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।